107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि, तदनुसार दिनांक 27 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात श्रोताओं, 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं विनय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रतिदिन की भांति दिन का शुभारंभ करते हैं भक्ति भाव से सुशोभित कार्यक्रम पुष्पांजलि से। एक दंताय शुद्ध गाय सुमुखाय नमो नमः, प्रपन्न जन पालाय प्रणतार्ति विनाशिने। हम माँ पार्वती के पुत्र जिनके एक दांत और सुंदर मुख हैं, जो शरणागत भक्तजनों के रक्षक और प्रणतजनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप गणपति को बारंबार प्रणाम।

सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सच्चरित तथा सदाचारी होना पहली शर्त होती है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव नहीं है। हमें यह दुर्लभ मानव जीवन किसी भी कीमत पर निरर्थक और उद्देश्यहीन नहीं जाने देना चाहिए। लोक मंगल की कामना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। प्रभु वंदन में लीन हो जाते हैं इस भजन के माध्यम से।

जिनका जीवन हमें सत्य, कर्तव्य और करुणा का मार्ग दिखाता है। ऐसे मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक प्रभु श्री राम को हमारा नमन है।

जहां विश्वास होता है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और जहां भक्ति होती है वहां ईश्वर खुद साथ चलने लगते हैं। परम भक्त महाबली की जय।

हे महादेव, हाथ पैर वाणी मन या कर्म से जो भी भूल हो गई हो, जानी अनजानी सभी त्रुटियों को क्षमा करें। आपकी कृपा से हमारे जीवन में शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मकता का वास बना रहे। हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे करुणामय शंभू, आपको बारंबार प्रणाम है।

जिस पर होती है माता रानी की कृपा अपार, उनके जीवन में सदैव खिलते हैं खुशियों के फूल हजार। जय हो माता रानी की।

सुख समृद्धि एवं शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सचरित्र और सदाचारी होना पहली शर्त है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव नहीं है। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो, इन्हीं वचनों के साथ कार्यक्रम पुष्पांजलि से अनुमति दीजिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जाँच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं है, बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। योगी सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को भव्य एवं नव्य स्वरूप प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होने वाली भव्य गंगा आरती श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज के पावन संगम क्षेत्र में अब प्रतिदिन फ्लोटिंग जेटी पर भव्य गंगा आरती का आयोजन शुरू हो गया है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर स्थित फ्लोटिंग जेटी पर गंगा पूजन के बाद आरती उतारी और इसका शुभारंभ किया। इससे संगम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रत्येक शाम को एक अविस्मरणीय दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में सरकार कहीं रुकी नहीं, कहीं थमी नहीं। ये यात्रा माँ गंगा की धारा की तरह अविरल आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने चरैवेति चरैवेति के मंत्र पर उल्लेख करते हुए कहा कि प्रयागराज आज सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक गौरव और आधुनिक विकास का अद्भुत संगम बन चुका है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को खरीफ सीजन के लिए किसानों की मांग के अनुरूप समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि कृषि विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे 50% अनुदान का लाभ उठाने के लिए वे दर्शन पोर्टल पर यथाशीघ्र आवेदन करें। प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित उत्तर प्रदेश राजस्थानी ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने के लिए कल लखनऊ में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह ने बताया कि इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने निर्धारित किया गया है। आयोग का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का समकालीन अनुभवजन्य एवं विस्तृत अध्ययन कर सरकार को आवश्यक सिफारिशें प्रदान करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन अखबारों की सुर्खियों के साथ 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों सुबह के 7:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और ये बेहतरीन गाना धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। हमें तो पूरा देश पूरी दुनिया सुन सकती है ऐप के माध्यम से। लखनऊ हमें सुन रहा है, आप हैं अपने दोस्त विनय के साथ। सदाबहार गीत, वो गीत जो हमारे दिल के बेहद करीब हैं, ऐसे गीत जो कभी पुराने हो ही नहीं सकते। इन्हें हम जब भी गुनगुनाते हैं ये हमें अपने से लगते हैं। क्यों और ऐसा ही गीत आ रहा है आप सभी के लिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ, कितना खूबसूरत सा गीत था जो हमें ये याद दिलाता है कि तुम बस यूं ही यूं नगमे गुनगुनाते रहो और हम आपके साथ नगमे गुनगुना रहे हैं सदाबहार गीत में। दोस्तों, सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा, हल्की हल्की धूप, और आजकल तो हल्की नहीं, तेज़ धूप कहेंगे, और चाय की खुशबू के साथ दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। सुबह का ये पल अपने साथ बहुत सारी यादें, सुकून और नई एनर्जी लेकर आता है। हमारे आसपास की फिज़ा में थोड़ी तो ताज़गी रहती है, उसमें घुली मिली रहती है, और क्योंकि जब सवेरा होता है तो नया दिन, नया जोश होता है और नया उमंग भी हमारे साथ आता है। और इसी नए जोश, नई उमंग के साथ हम सदाबहार गीत लेकर आपके लिए हाजिर हैं। आपका दोस्त विनय आपके साथ है। 7:18 हुए हैं और अगर आप हमें सुबह से सुन रहे हैं तो उसका सबूत तो दीजिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तां। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर सदाबहार गीत, आज आपके अपने दोस्त विनय के साथ। बड़े साथी हमें ऑन एयर सुन रहे हैं क्योंकि इसका सबूत हमें मिल रहा है, वो हमें मेल कर रहे हैं, अपना प्यार भेज रहे हैं। और आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं तो हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com, इस पर आप अपने अटेंडेंस लगा सकते हैं। और दोस्तों कहा गया है कि कभी यादों की धूप तो कभी एहसासों की गर्माहट, इन पलों में पुराने गीत दिल को वही अपनापन देते हैं जो किसी अपने की मुस्कुराहट से मिल जाता है। आप कभी महसूस करिए कि कुछ ऐसे गीत होते हैं जो आपके दिल के जज्बात को बड़ी आसानी से बयां कर देते हैं, और वो गीत हैं सदाबहार गीत। जी हाँ, उनके शब्द, उनका संगीत, उनका एहसास हमारे दिल में बसा है और वो हमारे दिल की बात को आसानी से किसी खास के पास पहुंचा देता है। जिस तरह ये गीत आ रहा है, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो विनय के साथ।

और दोस्तों आपको भी याद है 100.7 FM रेनबो, जहां पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे प्रोग्राम और आपके साथ जुड़ते हैं आपके अपने फेवरेट बहुत बेहतरीन आवाजों वाले आरजेस। आरजेस नहीं, आपके दोस्त हैं हम सब। और आप जानते हैं दोस्तों, वक्त बदल जाता है, मौसम बदल जाते हैं, कभी कड़ाके की धूप आती है, बहुत तेज वाली धूप आती है, कभी भयंकर बारिश और कभी ठंड जिसमें आप ठिठुरते हैं। लेकिन जो नहीं बदलता है वो है ये प्यारे प्यारे गीत, ये गीत जो हर सवेरे हर शाम को हमारे दिल में बसे रहते हैं। इन गीतों की एक जरा सी आहट बस कानों में पड़ती है तो हम खुद ब खुद उन्हें गुनगुनाने लगते हैं, और वो गुनगुनाहट हमारे जबान से सीधे हमारे दिल तक उतर जाती है। जिस तरह ये गीत, ये भी मेरे दिल में, दिल के तो बहुत करीब है, जब भी बजता है तो बस हम यूं ही गुनगुनाने लगते हैं। आप भी गुनगुनाइए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर सदाबहार गीत में आपका दोस्त विनय आपके साथ है।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbow@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: Stay tuned 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों हमारे और आपके चर्चे भी बहुत दूर दूर तक हैं और इसीलिए हम आपके लिए हर रोज आते हैं और आपको हम ऐसे ही एंटरटेन करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इस वक्त काफी गर्मी पड़ रही है और जब आपका मन कहीं सुकून ढूंढने लगता है, कई बार वो जो सुकून होता है वो एक कप चाय में होता है, या फिर आप कश्मीर की वादियों का एक बढ़िया सा फोटो देख लें अखबार में, या कहीं कोई घूमने गया हो उसमें सुकून मिलता है। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपके कानों में जब पड़ते हैं तो वो सुकून का एहसास करा देते हैं। और ये जो पुराने नगमे हैं ये हमारे दिल को अलग तरह की एनर्जी पहुंचाते हैं, एक अलग तरह का ठंडा वाला एहसास पहुंचा सकते हैं। तो एक और गाना जो आपके दिल को सुकून पहुंचाने आ रहा है, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। आज आपका दोस्त विनय आपके साथ है।

से अब अनुमति लेने की इजाज़त चाहूँगा मैं। जी, आपका अपना दोस्त विनय। और ये ज़रूर कहेंगे कुछ ऐसे गीत होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते, वो हमेशा सदा जवां रहते हैं। जिस तरीके से ये सदाबहार गीत, जिन्हें हम गोल्डन गीत भी कहते हैं, जी हाँ, ये गीत ऐसे हैं जो कभी भी ना पुराने थे, ना हैं, ना रहेंगे। इसमें जो घुली आवाज़ है, म्यूज़िक है और एहसास है, वो पुराना कभी नहीं होता है। और चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि अपना खूब ख्याल रखिए, इन्जॉय के साथ सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। न्यूज़ ब्रेक के उस पार गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर होंगे आपके दो दोस्त। स्टे कनेक्टेड, स्टे म्यूजिकल।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार।

0: से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं

0: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
1: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आपके फेवरेट 100.7 एफएम रेनबो पर आपसे मिलने और आपसे कहने गुड मॉर्निंग लखनऊ। आपके दो दोस्त आ गए हैं साथ।
1: जी हाँ, आपसे बात करना, आपसे मिलना जुलना हमें बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी, वो तो आपके सुबह से जो आप तरंगे छेड़ रहे हैं, यानी कि जो खूबसूरत से बहुत ही प्यारी प्यारी नगमात सुना रहे हैं, उनसे सुनकर लग रहा था कि आज विनय बहुत खुश है।
1: जी, आप गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपके दो दोस्त विनय और रत्ना हाजिर हो चुके हैं। 8:17 हो रहा है और ये बेहतरीन चाय का आप सभी के लिए।
0: चलिए

0: वक्त के साथ चलते चलते विनय, हम लोग 8:31 देख रहे हैं घड़ी में टाइम,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और देखिए 8 के बाद ये प्रोग्राम शुरू था, यानी कि 8:15 पे प्रोग्राम शुरू होता, 8:31 हो गए। ये वक्त कह रहा है कि ये हम इस वक्त आपको आज के दिवस से जुड़ी कुछ बात बता देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों आज पूरी दुनिया मना रही है वर्ल्ड मार्केटिंग डे।
0: अच्छा, यानी कि 27 मई को वर्ल्ड मार्केटिंग डे मनाया जा रहा है।
1: जी अच्छा। और इस दिन का जो मेन मोटिव है वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस को समझना है और उसे और इस क्षेत्र से जुड़े जो प्रोफेशनल्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मान देना है।
0: वाह। और समय के साथ मार्केटिंग में एक जो ट्रेड चलता चला आ रहा है, ट्रेडिशनल तरीके चलते आ रहे हैं, उनसे आगे बढ़कर डिजिटल और सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई पहचान बना ली है भाई।
1: जी जी। और आज मार्केटिंग केवल किसी भी प्रोडक्ट को बेचने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि लोगों से जुड़ने, विश्वास बनाने और समाज में एक पॉजिटिव कहते ना कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है।
0: बिल्कुल। और आज की बात करते हैं, अगर इस डे को लेकर के 2026 की क्या थीम है वो भी लोगों तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो थीम है मार्केटिंग इन द एज ऑफ एआई एंड ह्यूमन कनेक्शन।
1: यानी कि एआई के युग में मानवीय जुड़ाव के साथ मार्केटिंग।
0: वाह। तो काफी जो इस दुनिया में जो एक बड़ा सा बदलाव एक आया है उसको फॉलो करना और उसके साथ साथ आगे बढ़ना, ये इस थीम के को बता रहा है कि इस थीम से ये बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो रही है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
0: और ये थीम बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्निक्स के जो बढ़ते जो इस समय उपयोग जो ज़्यादा उनका यूज हो रहा है, उपयोग के बावजूद मानवीय भावनाएं और उस पर भरोसा करना और रचनात्मकता आज भी मार्केटिंग की सबसे बड़ी एक ताकत है।
1: जी दोस्तों। और ये दिन हमें नवाचार, एथिकल कम्युनिकेशन और पॉजिटिव कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के माध्यम से समाज में और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहा है।
0: तो ये तो हो गई वर्ल्ड मार्केटिंग डे के बारे में, और जो लोग इससे रिलेट करते होंगे वो लोग

0: नहीं आ रही। हाँ, अच्छे पॉइंट्स हमारे कानों में सुनने को मिले।
1: बिल्कुल, वैसे मैं आपको सही बताऊं रत्ना, मार्केटिंग तो हम सबको भी करनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: सेल्फ मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है, और वो हम कैसे करते हैं हम डिस्कस करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करेंगे
1: जी। तो फिलहाल एक और बेहतरीन ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
3: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।

0: भाई मुद्दा क्या है आज का, लोग जितने भी लिस्टर्स है हमारे ना विनय, वो बेकरार है कि हमें मुद्दा पता चले तो हम मेल करना शुरू करें।
1: बिल्कुल। वैसे हमारे बड़े साथी सुबह से ही सुन रहे हैं 6 बजे से और वो हमें मेल कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था ना कि हमें मार्केटिंग जो है सेल्फ मार्केटिंग का भी ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल रखना चाहिए।
1: और सेल्फ मार्केटिंग कैसे होती है
0: वो, जैसे अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग उसके बिना आजकल रह ही नहीं पाते हैं। उससे उनके बहुत ज़्यादा कुछ संतोष जो मिलता है ना, जिसको कहते हैं हमें इस चीज़ को करने पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सोशल मीडिया के जरिए वो कुछ ऐसा कर पाते हैं और उसकी मार्केटिंग से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी होते हैं, और फिर उनको जब वो संतोष मिलता है तो फिर उनका सोशल मीडिया पे वो चीज़ें और ज़्यादा आगे आने लगती
1: हैं। वैसे सही बताएं तो आजकल सोशल मीडिया सिर्फ टाइम बताने का जरिया नहीं रहा, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है उससे। बड़े सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फोटोज वीडियोस डाले और उनको बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस से फोन आए हैं। तो आप अपनी मार्केटिंग ऐसे करिए कि आपकी बेहतरीन फोटो डालिए, जो भी टैलेंट आपके अंदर है उसे एक्सप्लोर करिए, यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं पर भी डाल सकते हैं। और फिलहाल हम मुद्दे पर वापस आते हैं रत्ना, और हम अपने दोस्तों से बस छोटी सी बात जानना चाहते हैं।
0: अच्छा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात जानना चाहते हैं, और वो अपने बारे में कहाँ तक कितना समझ पाते हैं, अपने आप को कितना उन्होंने एनालाइज किया, इस बारे में वो बात है।
1: दोस्तों आप हमें बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल या फिर कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग कर देती है।
0: वाह, इतनी छोटी सी बात है और बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि कई लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये भी पूछा जा सकता है मुझसे कभी। तो चलिए यही आपसे बस पूछ नहीं रहे, बस आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता या क्या ऐसी खास बात है जो आपको लोगों से थोड़ी अलग करती है, और आपकी वो खासियत है, बस आपको ये बताना है मेल करके।
1: fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए कि आप जो चाय पी रहे हैं या तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए क्या सोचते हैं।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ। आप सुन रहे रत्ना और विनय आपके साथ है और घड़ी की सुइयां बहुत तेज से भाग रही हैं। 8:49 हो चुका है।
1: बिल्कुल, और ये वक्त कह रहा है कि हम आपको फिर से आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं कि आज कौन सा दिवस और भी सेलिब्रेट किया जाता है।
0: तो एक बड़ा ही प्यारा सा पशु है, छोटा सा पशु है, विश्व ऊद बिलाव दिवस हम मना रहे हैं।
1: वाह, ये देखने में बहुत ही प्यारा सा, बड़ा चंचल सा होता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: आपने बड़ी सारी कहानियां बताई मुझे ऑफ एयर। ये जू जाकर उसके साथ खेला करते थे और कहते हैं ना, हम लोग हाइड एंड सीक भी इन्होंने खेला उसके साथ।
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल खेला है। और जू में, लखनऊ जू की बात अगर करते हैं तो वहां पर जो इनका बाड़ा बना है जिसमें आराम से पानी में तैरना और लोगों के साथ खेलना, इसकी कुछ इनके नेचर में होता है। तो हर साल मई के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है ये ऊद बिलाव दिवस। और ये बड़ी चंचल सा जीव होता है और तटीय क्षेत्रों में भी ये जीव काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके बहुत से प्रकार भी होते हैं
0: जी, और इनके आवास की सुरक्षा और ऊद बिलावों के संरक्षण के लिए कदम उठाने और इनके बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाने लगा है। और वैसे भी ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो अब धीरे धीरे हमारी दुनिया से गायब होते जा रहे हैं। अभी पिछले संडे रत्ना मैंने और स्वेच्छा ने मुद्दा ही उठाया था कि ऐसा कौन सा पशु पक्षी आपने देखा था जो अब दिखाई नहीं देता, या उसके बारे में पढ़ा था, हमें बताइए। बड़े सारे लिसनर्स ने बताया कि अलग अलग तरह के जीव जिन्होंने देखे हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि शहरों में कौओं की जो संख्या कम हो रही है, गिद्ध में ही दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जिनसे हम बड़े दिल से जुड़े हैं, जैसे ऊद बिलाव,
1: गौरैया।
0: यस, तो इन सब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और जिस भी तरह से हम इनका ख्याल रख सकते हैं, इनको संरक्षित रख सकते हैं, उसमें हम लोगों को आगे आने में बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। तो फिलहाल विश्व ऊद बिलाव दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं। और लखनऊ जू की जहां तक बात करते हैं तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में अगर आपको कभी मौका मिले तो वहां जरूर जाकर ऊद बिलाव को देखिए और थोड़ा सा उसके साथ वक्त बिताइए।
0: और अब छुट्टियां चल रही है, वैसे धूप होती है, जब मौसम साफ हो, अच्छा सा सुहाना मौसम, तुरंत पहुंच जाइए लखनऊ जू और देखिए बड़े सारे पशु पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं
1: जी। और मुद्दे से जुड़े मेल भी हम शामिल करने वाले हैं। बस जुड़े रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ विनय और रत्ना के साथ।

0: विनय हमको अलविदा बिल्कुल भी नहीं कहना भाई, क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं, 9 बजे के बाद भी हम
1: जारी रहेगा। दरअसल हमने ये बस ये गाना बजाया, हम आपसे बिल्कुल अलविदा नहीं करें। गुड मॉर्निंग लखनऊ का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फर्स्ट हाफ से हाँ इजाजत जरूर ले रहे हैं, न्यूज ब्रेक के उस पार फिर से हाजिर होते हैं।
0: बिल्कुल बने रहिए, सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, 9 बजे आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। लखनऊ से प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ का आबादी पर असर जांचने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया घुसपैठ का प्रभाव जांचने को समिति। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को अपनी लीड बनाया, जिस पर अखबार ने लिखा घुसपैठ के कारण देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन की होगी पड़ताल। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में जारी अवैध खनन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ अदालत के दबाव में पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकता। इस खबर को समाचार पत्र अमर उजाला ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया अवैध बालू खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकारों को कड़े निर्देश। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में समुद्री निगरानी, बंदरगाह और अवसंरचना को मजबूत करने के लिए नए उपायों की घोषणा की। इस खबर को समाचार पत्र अमृत विचार ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया हिंद प्रशांत में नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। इस खबर को समाचार पत्र स्वतंत्र भारत ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता लगातार बेहतर हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वासियों को 413 करोड़ रुपए की सौगात दी है, इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा योगी ने लखनऊ को दी 413 करोड़ की सौगात। सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर में बकरीद की अवकाश 27 से बदलकर 28 कर दिया गया है, इस खबर को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस पर अखबार ने लिखा यूपी में बकरीद की छुट्टी 28 को होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फार्मासिस्ट के 564 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा 21 जून के स्थान पर अब 29 जून को कराएगा, इस पर अखबार ने लिखा फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 29 जून को। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमतों में मंगलवार को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई, समाचार पत्र अमृत विचार ने इस खबर पर लिखा सीएनजी 2 रुपए प्रति किलोग्राम और महंगी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के लिए एक व्यापक विकास योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, इस खबर को अखबार ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा बांके बिहारी मंदिर के पास व्यापक विकास योजना तैयार करें और उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली से गोरखपुर जा रही निजी स्लीपर बस मंगलवार को सुबह अनियंत्रित होकर आगरा एक्सप्रेसवे पर पलट गई, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, इस खबर को समाचार पत्र ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा उन्नाव में डिवाइडर पर चढ़कर पलटी स्लीपर बस 7 की मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दलित अब पार्टी के भीतर एक केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, इस खबर को समाचार पत्र स्वतंत्र भारत में प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस पर अखबार ने लिखा

कांग्रेस में अब दलितों की होगी केंद्रीय भूमिका, राहुल। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।

0: और इश्क का पैगाम लेके एक बार फिर से आपके दो दोस्त यानी कि विनय और रत्ना शुक्ला हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।
1: जी हाँ, इस घंटे भी हमारे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए। हाँ। फिलहाल छैया छैया करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
0: जी अच्छा विनय, ये बताइए, ब्रेकफास्ट शो है गुड मॉर्निंग लखनऊ, है ना? तो आपको इस वक्त स्टूडियोज में ब्रेकफास्ट की याद आ रही है?
1: बहुत ज्यादा। जी
0: अच्छा,
1: तो सामने एक झोला दिख रहा है, अगर उसमें कुछ होगा तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा।
0: जी आजकल झोले में तो बहुत कुछ लाने का एक मौका रहता है, क्योंकि वो कहते ना कि जैसे हम बात करने जा रहे हैं सत्तू की,
1: अरे वाह,
0: तो सत्तू की बहुत सारी डिशेस होती हैं, तो उसका भी हम लोग सेवन कर सकते हैं। देखते हैं झोले में क्या निकलता है। फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की
1: गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बड़े सारे साथी अब तो तैयार हो चुके होंगे, चाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें बड़े सारे मेल भेजे हैं। अच्छा? तो रखना, वक्त आ गया है कि हम मेल्स पढ़ें। और बहुत से लोग सुबह 6 बजे से हमें सुन रहे हैं, और सुल्तान रजा ने सबसे पहले मेल किया है कि हमसे, अच्छा अस्सलाम वालेकुम का है, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जिशान रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा।

0: पापा और इन्हें हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत हमारे रेगुलर लिसनर हैं ये।
0: और साथ ही साथ हमें उमा शंकर शर्मा जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा है। और मैंने जो पहला गाना सदाबहार गीत में बजाया था ना, हाँ। कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, तो इन्होंने उसी से शुरुआत की कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले जो है गीतों की माला एक एक मोती, इन्होंने कहा है कि अनमोल है, आज बेहतरीन गाने बजे हैं, हाँ। और ये हमें हरियाणा से सुन रहे हैं।
1: अरे वाह, आप इतनी दूर दूर से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए समय निकाल कर।
0: और राधे श्याम जी क्या कह रहे हैं?
1: राधे श्याम जी भी मेल करके हमसे कह रहे हैं कि शाक या कसनगंज से इन्होंने मेल किया, और आकाशवाणी की पूरी टीम और समस्त श्रोताओं को गुड मॉर्निंग इन्होंने कहा है। प्रोग्राम में सॉन्ग्स मस्त मस्त प्ले हो रहे हैं और नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स भी लिखा है इन्होंने, तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया राधे श्याम जी।
0: जी, और मनोज सेठ जी ने सुबह सुबह एक श्लोक हमें भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेल किया। और नवीन मिश्रा जी ने कुछ लिखा है,
1: हाँ लिखा है इन्होंने, बहुत छोटा सा लिखा है लेकिन बड़ी बात लिखी है कि विनय सॉन्ग सेलेक्शन इज सुपर्ब।
0: अरे वाह,
1: अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई।
0: सदाबहार गीत के लिए आई थिंक इन्होंने मेल किया है, और आई थिंक एक और मेल है, आरजे सूरज ने हमें बहराइच से मेल किया है।
1: और स्वीट से प्यारे प्यारे स्टार को शुभ प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ शुरुआत, धन्यवाद आप दोनों को। तो आज सूरज सिंह जी जो शेखापुर विशेश्वरगंज से बहराई से उन्होंने मेल किया, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी मेल करने के लिए।
0: और साथ ही साथ हमें छत्तीसगढ़ से सुन रहे हैं हिमेश्वर साहू, करण साहू और चंपा साहू, और इन्होंने फरमाइश की है, भाई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है।
1: तो पूनम गौतम जी का भी मेल आ गया और लिखते हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और शानदार चल रहा है, तो चलिए ये बात सुनकर और अच्छा होने वाला है ना।
0: जी जी जी।
1: लखनऊ केंद्र द्वारा गीतों की फरमाइश और श्रोताओं से जुड़ने के कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक है, आपकी पूरी टीम को इस बेहतरीन प्रसारण के लिए बहुत बहुत बधाई, और सभी सुनने वालों वाले साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बहादुर सीतापुर से सुन रहा हूँ पूनम गौतम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए, प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए।
0: बिल्कुल, और वारिस अली साहब ने हमें एक बढ़िया सा शेर भेजा है कि चाय हो या चाह, रंग एकदम पक्का होना चाहिए, फिक्र हो या जिक्र, अच्छा। रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो मैं नोट करने वाला हूँ। और इन्होंने कहा कि जैसा कि इस वक्त चाय की जिसकी के साथ जीएमएल सुन रहा हूँ, तो मैं तो रिश्ते निभाने के लिए पिछले 20 सालों से एफएम का जिक्र और फिक्र करता रहा हूँ, जीएमएल में अच्छे गाने प्ले हो रहे हैं। और इन्होंने मुद्दे पर भी लिखा है, लोग अपने चैम्बर में एलईडी लगाते हैं, मैंने एफएम लगा रखा है, यानी मुझे दूसरों से, जो मुझे दूसरों से अलग करता है, क्या बात है। ऐशबाग लखनऊ से हमें इन्होंने मेल किया है, और ये इन्होंने मुद्दे पे लिखा है कि एफएम लगाकर सुनना इन्हें अलग करता है।
1: वाह, वाकई में 100.7 एफएम रेडियो की बात ही कुछ और है। और मुद्दे की बात विनय जहां तक करते हैं, आज का हम लोग का जो मुद्दा है वो ये है कि आपकी ऐसी कौन सी स्किल है, कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग करती है, तो उस पर लोगों के आंसर आ रहे हैं, आपने सुना। उसके साथ एक और मेल किया है सूरज सिंह शेखापुर विशेश्वरगंज बहराई से, इन्होंने मुद्दे से रिलेटेड जो मेल किया है वो ये है कि प्यारे प्यारे स्टार को शुभ प्रभात, और साथ में इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग भी लिखा है, और लिखते हैं कि खूबसूरत नगमे चल रहे हैं प्रोग्राम और गजब की जानकारी और उम्दा सॉन्ग्स चल रहे हैं। आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, लगातार सीखना, कंटिन्यूसली लर्न करते रहना, और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेने की क्षमता है मुझमें, जो मुझे सबसे अलग बनाती है।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जो क्वालिटी है आपके अंदर है, और इसको प्लीज बनाए रखिएगा।
1: बिल्कुल,
0: और देखिए मुद्दे पर हमें फिलहाल रोशनी रावत ने नहीं लिखा है, और इन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है, प्रोग्राम की तारीफ की है, और चंडीगढ़ से नहीं सुन पाए, और मुद्दा ठीक से समझ नहीं आ रही, बड़ा सिंपल सा है, ऐसी कौन सी क्वालिटी स्किल है जो आपको दूसरों से अलग करती है, हमें बताइए fmakashwani@gmail.com पर, अभी आपके पास समय है। और फिलहाल अब वक्त हो चला है कि हम एक बेहतरीन ट्रैक सुनते हैं, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: एक बार फिर से सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। और अब हम
4: जी हमारे साथ आ चुके हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी। तो सर गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर आज लखनऊ शहर में वर्तमान में सामान्य यातायात है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात का दबाव नहीं है। प्रत्येक प्रमुख चौराहों तिराहों मार्गों पर यातायात पुलिस मौजूद रहकर सुगम यातायात का संचालन करा रही। सर जैसा कि जो है गर्मियों की छुट्टी चल रहा है, तो ऐसे में छुट्टी के समय में और बहुत से ऑफिस जो है बंद रहते हैं, तो ऑफिसों के बंद होने के कारण ट्रैफिक लोड तो नहीं है, परंतु जो हमारे

0: वाहन चालक है, उनसे हमारा बस यही अनुरोध है कि जैसे अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो कृपया जहां पर डायवर्जन व्यवस्था की गई है वहां पर पहले से ही यदि आप जागरूक रह करके डायवर्जन का पालन करते हैं तो आपको अपने गंतव्य तक जाने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो गर्मियों के समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने वाहन की पहले से ही प्री राइड चेक कर लें, जो राइड करने से पहले ही उसको तसल्ली कर ले, मुतमईन हो जाए, उसके बाद ही अपने वाहन को रोड पर लेकर के निकले। साथ ही जब आप रोड पर हैं तो आपके माध्यम से अनुरोध यही है कि आप रेड लाइट पर कृपया घबराए नहीं, थोड़ा सा रेड लाइट जंप ना करें। और क्या होता है सर कि गर्मियों में जो स्टॉप लाइन होता है वहां पर रुकने के बजाय लोग ज्यादा तेज धूप की गर्मी रहती है तो उससे जो है इधर उधर हो जाते हैं और इससे अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न होती है और सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होती है। तो
1: जी
0: इसके लिए जो

0: घबराए नहीं, थोड़ा सा रेड लाइट जंप ना करें। और क्या होता है सर कि गर्मियों में जो स्टॉप लाइन होता है वहां पर रुकने के बजाय लोग ज्यादा तेज धूप की गर्मी रहती है तो उससे जो है इधर उधर हो जाते हैं और इससे अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न होती है और सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस नगर निगम से हेल्प लेकर के जहाँ जहाँ सिग्नल है वहाँ पर हम ग्रीन सेट की व्यवस्था करा रहे हैं। साथ ही बस यही अनुरोध है कि अगर आप यातायात पुलिस का सहयोग प्रदान करेंगे तो हम आपको बेहतर यातायात उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं।
1: तो सर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और नगर निगम का भी। मैंने हजरतगंज में देखा कि शेड लग गए हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है आप सभी,
2: बहुत बड़ी राहत है इनफैक्ट ये।
0: जी जी धन्यवाद सर जी। और श्रोताओं से यही अनुरोध करेंगे कि आप कृपया यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे अंदाज में आपने लोगों तक ये बात पहुंचाई। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए ट्रैफिक का तो बिल्कुल ताजा तरीन हाल आप तक पहुंच गया, क्या क्या एहतियात कौन कौन से नियम को फॉलो करना है ये भी पता चल गया। तो इसके साथ अब हम क्या करेंगे विनय?
1: अब एक बेहतरीन ट्रैक सुनेंगे और उसके बाद वापस आते हैं।

0: प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: इतिहास के पन्नों में आज का दिन

0: जय दोस्तों, आप सुन रहे 100.7 FM रेनबो और अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को झांकते हैं।
1: और आज की तारीख बड़ी विशेष यानी कि 27 मई की हम बात करें तो आज की तारीख में क्या कहती है कुछ आज की हिस्ट्री, इस बारे में आपसे बात करते हैं। 1999 की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का बड़ा पर्यावरण सम्मान, जी कितना अच्छा लग रहा है सुन के ना, पर्यावरण सम्मान सोफी प्राइज यानी कि अमेरिकी पर्यावरणविद डर्मन एच हिलेल और भारतीय पर्यावरणकर्ता अनिल अग्रवाल जी को प्रदान किया गया था।
0: कितनी बड़ी बात है कि पर्यावरण का भी हम ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ सन 2005 की बात करें तो साउथ अफ्रीका सरकार ने राजधानी प्रिटोरिया का नाम बदलकर तुशोने कर दिया था, लेकिन सही मायने में आधिकारिक रूप से घोषणा जरूर हुई थी लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। आप अगर सर्च करते हैं अभी गूगल पर कि साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है तो वो प्रिटोरिया ही आएगा।
1: और इसके साथ आगे अगर बढ़ते हैं तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था आज के दिन।
0: सन 2011 की बात करें कि गूगल ने भारत में अपने स्ट्रीट व्यू फीचर को शुरू करने की योजना की घोषणा की थी, जिससे लोग इंटरनेट पर शहरों की गलियों और सड़कों की तस्वीरें आसानी से देख सकते हैं।
1: और ये बहुत ज्यादा काम की चीज होती है।
0: बिल्कुल जी, जनगणना हो रही है, स्वगणना में हमने क्या किया, वही किया ना कि हमने गूगल से अपने घर को चिन्हित किया और उसके बाद हम आगे के प्रोसेस में बढ़े।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब बातें और उसके बाद एक और ट्रैक सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
1: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
0: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 444-444।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है
1: भाई। अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट

0: म्यूजिक आते लोग अलर्ट हो जाते होंगे कि देखिए मेरा मेल शामिल किया जाता है कि नहीं. जितने लोगों ने मेल किया बड़े
1: बेसब्री से इंतजार करते हैं. बिल्कुल
0: जी. 9:40 हो गए, वक्त चल रहा है. इस वक्त के साथ हम चल रहे हैं और हम पहुंच गए हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ के इस सफर में थोड़ा सा आखिरी पड़ाव के करीब.
1: जी.
0: और कई चीजें शामिल की, बहुत सी चीजें अभी भी आप तक पहुंचानी है, जिसमें से एक हम और बात करते हैं, कई लोगों की फेवरेट भी है और उसको बहुत ज्यादा नियम से लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड सनस्क्रीन डे.
1: तो सनस्क्रीन आजकल बहुत जरूरी है.
0: हाँ.
1: बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं तो स्प्रे कर लेते हैं सनस्क्रीन का, या फिर ऐसा ना वो क्रीम टाइप का होता है वो लगा लेते हैं. आप लगा क्या ही है?
0: जी अभी तो नहीं लगा के भूल गई लेकिन हाँ दोपहर तक इसको लगाने की कोशिश रहेगी, देखते हैं. और इसकी बात अगर अच्छा ये बात आपने विनय की, ये बताइए आपने लगाई थी सुबह सनस्क्रीन?
1: नॉर्मली हम नहीं लगाते हैं, हम तो ऐसे नेचुरली ऐसे.
0: वाह, आप वैसे ऑलरेडी बड़े आगे डैश डैश कुछ नहीं कहेंगे तो फिर आप थोड़ा उड़ने लगेंगे.
1: अरे वाह, थैंक यू.
0: ये जो इसका सनस्क्रीन डे मनाया जाता है आज के दिन 27 मई को, इसका मुख्य उद्देश्य सूरज की जो हानिकारक किरणें होती है ना उनसे त्वचा को होने वाले नुकसान से बढ़ाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना कि इससे जो नुकसान हमको हो सकते हैं उससे हम बचाव करें, ऐसा जागरूक लोगों को करने के लिए दिन मनाया जाता है. और जो इससे सनस्क्रीन का उपयोग करके जो त्वचा है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं.
1: बिल्कुल. आजकल ना बहुत तेज धूप हो रही है, सन बर्न हो सकता है, कई बार आपको रैशेस तक हो जाते हैं और इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है. तो जिनको थोड़ी एलर्जी है या जो बहुत ध्यान रखते हैं अपनी त्वचा का, तो वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, ये दिन यही बता रहा है.
0: जी. और अगले बात जो हम लोग करते हैं वो हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मधुर सी आवाज़ निकालने वाला वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं पियानो.
1: क्या बात है.
0: और इस वाद्य यंत्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ओल्ड टाइम प्लेयर पियानो दिवस हर साल 27 मई को मनाया जाता है.
1: और दोस्तों आप जानते हैं कि संगीत के जरिए खुशी खुशी खुश होने का मूड, इसलिए खुश होने का मूड बन जाता है और इसकी जो मधुर ध्वनि है वो हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे दिल को सुकून पहुंचाती है.
0: जी. तो पुराने जमाने के पियानो दिवस यानी कि आज 27 मई को आप पियानो से के बजे हुए संगीत को सुनकर एंजॉय भी कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. आपको आप अगर पियानो नहीं आपके आसपास है तो यूट्यूब पर उसका म्यूजिक लगाइए, बड़ा ही सूदिंग सा लगता है.
0: वाह, एक अच्छा सा आपने सजेशन दे दिया है लोगों को विनय. और हमने कहा था म्यूजिक बजते लोग सुनना चाहते हैं कि मेरा नाम आने वाला है कि नहीं मेल में.
1: तो आइए हम मेल्स भी बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. तो जिसमें ये जिससे हमने छोड़ा था उसको हम लेते हैं. पुष्पेंद्र जी ने हमें मेल किया है. रोजमर्रा की भाग दौड़ में आपके रेडियो स्टेशन में हिंदी गाने सुकून देते हैं. लखनऊ FM पर गानों का चुनाव बहुत उम्दा है, इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद. और लिखते हैं आपके FM स्टेशन में पुराने और नए गानों का मिश्रण अद्भुत है. गीतों की यह बेहतरीन सीरीज हमारे सफर और काम के दौरान सबसे अच्छी संगीत में साथी बन जाती है. अरे वाह पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: और रोशनी दावत लिखती है कि विनय भैया, रत्ना मैम जी, आप दोनों कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं. और पुष्पांजलि और सदाबहार प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे विनय जी, फिर से बधाई आपको.
1: थैंक यू.
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ भी बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से जुड़े हुए प्रोग्राम से, और आज के गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं. ये इनका हम लोगों के लिए तारीफ है, सुबह से ही सुन रही है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी. और चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है फिलहाल बमीना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव में ये रहती है. और मुद्दे से जुड़ी इन्होंने बात नहीं लिखी, लेकिन जो बात लिखी है वो हमने ऑन ईयर की. रोशनी जी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी. और हमें देखिए होशंगाबाद MP से एक मेल आया है. आकाशवाणी लखनऊ के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार. और ये प्रवीण

0: मित्री जी हैं मुद्दे पर कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, सभी का सम्मान करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, इससे लोगों के दिल में अपनी एक खास पहचान बन जाती है। अरे वाह,
1: यानी कि हमारा जो आज का मुद्दा है कि आप किस तरह से अपने आप को औरों से अलग समझते हैं, हाँ, तो इनका ये नेचर है कि ये सबको सम्मान देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, हाँ। अच्छा ठीक है, तो तालिब अंसारी जी का भी हम तक ग्राम राजा कटरा बाराबंकी से गुड मॉर्निंग एफएम रेनबो लिख के इन्होंने भेजा है और मुद्दे से जुड़ी कोई बात नहीं कही। आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग तालिब जी।
0: और साथ ही साथ मुनेश कुमार राज ने हमें लखीमपुर खीरी से मेल किया है और कहते हैं कि इनको, अरे आज स्वेच्छा मैम नहीं है, आज है रत्ना मैम, आपने स्वेच्छा का नाम लिख दिया है। और कह रहे हैं कि आज मैं लखनऊ में ही हूँ, विश्वेश्वरैया प्रेक्षा गृह में कुछ एक कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं और लखनऊ की सुबह गुड मॉर्निंग लखनऊ का साथ राष्ट्र को सम्मान। अच्छा, और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है मुनेश कुमार राज जी।
1: और प्रकाश बोरगांवकर जी का भी मेल आ गया है लेकिन उन्होंने मुद्दे से जुड़ी कोई बात नहीं लिखी, सिर्फ मेल किया है, तो आपका दिल से हम शुक्रिया करना चाहेंगे और आपसे बोलेंगे कि मुद्दे को आप अगर सुनते हैं कि आप किस तरह से लोगों से अलग हैं, आप में क्या खास बात है, ये आपको हमें मेल करके बताना है। अगर इससे जुड़ी कोई बात लिखते हैं तो हम वो भी ऑन एयर करेंगे। गुड मॉर्निंग लखनऊ ने लिखा, इनको प्रोग्राम अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी।
0: जी, और अब हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं एक सॉन्ग के साथ। सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: Listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा.
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो.
7: और आपको बता दें 9:51 हो रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में. विनय और रत्ना शुक्ला हैं आपके साथ और आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं आज की तारीख से जुड़ी. तो आज की हम अगर बात करते हैं तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और साहित्यकार थे. उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नई दिशा देने में एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और विचारपूर्ण मानी जाती है. वे साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के संपादन से भी जुड़े रहे.
8: जी, और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम बर्थडे की बात कर रहे हैं तो आज ही के दिन जन्म हुआ था 1928 को बिपिन चंद्र, जो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक थे. इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारतीय इतिहास पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं और इतिहास को सरल और तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं.
7: और आगे बढ़ते हैं. 1962 में 27 मई के दिन क्या हुआ था जो मेरे काफ़ी फेवरेट हैं, कई लोगों के, आप लोग के भी होंगे. रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी, कोच और प्रसिद्ध कमेंट्रेटर, ये अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे. और क्रिकेट से इन्होंने संन्यास के बाद कमेंट्री और कोचिंग में भी बड़ी सफलता हासिल की और उनके संरक्षण में, उनकी कोचिंग में टीम ने भी बहुत तरक्की की. उनकी आवाज़ और क्रिकेट विश्लेषण दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और कई लोगों के फेवरेट क्रिकेटर भी हैं रवि शास्त्री
8: जी. और आपने सुबह सुबह जो मंत्र सुना था वो इन्हीं की कलम से निकला हुआ था
7: जी.
8: और आगे बढ़ते हैं तो आज ही के दिन एक बेहतरीन एक्टर फराज खान की जयंती है. फराज खान हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न के अभिनेता थे. उन्होंने 1990 के दशक में कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम किया है. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय की शैली के लिए पहचाने जाते हैं. फिल्म मेहंदी में ये काफ़ी चर्चा में आए थे.
7: और फिर इसके आगे बढ़ते 1985 की बात करते हैं तो चिराग जैन हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार हैं. वो और मंचीय कविता और हास्य व्यंग शैली के लिए जाने जाते हैं. उनकी कविताएं युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, सबसे मेन बात ये. और वे कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी रचनाओं की खूब सराहना होती रहती है.
8: और साथ ही साथ त्रिशा जॉली भारत की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी हैं. इनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है. इनके साथ जो भी दोस्त अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई और शादी के साथ गिरा है तो उसकी भी बधाई. और फराज खान की बात की है तो उन्हीं के फिल्म का ये बेहतरीन गाना आप सभी के लिए.

0: और इस सॉन्ग का क्या इशारा होने वाला है वो आप अभी सुनेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि 9:57 हो रहे हैं और विनय क्या कहने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, बड़े सारे लोगों ने मेल किया, जल्दी से नाम पढ़ देते हैं क्योंकि अब बहुत समय नहीं बचा है हमें। रमेश चौहान, आर्यन वर्मा, तालिब अंसारी, ब्रजेश सिंह, घनश्याम सिंह,
0: मनोज विश्वकर्मा, गुलफसा सिद्दीकी और राम मोहन गुप्ता जी और छबी राम सिंह जी, साथ में रोशनी रावत जी, महेंद्र दीपन जी और वकील अहमद जी, आप सब ने भी मेल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मेल करने के लिए।
1: जी, और हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि हम आपका मेल पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं।
0: अरे वो खुश होगा भैया, उनका नाम आपने ऑन एयर कर दिया।
1: नहीं, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। आप राम मोहन गुप्ता जी बहुत ही प्यारी लाइन्स लिखते हैं हमें कविताएं, और महेंद्र दीपन जी बहुत प्यारे सा पोस्टर बनाकर भेजते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया। गुड मॉर्निंग लखनऊ से विनय को इजाजत दीजिए, हम लोग फिर कभी मुलाकात करते हैं।
0: बिल्कुल, रत्ना आपसे जुड़ी रहेगी, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। योगी सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को भव्य एवं नव्य स्वरूप प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होने वाली भव्य गंगा आरती श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज के पावन संगम क्षेत्र में अब प्रतिदिन फ्लोटिंग जेटी पर भव्य गंगा आरती का आयोजन शुरू हो गया है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर स्थित फ्लोटिंग जेटी पर गंगा पूजन के बाद आरती उतारी और इसका शुभारंभ किया। इससे संगम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रत्येक शाम को एक अविस्मरणीय दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाली जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावोलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी शंकर मिश्र, पूर्व IAS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रही जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। 28 और 29 मई को कई राज्यों में आंधी चलने, बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में कल भी दिन भर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिन भर विशेष पूजा अर्चना की, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जनगणना 2027 में मकान

0: सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अपर भारत देश का विविधता, श्रेष्ठता और लोकगीतन की मिठास, खुशबू, इस सब लेके आप सबै के बीच मां आपके रेडियो साथी रत्ना शुक्ला आई गई हैं। तो सबै श्रोतागण के प्रणाम, स्नेह नमस्कार, खंबागढ़ी सा केम छो। हम यू सब कुछ पठे दिए ने सब जनन का। मुला बताई दे कि 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यू कार्यक्रम सुगंध माटी की शुरू होई गवा है। बने रहे हो हमरे साथ, तो शुरू की जाए आज का ये सुघर सफर ये गीत के साथ। तो चलो सुना जाए।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अरे भाई ये कैसन जेठ बैसाख के दुपहरी भइल बा। सूरज देवता खूबे चमकत होवे ता अगर बहुत जरूरी ना होखे ता घर से बहरे निकसबे मत करी। बाकी रोजगार खातिर बहुतन के गांव से शहर और शहर से गांव ता आवे जाए के परब करी। ता कुछ बात एकदम मत भूल सुना हम का कहे जा रही हैं। घर से निकसे से पहरे पेट भर पानी पी के तब निकसी साथ में पनिया के बोतल भी रख लीन। ओई के बाद सूत

मुरेठा गमछा दुपट्टा से खोपड़िया के ढक ली। रस्ते में कौनो सड़ल पुरान खुल्ला दुकान के खान पान मत खाई। जूस नींबू पानी सत्तू शरबत बेल यू सब पिया करी। वही के बाद गर्म सरद से सावधानी बरते। हाँ, गर्मी सर्दी से सावधानी बरते से कहे से कहना कि नीक नीक तबीयत रही और नीक नीक तबीयत के बाद कहूँ जाए आए के बहुत मन करी और जीव अच्छा रही, है ना। यूँ सब बातें एहतियात बरते के हैं। तो चलो यूँ मीठी मीठी गीत तनिक सुन लो, वही के बाद और बत कही करब तुम सब लोग के साथ।

वाह वाह वाह बोलिया बोले लियो गोरिया जैसे कोई कोई लरिया अत्ते इत्ते समान और ते मीच मीच गवने ही आप सुनो बहुत बहुत नीक गवने ही हमका यू लागत है और अब खूब हालो एकदम दारुण बंगला गान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और बहुत ही सुनावा बहुत ही परंपरागत गान है ये

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
4: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
5: शत्रुपा से माँ जी।
4: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
5: शत्रुपा से।
6: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
5: शत्रुपा से।
7: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
8: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: Τι μέρη! Τι μέρη!
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूँ यार
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
2: तो क्या करूँ
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा
3: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई DND ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी देश के विकास में सहभागी बने
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की

और अब यूं कहे के बिरिया है कि आप सभी लोगों से हम कहित हैं कि आप लोग अपन विचार दे सकत हो रख सकत हो FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल करके कार्यक्रम चल रहा सुगंध माटी की आप सभी लोगों के साथ है आपकी हम सफर आपकी सखी रत्ना शुक्ला। तो यूं बताओ कि कार्यक्रम यूं जब सुन रहे हो साथ में गुनगुनावत हो तनिक थिरकत हो कि नहीं कैसे कि गर्मी के दिन पड़त हैं तो जौन जौन काम करे के है चाहे यू बेरिया में चाहे अगली बेरिया में लेकिन काम तो करे के है तो काम तो करे के चाहिए और काम जल्दी जल्दी नीक नीक निपटाए के लेकिन साथ में कहूँ अपने आसपास FM रेनबो जरूर लगाई रहो। कैसे कि भारत की इतनी विविध विविध भाषाएं हैं विविध विविध रंग है संस्कृति है वेशभूषा है सभी की हम बात कर रहे हैं सभी के हम बारे में कुछ कुछ तनिक तनिक गीत सुनाए जा रहे हैं तो यू गीत सुनो और एक गीत के बाद हम यू गीत के बाद बात करब कैसे कि यू गीत आवे खातिर बहुत बेकरार बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कैसे पहुंची श्रोता लोगन तक। तो चलो सुनवाई दे तुम सबन का ये गीत।

तो यू कहा सुनो कि राजस्थानी के बहुत तारीफ बतावे के बाद आवे वाले जो ये कुछ गीत सुनो ना तो गोरी अपन पल्लों के लटकाए घूमत रही और बालम से कहते थोड़ा सा परे हट जाओ तो प्रीतम बतावत है कि गोरी पल्लो भीग ना जाए तनिक ऊपर कर ले तो यही खट्टी मिट्टी नोक झोंक गोरी की खूबसूरती का कई कई गावा गया यू गीत में। कत्ता बढ़िया नकारा ढोल सब सुनत हो यूहू हम बजाए दी ने घूमर अपन रंग बिरंगी संस्कृति वीरता अनूठी कलाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध राजस्थान यहाँ की समृद्ध विरासत हाथ की मीनाकारी घूमर कालबेलिया तेरह ताली और चरी नृत्य बहुत कुछ और बंधेज लहरिया

कुंदन मीनाकारी मेला खान पान दाल बाटी चूरमा घेवर जिसको मिठाई कहते हैं वेशभूषा पारंपरिक आभूषण बहुत ही मशहूर संस्कृति वैभव सब कुछ और मीठी मीठी बोली के साथ ये घूमर नृत्य

भाई हम तो यू गीत सुन के गदगदा गए, कहे से कि घूमर नृत्य करने में बड़ा मजा आवा थे, बहुत नीक नीक सब का कहते गहना होते के साथ पोशाक बहुत अलग होते, ये सब पहन के अगर नृत्य करे लागो तो का बात है, झूमा झूमा झूमा झूमा झूमा झूमा पार घूमर बिल्कुल सर चढ़ के बोले लागी। और उसके बाद हम बढ़ाते हैं काहे से कि हम बोले रहे कि जत्ते लोग हो जौन जौन सुनाते हो आप लोग सब कार्यक्रम में मेल कर सकते हो, तो देखो मेल कर दी ने मोहम्मद आसिफ हैदराबाद तेलंगाना से सुना थी और लिखा है रत्ना मेरे को माटी के सुगंध प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसको सुनकर गाँव की याद आ जाती है और आप लोगों की प्रस्तुति तो लाजवाब होती ही है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी लगी कि अगर इस कार्यक्रम को सुन के जिसका नाम ही है सुगंध माटी के सुनकर अगर आप गाँव की यादों से जुड़ जाते हैं तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है और दिल में एक अलग सा सुकून मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। अब हम बात पढ़ते हैं मोहम्मद आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है, लिखा है प्रणाम आपको भी बहुत बहुत नमस्कार मोनू सेठ जी, प्रोग्राम में आपके स्वागत व ई प्रोग्राम खातिर हमारे नानी जी बहुत उत्सुक रहते हैं और आज हमारे नानी जी के आम के गलका बनाए हैं। अरे वाह, ऐसी ऐसी नीक नीक बात कह दे तो बीच में नानी के सबसे पहले पहले गोड़ लागी, उसके बाद मोनू सेठ जी कहा कि गलका कौन चीज़ के साथ खाइयो, कौन चीज़ के साथ खाइबू तुम यू बताओ, बेसन की रोटी के साथ खाइयो कि कौन और चीज़ के साथ खाइयो, पूड़ी के साथ खाइयो, अब कहा जाने कौन चीज़ के साथ खाइयो, और हम हुआ नानी के हाथ से बना भोजन और गलका खा साथ ही साथ प्रोग्राम सुनत रहे, तो पुनरा प्रोग्राम तो कार्यक्रम सुने के बहुत जरूरी कहे से कि तुम्हारे लोगों के खातिर यू कार्यक्रम बनावा जाते और पेश करा जाते। तो भैया मोनू सेठ बहुत बहुत शुक्रिया मेल करे खातिर, नानी जी के तो हमारे गोड़ लागे प्रणाम कह दियो है ना, उसके बाद गलका खाओ सेहत बनाओ। उसके बाद का लिखिन है मोनू सेठ आगे का लिखी, बरसते नीर में जब माटी महक उठी, हर श्वास में जैसे उमंग से बहक उठी, सोंधी से खुशबू लिए कण कण है मुस्कुराता, ये माटी का चंदन सबको है लुभाता। बहुत नीक, बहुत अच्छी लाइनें आपने लिखी हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी माटी की खुशबू को हम तक पहुंचाती हैं। सोनू परवाना मेल कर लिखी है, कहा लिखी ने सोनू परवाना जी, लिखा है कि नमस्कार बहुत बहुत, और माटी की खुशबू और परिवार हमारी जड़ों संस्कारों और जीवन के सबसे गहरे सुकून के प्रतीक है। जिस तरह पहली बारिश में मिट्टी की भीनी सुगंध मन को तरोताजा कर देती, ठीक उसी तरह परिवार का साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें ऊर्जा और अपनापन प्रदान करता है। तो परिवार का साथ आपका बना रहे और साथ में संस्कारों की जो एक माला है उसके सब दाने आप लोग बिनते रहें और संस्कारों के साथ जीवन पार करते रहें, और इसके साथ हम आपको सोनू परवाना जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मेल करने के लिए। बड़े ध्यान से आप लोग सुनते हैं और सुनने के साथ साथ मेल करते हैं, अपने विचार रखते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, प्रोग्राम में जुड़ जाने की सबसे बेहतरीन कोशिश है ये। अब आंचल सेठ क्या लिख रहे हैं, दीदी को राम राम, हमारे सास ससुर भी आपका राम राम कहते हैं, हमाओं के राम राम गोड़ लगी, तो हर सास ससुर के बहुत बहुत प्रणाम हमको भेजे थे पठे थे। और माटी की खुशबू ये सिर्फ एक महक नहीं बल्कि हमारी जन्मभूमि और संस्कृति से जुड़ा एक गहरा एहसास है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं अपनी मिट्टी की याद और वहां का जुड़ाव हमेशा हमारे भीतर बसा रहता है। ये बहुत खूब बात आपने कही आंचल सेठ जी, खालिसपुर से आपने मेल किया है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे हमारी संस्कृति हमारा संस्कार और हमारा स्वभाव वो हमारे साथ रहता है, दुनिया के किसी भी देश में हम चले जाएं। तो ये गहरा सा साहस जो है संस्कृति का अपने साथ बनाए रखिए, अपने साथ वालों को भी इस एहसास के साथ जोड़िए। महेंद्र दीपन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा सा मेल किया है इन्होंने, गांव रूणा जिला नागौर राजस्थान से आपका नियमित श्रोता हूँ, आज सुबह से मैंने 7 बजे रेडियो ऑन किया, तब मैंने उम्मीद थी कि सुबह 8:15 से दोपहर 12 बजे तक आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, बिल्कुल हम आपके साथ जुड़ गए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम शुरू हुआ और आपकी सुरीली आवाज कान में पड़ी, मेरा मन सचमुच प्रसन्न हो गया जी, आपके साथ साथ बहुत हमको भी खुशी हुई अपना मेल पढ़कर। और गुड मॉर्निंग लखनऊ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सभी आरजीएस

पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट कर सकें और बहुत कुछ आप तक पहुंचा सकें। इसके बाद लिखते हैं, मैम आपके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा प्रोग्राम सुगंध माटी की मुझे बेहद पसंद है और मुझे इस शो का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। आपकी शानदार प्रस्तुति इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देती है और आप लोग इतना मन लगा के सुनते हैं तभी तो चार चांद लग जाते हैं। इसके साथ इसी खुशी के मौके पर मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। राजस्थान के स्वर कोकिला आदरणीय नाम लिखा है जी का भी कोई खूबसूरत सा राजस्थानी लोकगीत प्ले कर दीजिए। आपकी आवाज़ में राजस्थानी माटी की महक को सुनना मेरे लिए बेहद खास होगा। तो आपने जब ये मेल किया होगा उसके बाद इसी आवाज़ के दो गाने आपने सुने तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे और आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमें सजेशन देने के लिए और इतनी हौसला बढ़ाने के लिए। महेंद्र दीपन जी इसी तरह से मोहब्बत लुटाते रहिए FM रेनबो के साथ। अब हम इतने सारे मेल शामिल कर चुके हैं तो सोचते हैं कि आप लोगों ने जो संस्कृति से जुड़ाव की और माटी की सुगंध की जो बात की ना तो ये गाना तो बनता है। आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, इस गाने को सुनिए और उसके बाद फिर आती हूँ वापस लौट कर।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: सात हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग,
3: FM रेनबो के संग।
5: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

और देखो 10:57 होगा। अरे हाँ बिल्कुल, जरा सा टाइम बचा है और इतने लोगों ने मेल कर दिया है, कैसे कैसे सबके मेल शामिल करूं। और ये मिसेस गीता सेठ जी का मेल आ गया है। आंगन की गीली मिट्टी में खेलना, आम के पेड़ों की छांव, दोपहर में दादी नानी की गोद में सिर रखकर सो जाना असल जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाते थे, वहां की पूरी बात इन्होंने लिखी। गीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ रामराज जी का भी मेल आ गया है, गुलफसा सिद्दीकी जी का भी मेल आ गया, तेज बहादुर यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोशनी रावत जी आपका भी बहुत स्वागत है, घनश्याम सिंह जी, वकील अहमद जी और जितने लोगों ने हमें मेल किया, मोहम्मद आसिफ जी, इन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पूरा मेल शामिल नहीं कर पा रही हूँ, उसका मुझे अफसोस है, लेकिन आपने जो बात लिखी है वो सब बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने लिखी है। 10:58 हो गया, बिल्कुल भी मेल शामिल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जाते जाते आप तक ये गुजरात की संस्कृति से आपको जोड़ के जाऊंगी और ये गीत आप तक पहुँचाती हूँ। आप सबसे कहेंगे अपना ख्याल रखिए और नेक नेक गवनई के साथ एफएम रेनबो के साथ जुड़े रहो। रत्ना शुक्ला मिलिए अगले कार्यक्रम में, बने रहो, सुनत रहो।

नमस्कार, 11 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इन्होंने इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को और हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग की सभी कार्ययोजना पर ठोस व प्रभावी एवं त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। कार्य धरातल पर नजर आनी चाहिए। योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री केशव प्रसाद मौर्य कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। झांसी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह चाइनीज वेबसाइटों, इंडोनेशियाई सिम और हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 114 बैंक खातों की पासबुक और करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में 4,35,64,000 रुपये से अधिक की रकम फ्रीज कराई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। 28 और 29 मई को इन राज्यों में आंधी, चलने, बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में कल भी दिन भर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।

0: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट वैक्सीन शत्रुपा मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

Well, आप सबसे मिलने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में आ चुकी हूँ। 11:06 हो रहे हैं। प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे आपके बीच आ गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें आप मेल करते हैं, आप फोन करते हैं और हम आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो हमें आपको सिर्फ जुड़ना है इस प्रोग्राम में, अपनी बात आपको देना है, प्यारा सा संदेश देना है और फोन कॉल भी आप कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। इस सॉन्ग को एंजॉय करिए, उसके बाद आपके हम सफर आपके होस्ट एंड दोस्त रत्ना शुक्ला आपसे कुछ और बातें करेगी, आपकी बातें दूर तक पहुंचाएगी। स्टे ट्यून्ड।

बावरा सब कुछ चलता रहेगा आपके रेडियो सेट पर, लेकिन आपको बता देते हैं कि आप भी हमें फोन कर सकते हैं 0522 ये कोड है, उसके अलावा 2238 ये फोन नंबर डायल कर सकते हैं या फिर 2238 852। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि 0522 आपको लखनऊ का कोड पहले लगाना होगा अगर आप लखनऊ से बाहर से फोन कर रहे तो। 2238 845 2238 852 ये फ़ोन नंबर है, आप डायल कर सकते हैं। और आईडी है मेल आईडी fmakashwani@gmail.com। सुनते रहिए, जुड़े रहिए। अब किन की फोन कॉल हमारे बीच में आ गई, सुनेंगे इस गीत के बाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
2: वो भूली दास्तान जो फिर याद आ गई।
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: हेलो
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: दीदी, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।
1: जी, आपका प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे में बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासुदा, जिला विदिशा।
1: जी साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदेश, आपके गीत हमारे प्रोग्राम में। और ये बताइए
0: बिल्कुल,
1: कि क्या करते हैं आप?
0: हम दीदी देखो, वैसे तो पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम।
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल दीदी, आइए गंज वासुदा, आइए, आपका स्वागत करते हैं। आपकी पुरानी श्रोता है वैसे हम।
1: नहीं, मालूम है आप बिल्कुल आकाशवाणी के पुराने श्रोता हैं। और ये बताइए, आज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका पानीपुरी का दुकान अच्छा चल रहा है?
0: हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा है दीदी। अब तो फिलहाल
1: हाँ
0: में क्या, गर्मी का मौसम चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है।
1: जी, बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छा
0: बिल्कुल दीदी, आइए आप गंज
1: जी,
0: वासुदा आइए।
1: बिल्कुल। और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज़ है कि सभी को लगभग पसंद होता है, और खड़े होकर खाने में
0: अरे
1: एक अलग ही
0: बिल्कुल
1: मज़ा आता
0: बिल्कुल, ये
1: है।
0: तो फेमस, और कहो तो सभी को पसंद है।
1: जी, संदेश
0: दीदी
1: बताइए
0: हम तो कम
1: अपना।
0: से कम 4-5 साल से ट्राई कर रहे हैं, पहला कॉल है आपके कार्यक्रम में।
1: ओह, अच्छा, तो साहू जी का आपका तो दुगना स्वागत है भाई इस प्रोग्राम में। पहली कॉल याद लगी आपकी, तो आप समय भी याद रखिएगा और तारीख भी याद रखिएगा, ठीक है
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: जी?
0: दीदी हम तो ये कहना चाहते हैं, जो श्रोताओं के नाम लेना चाहते हैं हम।
1: श्रोताओं के नाम इसमें नहीं लेना, आपको कोई संदेश आपका कोई हो तो बताइए।
0: संदेश यही है कि देखो, आजकल क्या है, मोबाइल का दौर चल रहा है, तो

साहू जी की कॉल कनेक्ट हुई थी लेकिन अचानक कॉल कट गई। कोई बात नहीं, जिनका मेल आ गया उनका मेल भी हम शामिल करेंगे, लेकिन सुरीली आवाज आ गई तो सुरीली आवाज को एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। सुनते रहिए, जुड़े रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन के साथ।

11:22 हो रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे इसमें हम आपके मेल शामिल करते हैं और मेल शामिल करते हैं आपके फोन कॉल शामिल करते हैं। देखिए सुन भैया मोनू सेठ जी ने मेल कर दिया है और लिखते हैं कि आज माटी के सुगंध गीत बहुत सुमधुर बजाए अपने बहन जी और कल रतन भैया ने बहुत उम्दा गीत बजाए उनको भी माटी के सुगंध प्रोग्राम में लाया जाए। अच्छा मोना जी अच्छा इन्होंने काफ़ी कुछ एंकर्स के नाम लिखे हैं और सभी का इंतज़ार किया करते हैं हफ्ते में ज़रूर आया करें उनके लिए और कई लोगों के इन्होंने लगभग सभी के नाम इन्होंने इंक्लूड करें और सभी आरजेस की सराहनीय प्रस्तुति रहती है इसमें कोई शक नहीं है और इनका सुझाव है कि रेनबो कैफे को 3 दिन और पॉप टाइम को 4 दिन करने की कृपा करें। तो ये इनका सुझाव जो है रेनबो कैफे को 3 दिन और पॉप टाइम को 4 दिन करने की कृपा करें और एक अपील उन श्रोताओं से रोज़ करता हूँ जो रोज़ कॉल करते हैं तो दूसरों को भी मौका दीजिए रोज़ रोज़ एक ही कॉलर को कॉल नहीं करनी चाहिए। ये सजेशन आपको बहुत अच्छा है और चूंकि जिनकी कॉल नहीं लग पाती वो निराश हो जाते हैं और मेरा मेल शामिल हो जाता है इसलिए मैं कॉल नहीं करता हूँ और सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि मौका मिले। तो उम्मीद है कि हमारी अपील श्रोता लोग सुनकर नाराज़ नहीं हुए होंगे खुश रहेंगे और ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। आपने ये बहुत अच्छी बात की कि आपने लगभग सभी आरजीएस का नाम इसमें मेंशन किया है और लिखा है कि कोशिश करें कि सभी आरजीएस तो अगर आप ध्यान देते हो वैसे तो आप लगभग सभी प्रोग्राम सुनते होंगे तो लगभग सभी आरजीएस हमारे बीच बीच में आते रहते हैं और बस आपको लगकर एफएम रेनबो सुनने की ज़रूरत है। मनु सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और किन का मेल हमारे बीच में आ गया है। वकील अहमद जी का भी मेल आ गया है। क्या लगते हैं आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। संदेश ये है कि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और बुज़ुर्ग माता पिता का ख्याल रखें एडवांस में बकरीद की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने दी। आप और वकील अहमद मंसूरी कटका हथौरी ज़िला सीतापुर साहिबा अंसारी शाजी अंसारी शमा परवीन रिंकी पिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी जी अहमद नवाब जी इन सबका नाम इन्होंने इसमें मेंशन किया। वकील अहमद जी आपकी तरफ से सभी श्रोताओं को बकरीद की एडवांस में मुबारकबाद पहुंच गई है और हमारी तरफ से भी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले बकरीद त्यौहार के लिए।

0: लेकर 76 भरोसे का सर्फेक इनाम। RHL गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: वेल 100.7 एफएम रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें हमें कई लोग फोन भी कर चुके हैं और मेल भी कर चुके हैं। अब किसका नंबर है कनेक्ट होने का फोन लाइन के जरिए? हेलो हेलो हेलो
5: जी, अब आवाज मिल रही है ना?
4: जी आवाज मिल रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बता दीजिए अपना।
5: सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्राम पोस्ट परसंडी कैसरगंज बहराइच से।
4: सत्यम जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप अक्सर फोन करते रहते हैं लेकिन इन दिनों आपने काफी दिनों बाद फोन किया शायद।
5: नहीं फोन तो करते थे लेकिन आपसे बात नहीं होती थी।
4: अच्छा जी ठीक है, आज हमसे भी बात हो, इसके पहले भी हमसे आपकी बात हो चुकी, मुझे याद पड़ता है। और सत्यम कैसे हैं, इस मौसम में क्या कर रहे हैं?
5: कुछ नहीं करते मैम, बस चुपचाप
4: लेटे बैठे रहते हैं और FM रेनबो सुनते रहते हैं जी। हाँ जी, अब आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो रहा है। और सत्यम बताइए क्या कहना पसंद करेंगे आज के प्रोग्राम में, जब चल रहा है संदेशों का एक सिलसिला चल रहा है, क्या संदेश देंगे?
5: मेरा संदेश है जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है
4: जी,
5: तो ज्यादा गर्मी ना हो तो बाहर ना निकले, और बाहर निकले भी तो पानी का बॉटल लेकर साथ निकले। वैसे तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए इस वक्त एकदम, क्योंकि जान है तो जहान है।
4: जी नाम ले लीजिए सत्यम जी, पानी की बॉटल साथ लेके रखने, और अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकले, ये सत्यम जी का संदेश।
5: सीतापुर से हैं सिस्टर समा परवीन अंसारी, लखीमपुर से हैं सिस्टर साहिबा अंसारी, और कहीं से डब्ल्यू यादव जी हैं, उनके एड्रेस तो नहीं मालूम मुझे जी। और आप
4: जी मेरा भी नाम ले लिया, मुझे भी आपने ये अपना संदेश जो है वो दे दिया, हम भी एहतियात बरतेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि मौसम में एडजस्ट करना हम ही लोग को पड़ता है, है ना?
5: बहुत धन्यवाद
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी का फोन हमें लगा था, कनेक्ट हुआ था, उनसे बात हुई, इन्होंने अपना संदेश दिया। इसके साथ हम देखते हैं क्या किसी ने मेल भी किया है।

एमा नवाब जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने लिखा है हाय डियर दी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ये चल रहा है अभी। हाँ, सुगंध माठी के प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रीति दीदी की आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ लिखा है टॉप टाइम में आप कब आएंगी वो अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं, साथ में शिल्पी का भी नाम लिखा है, उनके प्रोग्राम भी इनको पसंद आते हैं। और राखी और अनवारुल जी की भी आवाज़ इनको पसंद आती है। अहमद नवाब संदीला से इन्होंने मेल किया है, तो अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। बस आप रिलेट करती हैं इससे और जुड़ी रहती हैं, सुनती रहती हैं, मेल भी करती हैं, इन चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर में जो आपके बड़े हैं ना, शायद दादाजी, उनको हमारा बहुत बहुत नमस्कार कहिएगा। और अब किन का मेल आ चुका है भाई, कई लोगों का मेल, रामराज का जी का भी मेल आ गया है। और लिखा है कि क्या मैं आकाशवाणी लखनऊ में ईमेल भेज सकता हूँ, और प्यार भर नमस्कार दिया, साथ में धन्यवाद भी दिया है। और संदेश आपके गीत हमारे ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजभानु, शंकर भैया, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, काका, आपके यहाँ आकाशवाणी लखनऊ में आंगनबाड़ी, हाँ आप कार्यक्रम में अभी आपका मेल पढ़ा जा रहा है, तो आपने मेल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी। मेल कर सकते हैं आप, बिल्कुल आपने अभी भी मेल किया है। राजेश कुमार जी का भी मेल आ गया है, रत्ना दीदी नमस्ते, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, राजेश विद्यार्थी जी। अच्छा जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, साथ में आपके जो अपने हैं, आपके जितने भी जाने वाले, उनको भी जो आप एहतियात दे सकते हैं गर्मी में वो ज़रूर दीजिएगा, उनका साथ निभाइएगा। इसी तरीके से हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर, और कुछ अगर हमें कुछ ऐसे मालूम है जो हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं वो हमें उनको देना चाहिए, और किसी की अच्छी बात है उनको हमें ग्रहण करना चाहिए।

इन बातों के साथ प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में प्रोग्राम में कुछ ये गाना मुझे लगा कि चलो ये गाना आपको सुनवा देते हैं और हवाओं की क्या बात करें, पता नहीं चलने की नहीं चलने स्टूडियो में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि शायद हवाएं चल रही होगी, लेकिन फिलहाल ये गाना तो कुछ राहत दे सकता है।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर, आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: और वक्त के साथ चलते चलते 11:41 हो गए हैं और अब हम किसी से बात करने जा रहे हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हम मिंटू तिवारी, ग्राम भखारना, तहसील सागर, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
0: फतेहपुर से फोन कनेक्ट हो गया है। मिंटू तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। कैसे हैं आप?
1: आप कौन बोल रहे हैं? रत्ना जी बोल रहे हैं, रत्ना शुक्ला जी।
0: हाँ जी, रत्ना शुक्ला बोल रही हूँ।
1: मैडम जी प्रणाम।
0: अरे अब बिल्कुल, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मिंटू जी क्या करते हैं सबसे पहले ये बता दीजिए।
1: खेती किसानी के काम करते हैं मैम, बस आपका प्रोग्राम सुनते हैं शाम सुबह दोनों टाइम सुनते हैं।
0: जी जी, खेती किसानी का काम तो इस समय खेत में मुश्किल हो रही होगी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है।
1: हाँ, इस समय मतलब तैयारी मतलब कुछ बो दिया धान वाली।
0: जी जी,
1: मतलब अभी मतलब जारी है, अभी आज बोएंगे बो गई।
0: अच्छा, तो बुआई का काम क्या धूप ढलने के बाद करते हैं शाम में या अभी खेत में रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं?
1: शाम को वही करीब 5 बजे जाता है, हम जाते हैं हम दोनों भाई
0: जी।
1: तब अभी मतलब बोने की तैयारी चल रही खेत में, इसीलिए शाम को जाते हैं। सुबह मतलब अपने घर पे रहते हैं, अपना काम करते हैं, जानवर वानवर रखते हैं, उन्हीं में लगे रहते हैं, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: तो जानवरों को लेके ऐसा गर्मी में क्या एहतियात बरतते हैं ये बताइए मिंटू जी।
1: गर्मी में जानवरों के लिए मतलब धूप से बचाते हैं, पेड़ के नीचे मतलब बांधते हैं उनको, मतलब चारा खिला के उनको वो कर देते अरे स्नान करा के उनको मतलब छांव में बांधते हैं मतलब। हाँ, उनको
0: यानी कि जानवरों को भी डेली नहलाना जरूरी होता है इन मौसम में, या बोरी ठंडी करके गीली करके बांध देते, क्या करते हैं
1: मतलब? शाम को 8 बजे के बाद वो कराते हैं मतलब उनको, और उसके बाद जो है फिर एक बार वही करीब 10 बजे।
0: जी जी,
1: रात में मतलब 2 बार शाम को नुलते हैं, उसके बाद वो करते हैं सुबह पहर मतलब 8 बजे सब जानवर अंदर पेड़ के नीचे कर देते हैं।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपने कही। तो जितने लोग सुन रहे हैं, देखिए मिंटू तिवारी जी की तरह आप लोग भी अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखिए, गर्मी से बचाइए उनको, ठीक है? मिंटू जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फतेहपुर से आपने फोन मिलाया और हमने आपसे बात की, थैंक यू। तो मिंटू जी तो हमारे साथ कनेक्टेड रहे फोन लाइन के जरिए, उन्होंने बात की। और अब हम किनका मेल शामिल करने वाले हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, चलिए देखते हैं किनका मेल आ चुका है।

गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आ गया है और लिखती हैं संदीला सी की प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे बज रहे हैं। मेरा संदेश यही है कि जो लोग कहते रोज कॉल ना मिलाओ, तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि हम लोग भी हज़ारों की भीड़ में कॉल लगाते हैं और आप सोच रहे हैं कि लाइन खाली हो तब मिलाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता है और हम तो रोज़ कॉल मिलाएंगे चूंकि इनको बात करना अच्छा लगता है। तो गुलफ़्ज़ा जी बस यही है कि सभी की आवाज़ यहाँ पर आती रहे, सभी दोस्त यहाँ पर मिलते रहें और अपनी मोहब्बत जताते रहें एफएम रेनबो के साथ, बस यही गुजारिश है। तो आपका जो मेल था हमने शामिल किया, आपका संदेश भी लोगों तक पहुँच गया। तालिब अंसारी जी क्या लिखते हैं भाई? तालिब जी लिखते हैं कि ग्राम राजकटरा बाराबंकी से इन्होंने मेल किया है। नमस्कार आपको भी, पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा था, गीत बहुत अच्छे प्ले हुए, हमने बहुत इन्जॉय किया। और मैसेज यही कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत करना आवश्यक।

है फैन कूलर या कोई एनी चीज जो उपयोग के लिए नहीं है स्विच बंद कर दीजिए। सोलर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करने से यहाँ सारा काम सोलर पैनल से ही होता है और क्योंकि इससे पर्यावरण भी मेंटेन रहता है और पैसे भी कम खर्च होते हैं और गर्मियों में लाइट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बाराबंकी से तालिब अंसारी जी ने ऐसा लिखा है। तो ये आपने बहुत अच्छा अपना एडवाइस दिया कि जिस जगह लाइट का काम नहीं वहाँ का स्विच ऑफ करते चलिए और उसके साथ साथ सोलर पैनल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अनुज जी ने लिखा है हमारे दो आरजे नहीं आ रहे हैं पता नहीं क्यों। अच्छा तो उन्होंने नाम भी लिखे हैं, नितिन सर को और आदित्य को बुलाना चाहा और एफएम रेनबो में इनको सुनना चाहते हैं। और अनुज कुमार श्रीनगर लखीमपुर खीरी से इन्होंने मेल किया, आपका आपकी आवाज़ हमने सुन ली और आपकी आवाज़ हमने ऑन एयर कर दी। संतोष जी का भी मेल आ गया है भाई, गुड़गांव से सुन रहा हूँ। मेरा संदेश है कि रोड के साइड में घड़े में पानी रखवा दें ताकि कोई भी पानी पी सके। मेरी पत्नी का नाम ले लीजिएगा, पूजा भारद्वाज सुन रही हैं और इन्होंने उनको भी ये अपनी आवाज़ में उन तक पहुँचानी चाहिए। तो पूजा जी को भी मेल के ज़रिए संतोष जी की आवाज़ पहुँच गई है। और सड़क के किनारे पानी रखवाने का एडवाइस इनका बहुत अच्छा है क्योंकि एक नहीं कई लोगों को उससे तृप्ति मिलती है और उनकी प्यास बुझती है। अनिल जैन जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इनका भी मेल आ गया है। मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन जी, इन सब का मेल आ गया है। और इन्होंने कोई संदेश तो नहीं लिखा है सच, बट इनका मेल आया है। और चलिए इनके मेल के बाद हिंदुस्तानी, किनका मेल आया, हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी का मेल आया और इनका नमस्कार हम तक पहुँच गया। पिंकू सोनी ठीक है, इतने घर से हूँ सर और अपने आप को भीषण गर्मी से और अपने बुज़ुर्गों को और अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि सभी सुनने वालों से ये कहना चाहता हूँ। और थैंक्स राजू, बबलू, टिंकू, रिंकू, मेरे भाई, सो थैंक्स एड माय मेल। अच्छा तो ब्रह्मेश सोनी जी आपका मेल भी शामिल हो गया है और इन्होंने कहा है कि गर्मी में अपने अपनों का ख्याल रखें और ख़ुद भी बचें। तो ये सारी बातें गर्मी घूम फिर कर गर्मी के मौसम को लेकर आ रही, लेकिन वाकई में ये मौसम जो है वो कह रहा है कि अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों को भी जो आप एडवाइस दे सकते हैं उनके लिए जो कर सकते हैं ज़रूर करते रहिए। इन चीज़ों के साथ हम चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ गर्मी के मौसम की बात आ रही तो गाना तो यही बनता है जो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ग्यारह बजकर 48 मिनट रहे हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत, हमारे आपके होस्ट एंड दोस्त रत्ना शुक्ला के साथ। आप भी जुड़ जाइए फोन करके या फिर मेल करके। स्टे ट्यून्ड।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूँ?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
7: आप सबको बता देंगे 11:54 हो गए हैं और आज की लास्ट कॉलर हमारे कौन होने वाले। हेलो, चलिए फोन तो डिसकनेक्ट हो गया और हेलो, चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ जॉली जी जुड़े थे और हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं ये। जॉली जी का ये संदेश था आज के लिए कि गर्मी बहुत पड़ रही, तो गर्मी के मौसम में जो लोग गुटखे का सेवन करते हैं तो गुटखा का सेवन बहुत कम करें, क्योंकि कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और गर्मी तो वैसे भी एहतियात बरसने का मौसम है, इस वक्त बहुत ज़ोरदार गर्मी पड़ रही है। तो चलिए उनका ये संदेश आप तक पहुँचा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने हमें मेल किया उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं, और जितने लोगों के मेल को हम शामिल कर पाए उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कई लोगों का मेल एमआर नवाब जी का भी मेल आया, इसके साथ सभी के मेल हमने लगभग शामिल कर लिए। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये समय कह रहा है कि हम आप तक एक गाना छोड़ दें, तो गाने के साथ हम एंजॉय करिए। और गाने को एंजॉय करने के साथ साथ आप क्या करेंगे पता है आपको, अगला प्रोग्राम शत्रुपा उसके साथ कुछ और घंटे आपके साथ रहेंगी शालिनी। शालिनी जरा सा माइक्रोफोन के पास आइए और बताइए आप शाम तक यहाँ रहेंगी, अभी अभी आप बाहर से आ रही, तो कितनी ठंड है बाहर?
8: अरे इतनी ज्यादा ठंड है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। बस मन कर रहा था कि क्या क्या पहना जाए और क्या क्या रख लिया जाए। खैर बाहर की ठंड की हम बात तो कम करेंगे, लेकिन हमारा इस स्टूडियो एकदम कूल है और कूल वाली बात हम आपसे करने वाले हैं। रहेंगे आपके साथ हम 12 से 4 बजे तक।
7: बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि आप बाहर से आ रही हैं, कितना कूल है, कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, वो ठंड के आलम बताइए। और शाम तक जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा मौसम में सुकून हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी जब आपको थोड़ा सा लगे कि

मौसम में थोड़ा सा राहत है, तब आप घर से बाहर निकलने की कोशिश करिए। और इसके साथ 11:55 हो गए हैं, तो ये गीत आपसे कहता है कि हम इस गीत को आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। शालिनी आपको अच्छे अच्छे गाने सुनवाएंगी। रत्ना आपसे मिलेगी इसी चैनल पर। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और FM रेनबो से जरूर जुड़े रहिए। सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं को आधुनिक तकनीक के बेहतर मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन से सशक्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग

कि सभी कार्य योजनाओं पर ठोस व प्रभावी एवं त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। योजनाओं को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रखी जाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री केशव प्रसाद मौर्य कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसंख्यांकिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। झांसी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चाइनीज वेबसाइटों, इंडोनेशिया सिम और हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में से 8 मोबाइल फोन, 114 बैंक खातों की पासबुक और करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच 4,35,64,000 रुपए से अधिक की रकम फ्रीज कराई गई है। वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर श्रेणी के अंतर्गत भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती का अंतिम परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। इस साल की शुरुआत में लखनऊ स्थित मध्य कमान के प्रतिष्ठित आर्मी ग्राउंड पर कुल 592 अधिक महिला अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में अपनी किस्मत आजमाई है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद और मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
2: एक ना मल्टीपल
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
3: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
4: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूँ?
8: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
10: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
11: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
12: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
11: और लाइट बिल के
12: अब 0 रुपए कैसे दूं?
11: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं

0: उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

पता है कल मेरे घर मेहमान आए थे और खाना खिलाया हमने उनको और बहुत सारी तारीफ भी की उन्होंने। और क्यों पता है, खाना जितना स्वादिष्ट और टेस्टी था उससे ज्यादा कहीं पौष्टिक भी था। जी हाँ, इसमें मैंने बहुत कुछ खास नहीं किया था क्योंकि ये होता है बहुत आसान दोस्तों, क्योंकि हमारे किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान यानी कि नॉलेज नहीं होता है, और जब हो जाता है तो आप फिर बन जाते हैं परफेक्ट स्वाद में भी और हेल्थ में भी। तो कुछ आज हम प्रोग्राम शत्रुपा में बात करने वाले हैं खास चीज़ों की, जो कि होती तो है हमारी किचन में लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है या हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, अच्छा बताइए, जब आप अपनी रसोई में देखते हैं तो वहाँ पर तरह तरह के बीज मिलते हैं ना, कई सारे मसाले भी मिलते हैं, सौंफ, अलसी, अजवाइन, तिल, मेथी, जीरा, जी हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कलौंजी, और हम सब उसका इस्तेमाल भी करते हैं खाने में और अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और आपके किचन में रहती है, ज़रा सोचिए। जी हाँ, हम सीड्स की बात कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल आजकल हम सभी कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं। और वैसे भी कहा गया है ना कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूप, मतलब लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नुकसानदायक होता है और अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी नुकसानदायक होता है। तो बस सोचिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और क्या खास है उसकी बात हम बताएंगे आपको, लेकिन इस गाने के बाद। दोस्तों, शालिनी आपके साथ 12:12 और 52 सेकेंड हो चले हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
5: धड़कन लखनऊ की।

इस गर्मी में जो सबसे ज्यादा आराम पहुंचाता है वो क्या है बताइए? हमारा एफएम रेनबो, जी हाँ, जो सभी को कूल रखता है। और जब माइंड कूल होता है ना दोस्तों, सब चीज कूल दिखाई देती है। अच्छा चलिए, अभी हम बात कर रहे थे रसोई में दिखने वाले सीड्स की, और आज हम अपने प्रोग्राम शत्रुपा में बात करने वाले हैं चिया सीड की। जी हाँ, जो कि आजकल हेल्थ और फिटनेस के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। और ये देखने में छोटे छोटे काले और सफेद रंग के जो सीड्स हैं ना, देखने में आपको भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इनके अंदर पता है पोषण का खजाना छुपा होता है। जी हाँ, और अगर चिया सीड की बात करें तो ये मूल रूप से मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और कहते हैं कि जब पुराने समय में जो योद्धा थे ना, उनके एनर्जी का जो स्रोत था वो चिया सीड्स था, वो लोग चिया सीड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और आज हम इन्हें सुपर फूड कहते हैं, जो क्योंकि इससे हमारे शरीर को जो है ना ज़रूरी वाले कई पोषक तत्व मिलता है। कौन कौन से मिलते हैं बताएं? फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर को ताकत देने के साथ साथ कई सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। हाँ, सारी बातें अभी थोड़ी ना करेंगे, एक गाना लेते हैं और उसके बाद होंगी और भी बातें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:31 और 55 सेकंड का वक्त प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ आज लेकर सीआरसी की बात। देखो अभी हमने ढेर सारी बातें की ना, ये कब कैसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता था और इस वक्त हम इसका यूज कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं? अच्छा, इससे आपका वेट कम हो जाएगा। जी हाँ, बहुत से लोग इसे अपनी डाइट को हेल्दी बनाते हैं और कई सारी चीज़ों के साथ इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कोई अलग से स्वाद नहीं है, मतलब है तो बहुत हल्का सा है और इसके खाने के भी कई आसान तरीके हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रात भर पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह खाली पेट भी खाया जा सकता है। कुछ लोग इसे दूध, दही, स्मूदी, ओट्स या फ्रूट सलाद में भी मिलाकर खाते हैं। कुछ लोग या आप भी नींबू पानी या नारियल पानी में भी मिलाकर इसको खा सकते हैं। इसका अलग से कोई स्वाद पता नहीं चलेगा। और अगर आपको अपना दिल सही रखना है, हाँ हम कौन से दिल की बात कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, वो दिल नहीं जो इश्क मोहब्बत प्यार में पड़ जाता है, हम आपके दिल की बात कर रहे हैं, सेहत की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी चिया सीड्स को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, वो शरीर में अच्छे फैट को बढ़ाने और ख़राब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ जो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जो लोग दूध कम पीते हैं उनके लिए भी चिया सीड्स कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो अगर आपको दूध नहीं अच्छा लगता है, नहीं पीते हैं, तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

दोस्तों 12:39 और 52 सेकंड का वक्त शालिनी आपके साथ लेकर प्रोग्राम शत्रुपा में खास बात चिया सीड्स की हो रही है बात। और अभी तक बहुत सारी चीजें हमने बात कर ली, कैसे खाना है, इसमें क्या क्या है, कब हुई इसकी शुरुआत, कहाँ से। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी बात जानने वाली ये है कि इसकी जो संतुलित मात्रा है उसका भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे भी किसी भी चीज़ की तरह चिया सीड्स का भी जो यूज़ है वो भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। आमतौर पर इसे हम 1 से 2 चम्मच ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हमारे लिए पर्याप्त होता है। और इसे बिना भिगोए बहुत ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पेट में आपको एसिडिटी या मतलब गैस की भी शिकायत हो सकती है और पेट में भारीपन भी हो सकता है। और जब इसको हम भिगोकर रात भर भिगोकर सुबह खाते हैं ना, तो ये ज़्यादा सही होता है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं होती है और पेट हमारा बहुत देर तक भरा भी महसूस होता है। और वैसे भी हम सभी आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है ना, इसमें हम हेल्दी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं हम, वापस से कोशिश कर रहे हैं नेचर की तरफ लौटने के लिए, पौष्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए। तो बस चिया सीड्स उसी दिशा में एक छोटा सा लेकिन असरदार कदम होगा आपका अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूँ?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं? और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी आपके साथ हम बात कर रहे हैं चिया सीड्स की। और पता है आपको, चिया सीड्स से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि स्किन में खुजली हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं, या सांस लेने की दिक्कत या बेचैनी की भी समस्या हो सकती है। अगर पहली बार खाने से आपको ये शरीर में कोई इस तरह के बदलाव हो रहे हैं या दिख रहे हैं, तो उसे तुरंत खाना बंद कर देना चाहिए। और साथ ही साथ चिया सीड्स के लिए हम ये कहेंगे कि जो डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, वो डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद इसका कितना सेवन करना है उसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनके लिए भी ये कहना है कि बिना सलाह के इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर शरीर अलग होता है, इसीलिए किसी भी सुपर फूड को ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा फ़ायदा ये नहीं समझना चाहिए। किसके बॉडी पर क्या सूट करता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ख़ासकर जब किसी गंभीर बीमारी से हम जूझ रहे हैं, तो भी हमें बिना किसी की राय लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

और दोस्तों 12:56:30 हो चले और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। बस इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले इतना ही कहना चाहेंगे कि सही मात्रा में और सही तरीके से लिया जाए तो चिया सीड्स शरीर के लिए लाभकारी होता है, लेकिन संतुलन और सावधानी हमेशा जरूरी है, चाहे वो बात चिया सीड्स की हो या किसी और चीज की बात हो। तो बस ध्यान रखना अपना और इस्तेमाल करना इसका, और सलाह मिल सकती है किसी की तो जरूर ले, और बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। नेक्स्ट प्रोग्राम ऑटम में तेरी बात में आप ये बताइए कि गर्मी का प्लान क्या है आपका, समर वेकेशन हो चुके हैं बच्चों के, तो इसमें आप क्या प्लान कर रहे हैं, फटाफट मैसेज कर दीजिए।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ता, धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति को रेखांकित करते हुए संस्कृत शुभास्तम साझा किया है। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी सतत प्रयास और मजबूत संकल्प के बल पर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आज एक्स पर लिखा, निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आज देशवासी इसी भावना से भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में शांतिवन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समावेशी, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक सोच पर आधारित नेहरू का नेतृत्व सदैव प्रेरणा देता रहेगा। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के जांच के दौरान दो और लोगों को गिरफ्तार किया। इनको मिलाकर इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है। गिरफ्तार किए गए लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरूरू पर 3 छात्रों की मदद करने में अहम भूमिका है। इनमें एक कोचिंग सेंटर

के मालिक का बेटा भी है। उन्होंने आरोपित पीवी कुलकर्णी ने से केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल करने में इन छात्रों की मदद की। नोएडा में विवाहित पूजा पाल की हुई संदिग्ध मौत के मामले में उसके परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ आज दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। लखनऊ के डालीगंज रेलवे स्टेशन से डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी का नियमित संचालन शुरू हो गया है। यह ट्रेन आज 5:20 पर प्रस्थान करेगी। बादशाह नगर, गोमती नगर, मल्लौर, बाराबंकी, जरवल रोड, सरयू, करनैलगंज, गोंडा, इटावा तोक, बलरामपुर, तुलसीपुर, पंचपेड़वा, बढ़नी, सिद्धार्थ नगर, कैपियरगंज होते हुए नकहा जंगल अगले दिन सुबह 4:45 पर पहुंचेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2:00 प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: दोस्तों 1:04 और ये देखिए 5 मिनट हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है ओठों पे तेरी बात। और अगर हम इस वक्त की बात करें तो सबके घर में बच्चों की छुट्टी मुट्टी हो गई है ना और जो मम्मी है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो तो खुश है, लेकिन जो घर की मम्मी है ना वो ये कह रही हैं अरे ये स्कूल भी क्यों ही बंद हो गए। और वो तो समझती नहीं है, है ना बच्चों, कि छुट्टी क्या चीज़ होती है। मम्मी तो यही चाहती है ना कि संडे को भी छुट्टी ना हो, स्कूल खुले और बच्चे ही स्कूल जाएं ताकि घर में शांति रहे। लेकिन अब ये शांति नहीं रहने वाली, अब तो ये जो आप शांति को खोज रहे हैं ना वो अब जुलाई में ही आएगी। तब तक के लिए अब जो भी है उसे इंजॉय करें खुशी खुशी, और हमें बताएं कि अब आप समर वेकेशन का क्या प्लान कर रहे हैं। और फटाफट हमें बताइए akashvani@gmail.com ये हमारा मेल आईडी है, इस पर आपको अपने दिल की बात कह देनी है और साथ ही साथ सुनते रहना है प्यारे प्यारे से गीत।
1: Banjo!

आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सबसे बड़े निशानों को भी मुसलसल कोशिश, तहम्मुल और मजबूत कुव्वत इरादी से हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम इसी जज्बे से मुतासर होकर हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। सुभाषितम कहता है कि एक ख्वाहिशमंद शख्स निशाना हासिल करने की सिमत में अगर मुसलसल बाकायदगी से कोशिश करता है तो वह उसे यकीनी तौर पर हासिल कर लेता है। ऐसा करते हुए उस शख्स को बीच रास्ते में ही हार मानकर अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से होने वाली डेमोग्राफिक तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज प्रभाकर नावलेकर करेंगे। सेंसस कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि को इस कमेटी का रुक्न मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी में रुक्न सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यह कमेटी गैर कानूनी नकल मकानी और दीगर गैर फितरी वजूहात से पूरे मुल्क में हो रही डेमोग्राफिक तब्दीलियों की जामे तशखीस करेगी।

0: की। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये उस पेठी है मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेहत और महकमा तिब्बी तालीम के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अहकाम दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और इमरजेंसी खिदमात की क्वालिटी मुसलसल बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के पेमेंट गेटवे निजाम में इस्लाह के लिए अवामी शोबे के 4 खसूसी बैंकों के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग कर तवील बातचीत की। इस दौरान जनाब प्रधान ने तलबा को दिक्कतों से बचाने के लिए बगैर रखना और महफूज अदायगी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान CBSE ने वाजे किया है कि आंसर शीट की तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। CBSE ने कहा है कि असली तशखीस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल पर कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी रोशनी में नहीं आई। डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो गई है। गाड़ी नंबर 55062 डालीगंज से आज 5:45 पर चलकर कल सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। दरियस्ता वापसी में गाड़ी नंबर 55061 नकहा जंगल गोंडा डालीगंज सवारी गाड़ी नकहा जंगल स्टेशन से 11:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:25 पर डालीगंज पहुंचेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक लड़की और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए जबकि 5 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। यह हादसा रायबरेली जिले के सलोन थाना हलके के रसूलपुर गांव के नजदीक पेश आया जब दिल्ली से जौनपुर लौट रहे कुनबे की तेज रफ्तार कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। रियासत में कल भी दिन भर तेज धूप, शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा मगर शदीद गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से राहत भरी खबर है। महकमे के मुताबिक मगरबी खलल के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश के भी इम्कान है। इससे दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ तपिश से भी राहत मिलेगी। कल दारुलहुकूमत लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.9 और कम से कम दर्ज हरारत 28.3 डिग्री दर्ज किया गया। बांदा एक मरतबा फिर से पूरे मुल्क में सबसे गर्म रहा जहां ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हर दम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है।

0: मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 1:23 का वक्त, प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में शालिनी है आपके साथ। और ढेर सारी ईमेल्स भी आ चुके हैं। आ चुका है मेल कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव का और प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद सानवी कल्पना सभी लोग हैं। और भाई ये बताइए, आप इतने सारे नाम हर रोज लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं? और इस प्रोग्राम में तो हम किसी एक के मन की बात जानना चाह रहे थे। हो सकता है सभी ने मिलके अपने मन की बात भेज दी है लिख कर। और आपने लिखा है कि बच्चों को नाना नानी के घर जाने का मन करता था, लेकिन बहुत धूप होने की वजह से हमने नाना नानी के घर बच्चों को नहीं भेजा है और बच्चे घर पे ही रहकर छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती समझ रहे हैं लेकिन क्या करें, बच्चों को समझ लेना चाहिए। अगर बच्चे समझदार हो जाएंगे सुधाकर जी, तो फिर वो बच्चे नहीं बड़े कहलाएंगे, है ना। और अहमद नवाब का बहुत ही अच्छा सा जवाब आया है और इन्होंने लिखा है कि अभी इस टॉपिक में क्या लिखूं दीदी, 5-10 साल के बाद बोल सकती हूँ। बिल्कुल हम समझ रहे हैं, जब आप अपने बच्चों को अपने नाना नानी के घर लाएंगे, है ना। चलिए ना, अहमद नवाब ने हमें संडीला से मेल किया है और हम इतना इंतजार करेंगे, तब आप अपनी बात बताइएगा। और मेल एक और आ चुका है आजाद अली अनवर का, रिजवाना परवीन के साथ बहादुर गंज गाजीपुर से। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमें सुन रहे हैं, तो आप ये भी सुन रहे होंगे कि जो प्रोग्राम है वो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, वो होगा शुरू हॉटमेल 2 बजे से। लेकिन अभी तो आप हमें बताइए ना कि इस समर वेकेशन का क्या प्लान है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों

अगर अभी भी आप सोच रहे हैं अपना प्लान, तो हमें हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसमें कुछ आपके हेल्प कर दें कि समर वेकेशन में आपको क्या करना चाहिए। बसंत कुमार सिन्हा का मेल आ चुका है और इन्होंने कहाँ से लिखा है, गुड़ियाडीह से इन्होंने हमें मेल किया है और ये बता रहे हैं कि अच्छा, ये बिहार से ये इन्होंने हमें भेजा है और ये छोटे से गांव पिरहा में जन्मे थे, जो कि 10 किलोमीटर दूर है गुड़ियाडीह में, अपने नाना नानी मामा का घर है इनका, जो कि जंगल के किनारे मुश्किल से 25-30 वहाँ पर घर होंगे, जिसका एक गांव बना हुआ है और ये कभी कभी माँ के साथ नाना नानी के घर जाते थे और वहाँ पर इन्हें मोर की आवाज़ जो सुनाई देती थी उससे मन भा जाता था और साथ ही भालू की भी आवाज़ें रात में बहुत ही करीब से सुनाई देती थी। ओ, तब तो डर जाते होंगे, क्यों, हम तो आप बता रहे हैं और हम डरे जा रहे हैं भाई। नानी का घर तो घर ही है और छुट्टी का जो मज़ा है ना, वो तो कहीं और नहीं है। और मेल आ चुका है रोशनी रावत जी का, सफ़ीपुर ज़िला उन्नाव से है और ये लिख रही है कि मैं क्या लिखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 8 से 10 साल बाद ज़रूर बताएंगे। अच्छा, इनका भी उसी तरह से बात होगी जैसे अमन नवाब की बात हुई है। और ये पिंकू सोनी का टिकायत नगर बाराबंकी से मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि इनका मन है कि गर्मी में कुल्लू मनाली घूमने जाएं और मेरे दोस्त हैं कुलदीप और आकाश, ये अच्छा बस इतना ही नाम लिखा है, इनका नाम ऐड कर दें भाई। कुल्लू मनाली जाने का मन तो है, घूम के आने का, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, तैयारी कीजिए, टिकट बुक कीजिए, ध्यान से पूरी प्लानिंग कीजिए, कब कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, क्या क्या पहनने के लिए ले जाना है, तब तो समझ में आएगा कि हाँ आपका प्लान है। और किसका मेल आया है, ये सिद्दीकी, अच्छा गुलाफ्सा सिद्दीकी का है संटीला से, उन्होंने लिखा है मेरे बच्चों की छुट्टी उनके गांव के घर में गुजर रही है क्योंकि मैं एक वक्त अपने गांव वाले घर में हूँ इस वक्त, अच्छा, और हमारे बाग के खेत में हैं इस समय और सब लोग बड़े खुश हैं और हर साल ये यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आती हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, बाकी और भी ढेर सारी ईमेल्स हैं जिनको पहुँचाना है आप तक।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू मोहब्बत के मुंह में,
2: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल कटारी की गोट,
2: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
2: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
3: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:50 हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शाली फटाफट और जितने ईमेल्स आए हो उनको ले लिया जाए, क्योंकि इसके बाद तो प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो जाएगा। तो बता दें कि तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से आया है और इन्होंने लिखा है कि जब ये छोटे थे तब तो खूब समर में घूमा इंजॉय किया, लेकिन हर एक चीज़ का टाइम होता है और सेट करके टाइम चलना पड़ता है। हाँ, अब रेनबो ज़रूर सभी समर वेकेशन बन गया है, क्योंकि हर वक्त अब कनेक्टिविटी इसी से है। क्या बात है भाई, अच्छी बात है, आपका प्यार इसी तरह से हमारे साथ रहे और आप इंजॉय करते रहे। और इन्होंने और क्या लिखा है इसके अलावा, अच्छा मोनू सेठ का मेल आया है, इस मौसम तो अपना ही घर सबसे बेस्ट है। और वकील अहमद का भी मेल आया है, इन्होंने कहा है कि अच्छा आज का मुद्दा ये सुन नहीं पाए, मुद्दा नहीं था आज, तो बस वो बात थी जो आपको अपने दिल की बात बतानी थी, और इस वक्त ये हर गांव में है और अभी ये सीतापुर से हमें मेल कर रहे हैं। और सावित्री देवी जी का भी मेल आया है, इन्होंने लिखा है जब इतने मस्त गाने सुनने को मिले और आप जैसे आरजेस के साथ हो तो इतनी धूप में बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, हम घर पर रहकर एफएम के साथ फ़िलहाल छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। और सावित्री जी आप

हमें कहाँ से मेल कर रही हैं, आपने एड्रेस नहीं लिखा है, लेकिन हाँ अच्छा लिखा है ये अर्जनपुर लखनऊ से ही आप हमें मेल करती हैं, हमें तो पता है बरगदी से, लेकिन हम देख रहे थे आपने इस बार लिखा कि नहीं। राधेश्याम जी का भी मेल आया है कासगंज से, इन्होंने हमें मेल किया है और इनका लिखना है कि समर वेकेशन में ये अपने ससुराल जाने वाले हैं, सिस्टर के घर घूमने जाने वाले हैं, लेकिन हाँ मौसम सही हो जाए तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है और अब क्या करना है, अब प्रोग्राम को करना होगा अच्छा अच्छा बाय बाय, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल में भी रहेंगे आप हमारे साथ अपनी फरमाइश के साथ। तो इस प्रोग्राम का ये गाना हम पहुंचा रहे हैं आप तक, एंजॉय करिए और सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और मेल आईडी पता है ना, fmakashwani@gmail.com पर आपको मेल करना है अपनी पसंद के गाने, और अच्छे पसंद करिएगा जिससे कि मूड और अच्छा हो जाए, मौसम जरूर गर्म हो लेकिन हमारा जो माइंड है वो कूल हो जाए।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उच्च स्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग की सभी कार्य योजना पर ठोस, प्रभावी व त्वरित गति से कार्रवाई की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव व गरीब का विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गांव में जल निकासी के पुख्ता प्रबंध किए जाए। गांवों की गलियां ग्रामीणों का हाईवे हैं, उन्हें व्यवस्थित रखा जाए। गांव में अव्यवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाए। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता में लखनऊ में आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण और समाज कल्याण स्थायी समिति की समीक्षा बैठक हुई। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनप्रतिनिधियों ने से मिले सुझावों के आधार पर नीतियों को और अधिक व्यवहारिक व सुलभ बनाया जाएगा। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। करीब 2 सप्ताह में ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही अधिकांश ई बसों का चलना शुरू कर दिया जाएगा। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। रायबरेली जिले के सलोन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास कल रात कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मरने वाले जौनपुर के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच में लगी है। प्रदेश में गर्मी और लू का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तापमान बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को गर्मी से बचाव के लिए पानी और छांव जैसे इंतजाम किए गए हैं।

हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी संभाग के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:04 का वक्त प्रोग्राम हॉटमेल की हो चुकी है शुरुआत, जिसमें ढेर सारे ईमेल्स भी आ चुके हैं आपके हमारे पास। तो शुरुआत करें, कर देते हैं शुरुआत ईमेल्स को पढ़ने की। भाई कहाँ से शुरू किया जाए, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। और टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप का मेल मोहाली चंडीगढ़ से आया है। कालका से शुभ चंद बजाज, साहिल और बिट्टा का मेल आ चुका है। और रामेश वर्मा का मेल है, और अच्छा इन्होंने दीपक वर्मा मणिपुर यूपी से है। और चलिए आपने जो पसंद बताई है आपने, वो गाना हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शाहरुख नूर अंसारी जी का मेल आया है मचकली जिला बरेली से। फरियाज, शकील, मोइन, तस्लीम, डीजे प्रधान जी के साथ में किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लिया जाए। और किसका मेल आया है, तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आ चुका है। गोवर्धन विहार कॉलोनी दिल्ली से ये हमें मेल कर रही हैं, और इन्हें गाने पसंद आते हैं हमारे रेनबो के। करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम और माहे नूर का भी मेल आया है। कोई भी गीत सुनवा दिया जाए इन्हें। और सतीश अनेजा जी का भी मेल आया हुआ है विमला के साथ चंडीगढ़ से, ये हमें मेल कर रहे हैं भाई। और राधेश्याम साक्या जी कासगंज से, और ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारा पूरा साथ देते हैं प्रोग्राम जब हम करने के लिए आते हैं, और बराबर मेल भी करते रहते हैं। और रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, बजरंगी काका का मेल आ चुका है। फरमाइश भी आ चुकी है, और कोशिश है आपका गाना हम आप तक पहुंचाएं। इन्होंने हमें जिला रायबरेली पहाड़ीपुर से मेल किया है। और जोन डिक्रोस्टो, रोजी, पर्ल विलेस का भी जहाना जनकपुरी सहारनपुर से मेल आ चुका है, और गाने की फरमाइश की है आपने। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा का मेल आया हुआ है। और क्या क्या लिखा है आपने, चलिए बहुत अच्छा कुछ लिखा है आपने, वो हम जरूर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और चलिए अब सुनते ही ये प्यारा सा ट्रैक आप सब के लिए।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा गाना मौसम के अकॉर्डिंग आपने पसंद किया और अब बारी हंस

अंसारी गुलाम साबिर राही, अच्छा ताल मोहम्मद अंसारी जी हैं मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें मेल कर रहे हैं। विनीत कुमार का रिंकी पिंकी रायबरेली से, संजू संजय हरदोई से, और अच्छा क्या क्या लिखा है आपने, अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल से, जिला सीतापुर से आप हमें मेल कर रहे हैं, और गाने की फरमाइश भी की है आपने। और ये आ चुका है मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से, सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनाज साहब, सरफराज, फरीदे, सुहान, अरजान और अमान का पूरा आया है। और मयंक धानी गौरव जौहर सिंह ये कहाँ से, बलौद बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लिया जाए। और अब्बासी जी आपका मेल शामिल कर लिया है, बार बार मेल करने की कोई जरूरत नहीं है। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम, सचिन, अमन, दीपांशु का भी मेल आ चुका है। और एक मेल तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना का आया हुआ है, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लिया जाए। और ये मेल है वैशाली, शैलेश गहाकर, प्रिंस एकांश, सुमित कुमारी, ध्वनि का है बहादुरा नागपुर से है, और उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, लाडला, टुक टुक का मेल है, संजय डिंगिया जी का नमन अपार के साथ में बागपत उत्तर प्रदेश से यह हमें मेल कर रहे हैं। बलवेश पवार, डैनी पवार, मनीष ये बाड़मेर राज गांधी चौक से मेल कर रहे हैं, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम और बामड़ी से खुदा बख्श का मेल आया हुआ है। और अच्छे से गाने की फरमाइश की है, लेकिन फिलहाल अभी सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 2:25 और 40 सेकंड का वक्त हो चला है और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो शालिनी के साथ प्रोग्राम हॉट मेल। और हम ढेर सारे मेल अभी तक शामिल कर चुके हैं लेकिन बहुत सारे अभी बाकी हैं। और करते हैं शुरुआत आफताब अंसारी से, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना आलिया और ये हमें शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मेल करते हैं। और संदीप मक्कर जी का भी मेल आ चुका है और इनके साथ ज्योति, मन्नत, भरत, कमाल है और ये हमें जालंधर से मेल कर रहे हैं और बढ़िया से गाने की फरमाइश की है आपने। और पीएस नोहाकर, निर्मला, विशाल और नरवेल महाराष्ट्र से, और मलकापुर से नारायण इंगले का, सोपान और आशीष का मेल आया है जी, गाने की फरमाइश की है। बिल्कुल आपका गाना अब तक पहुंचाया जाएगा। और ये मेल किसका आया हुआ है, शिरडी जिला सांगली से हनुमत सिंधे और संगीता सिंधे का मेल है। और बाबू अंसारी का भी मेल है नसीम और मुनान कुलदीप के साथ में। और ये कहाँ से मेल आप कर रहे हैं, देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से आप हमें मेल कर रहे हैं। दिग्दर्शन कौर जी का भी मेल।

कविता के साथ में मेरठ कैंट से आ गया है, ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं आपने। चलिए कोशिश करते हैं आपका गाना सुनाने की, लेकिन पहले सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:38 का वक्त, और ये वक्त इसलिए बता रहे हैं कि देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपका भी मेल शामिल हो सकता है, अभी भी टाइम है। और बुधराज, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका का मेल आया है उत्तम नगर दिल्ली से, ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल है, जितेंद्र, बबलू, अंजू और आरोही, सौम्या, इन्होंने हमें शहडोल मध्य प्रदेश से मेल किया है। मेहर अरोरा, ममता, कीर्ति, भूमिका का भी मेल आया है। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल है, नरेश, लक्ष्य, लाडो, कोयल, पापा जी, नानक चंद, ये सभी लोग ख्याल बाजार पानीपत से। और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, कोयल, डुग्गू का मेल आया हुआ है। दीपेश वर्मा जी का भी मेल है पूनम, ज्योति, शिवांश के साथ में, और इन्होंने हमें पेपर लोट सरगांव छत्तीसगढ़ से मेल किया है। बहुत ही प्यारे से ट्रैक की गई है फरमाइश, लेकिन दोस्तों देखते हैं कितने गाने आप तक हम पहुंचा सकते हैं। और ये अनवर सिराज, दानिश, उवेद, इकरार, फैजान का मेल है गंग डुंटवारा से। अच्छा, अभी एक और मेल आया था इसी मेल आईडी से, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज का ठाकुरावाला से मेल आया है। नवी हसन का भी मेल है, नावेश, शहनाज, सुहेल, राशिद, अमन, यसफ का, इन्होंने दरवाज़ा ईटा से किया है। और सिकंदरा राव से मुनीब, इशरत ने भी हमें मेल किया है। और सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, शानवी, कल्पना का कालेगांव जाफराबाद से मेल आ चुका है। और मेल आया है अहमद भाई, दुखनी, सदफ, जूही, इकबाल, इमरान, इन्होंने हमें सिटी मुंबई से, और नई बॉर्डर दिल्ली से, बिटिया अमना, नसरीन, आसमा, राबिया, मंतशा, आशु और समस्त फूल वाले फैमिली की तरफ से हमें मेल आया हुआ है। और भाई, एक ही मेल कई बार आते हैं ना, तो बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं हमें। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी के साथ हमारे बीच मेल आ चुका है। और जलालाबाद से सुरेश गगनेचा, पूनम गगनेचा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित का भी मेल आ चुका है। दोस्तों, इसी के साथ ये सुनिए प्यारा सा ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

और दोस्तों अभी अभी हम ढेर सारी मेल्स ले सकते हैं क्योंकि अभी समय है हमारे पास में, और मेल आ चुका है अमरावती महाराष्ट्र से, हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, और आया हुआ है मास्टर खिल्लू बेगम, इमराना, नवाजेश, दानिश और अमन का आया है। और भाई एक ही लोग ढेर सारे ईमेल कर देते हैं, आप इतना कहने के बाद भी आपका मेल शामिल किया जाता है, और जब भी शालिनी आती है तब तो सभी के मेल हम लेते ही लेते हैं। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी और नौशाद बेबी आले आयान बाबू का मेल आ चुका है। बलौदा बाजार से ग्राम तारा शिव से छत्तीसगढ़ से मेल आया है मनोज विश्वकर्मा जी का है। गुलफसा सिद्दीकी का भी संडीला से मेल आ चुका है, और ये नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साईं गायकवाड़ का भी मेल आया है, और इन्होंने हमें कहाँ से मेल किया है, महाराष्ट्र से ये हमें मेल कर रहे हैं। शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी का भी मेल आया है, ताला महाराष्ट्र से मेल किया है इन्होंने, और रामचरण विश्वकर्मा, साहिल और मंजू, रंजन, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी का मेल बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल रह गया, मनोज गुप्ता का गोसाईगंज लखनऊ से ये हमें मेल कर रहे हैं, और प्लीज़ मेरा गाना सुनवा दीजिए। गाने तो सारे आप तक पहुंचाए जाते हैं। और एक और मेल, बेबी शालिया, हलीमा, जिक्रा, आयशा, अब्दुल्ला, मस्जिद, बाबू कॉलोनी से मेल आया है। सुनील पाठक जी का भी मेल आ चुका है, और इन्होंने क्या लिखा है हम बिल्कुल आपको बताते हैं। अच्छा, इनके साथ में कमल, दीपिका और लोग भी हैं, और फरमाइश की है आपने। राजकुमार डूरी, प्रमोद, पुष्पेंद्र का मेल आया है फ्रांसी हिसार से, और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक को सुन लीजिए, एंजॉय कीजिए, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपसे।

और दोस्तों 2:56 और ये देखिए कुछ सेकंड भी हो चले और इसी के साथ शालिनी करती है आपको इस प्रोग्राम से टाटा बाय बाय। नेक्स्ट प्रोग्राम अभी भी है, जी हाँ, वो कौन सा प्रोग्राम है बताइए तो जरा, सतरंगी दुनिया, जिसमें ढेर सारे रंगों के साथ हम आपके साथ होते हैं और साबित खान, ब्रिजेंद्र, धर्मवीर और रणधीर गुप्ता, मुकेश गोस्वामी, जावेद अख्तर, इनके भी मेल आ चुके हैं और सभी के मेल आज सब तक पहुंच चुके हैं और इसी के साथ बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को जारी रखने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित करने के लिए उसे परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे खुद को हाइड्रेट रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। गर्मी से होने वाली बढ़ती मुश्किलों पर श्री मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में संवेदनशीलता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। उन्होंने सुझाव दिया, जो भी हो प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। उन्होंने सभी से ये भी कहा है कि वे अपने परिवार और प्रियजनों से संपर्क में रहें और उनका हाल चाल पूछते रहें। झांसी में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह चाइनीज वेबसाइटों, इंडोनेशिया सिम और हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का अंजाम दे रहा था। अयोध्या में थाना रौनाही के जुबेरगंज के पास यात्रियों से भरी रोडवेज बस हाईवे के किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बस सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए हादसे में हुई मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में भी साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रदेश में ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्म गुरुओं ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। बकरीद की नमाज को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं बड़ी ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास नमाज के समय यातायात भी प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
3: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में,
2: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
3: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
2: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
3: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
2: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
3: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
4: लखनऊ की
3: 100.7 FM रेनबो।
5: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिस्निंग टू FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: दोस्तों 3:12 और 12 सेकंड का वक्त सतरंगी दुनिया की शुरुआत हो चुकी है। प्रोग्राम की शालिनी है आपके साथ प्यारे प्यारे से ट्रैक लेकर, सुनिए और एंजॉय कीजिए।
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
2: अच्छा दादा।
1: हाँ तो बच्चों,

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सपने बड़े हैं,
2: स्टाइल अलग है,
1: तो ये शो है आपके लिए।
2: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
1: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
2: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
4: Listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

छोटे बच्चे ने कल हमसे कहा कि गर्मी की फिक्र ना करो, ठंडे पानी से फ्रिज को भर दो, थोड़ा तुम भी पियो, थोड़ा दूसरे को भी पिलाओ और गर्मियों को खुशी खुशी बिताओ। तो हमने कहा बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहता, अरे दीदी, बच्चों को कोई बाहर खेलने निकलने ही नहीं देता है। ये जो गर्मी है ना, ये बहुत बुरी है, इसीलिए तो कहते हैं पानी खुद पियो और हम सबको भी पिलाओ। तो उस बच्चे की बात में ना इतना बड़ा संदेश था कि भाई देखिए, समय के अनुसार सारी चीज़ें करिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप घर में ही बैठे रहें, बच्चों को भी बैठा के रखें, आप समय के साथ चलें। शाम के वक्त जब मौसम सही हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, धूप चली जाती है, उस समय अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए जाने के लिए यस कहें, ताकि बच्चे भी खुश रहें, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और क्या ही कर सकते हैं बच्चे, है ना। और जब बच्चे जिद करना बंद कर देंगे तो इसका मतलब अब वो बच्चे बच्चे नहीं, बड़े हो गए हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

वैसे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मौसम आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो ज्यादा जवाब की अगर हम बात करें तो सर्दियों का ही मौसम सभी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पता है, ये जो मौसम में बदलाव है, उतार चढ़ाव है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम सबका हाथ है। अब ये कहेंगे, लो अब मौसम में हमने क्या कर दिया, कहाँ से हमारा हाथ आ गया? जरा ध्यान से सोचिए। हमें सुंदर मकान बनाना है, हमें सुंदर रेस्टोरेंट बनाना है, हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें रोड बनाना है, हमें सड़क बनानी है, हमें चीज़ें बनानी है, लेकिन पौधा एक भी नहीं लगाना है। और जो पौधे और पेड़ लगे हैं उन्हें काटना है, क्योंकि वो हमारे चीज़ों में रुकावट आ रहे हैं, हमारी जो चीज़ें बन रही हैं, जो हम संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है और उसे हम आसानी से काट देते हैं। और बहुत सारे लोग तो काटते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं और कहते नहीं हैं, वो भी बराबर के भागीदार होते हैं। तो सोचिए ज़रा, आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। और कहते हैं कि ना, कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अभी भी देर नहीं हुई है, सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कभी हमसे ही तुम्हारी सुबह होती थी, कभी चाय की चुस्की के साथ, तो कभी घर की बालकनी में। अजी अखबार तो हाथों में यूं ही लिए रहते थे, लेकिन दिल तो हमसे ही लगा रहता था। किचन में खाना बना रहे हो या ऑफिस जाने की तैयारी हो, बस में सफर हो या ट्रेन, हर गाड़ी में मेरा ही साथ रहता था। वो चुप चुप के ऑफिस और कॉलेज में हमसे बातें किया करते थे। शाम को घर वापसी में भी मेरा साथ कहाँ छोड़ते थे। जब रातों में नींद नहीं आती थी तो मुझे साथ लेकर सो जाते थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हम साथ रहते थे। कैसे प्यार की बातें और अपने जज्बात एक दूसरे से कहते थे। वो दिन और आज का दिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि समय की रफ्तार के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और सुनते रहिए हर रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक FM रेनबो।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

बजकर 53 मिनट और 30 सेकंड का वक्त हो चला है, शालिनी का समय हो चला है जाने का, टाटा बाय बाय करने का, और कोई ऐसे और भी कोई आ चुका है।

शादाब आ चुके हैं आपके साथ, रहेंगे 4 बजे से, कब तक ये शादाब भी बताएंगे आपको। और होगी हमारी आपसे मुलाकात किसी और दिन किसी और समय हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बदलना है थोड़ा सा।

नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप सुनिए एफएम समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्यबागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले के को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। करीब 2 सप्ताह में ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये होगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी की है। 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से सभी फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही अधिकांश ई बसों को चलाना शुरू कर दिया जाएगा। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च भी किया जाएगा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बकरीद के त्यौहार के सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को कानून का पालन करना होगा और इसका उल्लंघन करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटे। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023 की धारा 163 लागू कर दिया गया है। पुलिस और जिला प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की साल 2027 एक वर्षीय और 2028 की द्विवर्षीय इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण सामग्री प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय भेजी जा चुकी है। ऐसे अभ्यर्थियों को जो इस पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो अपने जिले के पत्राचार केंद्रों से संपर्क करके पंजीकरण करवा सकते हैं। 1 अप्रैल से इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हो चुका होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
1: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
0: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

जी आज 4:08 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ शादाब। आप सभी के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं हम यूथ वेव। और यूथ वेव आज का जो सेगमेंट है वो है भाई साइंस एंड टेक। तो आज बातें कुछ ऐसे ही होंगी जिनमें आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो साइंस से रिलेटेड हैं लेकिन बड़े मज़ेदार हैं। जी हाँ, आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा भी होता है क्या। तो बिल्कुल आपको साथ बनाए रहना है। 4:09 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। मैं हूं शादाब आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं FM रेनबो धड़कन लखनऊ के। बताऊंगा कि क्या है आखिर जो साइंस भी है, फन भी है और फैक्ट भी है, ये सारी चीज है। बताऊं? हाँ, तो चलिए एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि इंसान का जो दिमाग है वो लगभग 75% पानी से बना होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, साइंस कहती है। तो ऐसा ही कुछ है, अमेजिंग से फैक्ट है जो आप सभी के सामने आएंगे। फिलहाल एक गाना आप सभी के सामने आ रहा है, उसे एंजॉय कीजिए। टिल अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त।

अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम. जमाना छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है. कहीं भी जाओगे गर्मी बहुत पड़ेगी. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे. अगर तुम मिल जाओ तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे. वो है एसी एसी कूलर फैन कुछ मिल जाए. अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे बॉस. बिल्कुल 4:16 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में. मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव. और बात करेंगे आज यूथ वेव में यूथ की, या यूं कहें कि सब की, क्योंकि यार गर्मी इतनी है ना, गर्मी में किसी को भी बाकी नहीं रखा यार. हम सभी पिस रहे हैं. नॉर्थ में अगर आप हैं जहां बिल्कुल सी साइड नहीं है, समुद्र नहीं है, तो नॉर्थ हमारा जो है वो एकदम इस तरफ उबल रहा है. तो गर्मी में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार आप जब ड्राइव करते हैं ना तो आपको एक इल्यूजन होता है, एक कह सकते हैं ना, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, कि एक अदृश्य चीज़ दिखती है जो होती नहीं है एक्चुअली, लेकिन दिखती है. सोचेंगे आप क्या, वो है रोड पर एक अलग सा लगेगा कि आपको एक जगह पर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना. वो पास जाते जाएंगे तो वो पानी और दूर होता जाएगा, ऐसा लगता है आपको, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है. ये एक इल्यूज़न होता है जब रिफ्लेक्ट करती है लाइट. जी हाँ, जहाँ पर सड़क बहुत चिकनी होती है, बहुत ज़्यादा सड़क में चमक होती है, वहाँ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एक इल्यूज़न क्रिएट करती है. तो साइंस उसे कहता है मिराज. और ये मिराज आपको जब दिखता है तो ऐसा लगेगा कि आपको सड़क पर पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो इस इल्यूज़न को बचने के लिए अलग अलग तरह के चश्मे आते हैं. जी हाँ, उन चश्मों को आप अगर पहनते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मतलब आपको वो इल्यूज़न नहीं दिखाई देगा, आपको जगह जगह पानी भरा हुआ नहीं दिखाई देगा. तो उसके लिए आपको अलग सा गॉगल खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना. तो गॉगल की दुकान पर जाइएगा और बोलिएगा कि मुझे वो वाला गॉगल चाहिए. जी हाँ, फिलहाल गॉगल की बात छोड़ करके हम गाना आपको सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा. चलिए बिना देर के, ठीक है ना. तो बिना देर के आपके लिए एक प्यारा सा गाना.

जी हाँ, मेरा भी पूछना आपसे यही है कि आपको आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बहुत प्यार है। जी हाँ, मैं बार बार ये गाना सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिससे आप

बहुत प्यार करते हैं, मतलब पर्टिकुलर इंसान को छोड़ करके, अगर कोई और ऐसी चीज लिविंग थिंग छोड़ करके, मतलब ऐसी कोई चीज़ है आपके पास कि उसके बगैर आप नहीं रह सकते, लिविंग थिंग छोड़ करके यानी जीती जागती चीज़ को छोड़ करके, हाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सोचते हैं और कहते हैं हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, तो अगर हो तो मेरे को मेल करके जरूर बताइए। मैं आपका मेल अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो डेफिनेटली अभी पढ़ के बताऊंगा आपको। फिलहाल बातें चल रही हैं यूथवेव में आपसे, मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ। 4:24 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में। बात क्या चल रही थी, बात यूं है कि भाई देखिए साइंस क्या कहती है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यार दुनिया पूरी साइंस से चल रही है। तो हमारी साइंस ये कहती है कि गर्मी कितनी भी हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी बॉडी नेचुरल एसी क्रिएट करती है अपने अंदर। जी हाँ, बॉडी हमारी जो है वो नेचुरल एसी क्रिएट करती है, ध्यान रखिएगा। सो स्वेटिंग होती है और पसीना आता है और उसके बाद यस बॉडी हमारी नॉर्मल हो जाती है। फिलहाल एक और गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट्स पर।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक प्रमुख मिनी रत्न उद्यम है, जो उपयुक्त डोमेन विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों से संविदात्मक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनका विवरण इस प्रकार है। पद का नाम YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास, पद संख्या 2 YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन, 2 पद YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण, 2 पद YP डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स, 1 पद YP कंपनी सचिव, 1 पद YP सामग्री प्रबंधन, YP मार्केट रिसर्च, YP सिविल इंजीनियर, YP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 1-1 पद तथा YP MSME बिजनेस आउटरीच, 2 पद YP वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक, 2 पद और YP वेंचर कैपिटल फंड के लिए IT विशेषज्ञ, 1 पद। नौकरी के लिए विस्तृत विवरण, नियम, शर्तों और आवेदन पत्र के लिए देखिए NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख रहेगी 8 जून 2026। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विभागों के नाम है BBA, इस विभाग में 3 पद उपलब्ध हैं, वाणिज्य विभाग में 3 पद उपलब्ध हैं, साइबर सुरक्षा विभाग में 2, अर्थशास्त्र विभाग में 3, अंग्रेजी विभाग में 3, इतिहास विभाग में 3, उड़िया तथा राजनीति विज्ञान में 3-3 पद उपलब्ध हैं। सहायक प्रोफेसर के लिए आवश्यक योग्यता और वेतनमान तथा अन्य शर्तों के लिए देखिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर की वेबसाइट www.osou.ac.in। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर पद के लिए विभाग हैं BBA, वाणिज्य, साइबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, उड़िया, राजनीति विज्ञान। इन सभी विभागों में 1-1 पद उपलब्ध है। आरक्षण, योग्यता, वेतनमान तथा अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर की वेबसाइट www.osou.ac.in। आवेदन 22 जून 2026 तक पहुंच जाने चाहिए।

भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में प्रबंधक वित्त एवं लेखा के दो पद उपलब्ध हैं, दोनों ही पद अनारक्षित हैं। योग्यता है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार संस्थान के एसोसिएटेड सदस्य आवेदन कर सकते हैं। अनुभव वित्त एवं लेखांकन में न्यूनतम 8 वर्ष का कार्योत्तर योग्यता अनुभव होना चाहिए। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग।

0: अनुभव, वित्त एवं लेखांकन में न्यूनतम 8 वर्ष का कार्योत्तर योग्यता अनुभव होना चाहिए। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

धोपे से लो, जूते धोपे से लो। फिलहाल लता मंगेशकर ने बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज में ये गाना आपने सुना अपने रेडियो सेट्स पर हम आपके हैं कौन मूवी से। 4:36 हो चुके हैं, स्टूडियो के क्लॉक में मैं हूं शादाब आप सभी के साथ। और ये मूवी जब भी आप देखोगे या ऐसे गाने जब भी देखोगे तो आपको अपने पुराने दिनों की याद आएगी, उन शादियों की जरूर याद आएगी जब आप ऐसे जूते को छुपाते थे। बिल्कुल, अगर आपने ये लाइफ जिए, क्या यंग जनरेशन यही कहें कि आज की जनरेशन जूते चप्पल ये सारे जो चीज़ें हैं ना शादियों की वो भूल चुके हैं। फिलहाल आपके लिए ये गाना था और मुझे लगता है अभी भी जूते चुराई जो है ना शादी में वो होती है और वो मज़ेदार रस्म है, वो होनी चाहिए, ठीक है ना। शादी की बात से हटते हैं और आगे आते हैं और आगे आपके गाने की ओर चलते हैं। लेकिन फिलहाल गाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैंने एक बात की थी अभी इससे पहले कि मैंने जो एक गाना सुनाया था वो था कि हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई आपको किससे प्यार है, तो काफ़ी लोगों का जो जवाब आया वो आया है एक ही, obviously 100.7 FM रेनबो, आप उसी से बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं। मैं मानता हूँ, बिल्कुल हम सब ये मानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये जवाब दिए हैं, मोइनुद्दीन थैंक यू। रोशनी रावत जी ने बोला है कि भाई देखिए हम FM रेनबो से तो बहुत प्यार करते हैं, साथ ही साथ हम अपने आप से भी बहुत प्यार करते हैं और नेचर से बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, नेचर से प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है इस वक्त, तो बिल्कुल थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं भाई साइंस की। एक साइंस कहती है, क्योंकि आज हम यूथ वेव में बातें कर रहे हैं साइंस एंड टेक की, तो एक साइंस ये कहती है कि आपके पेट का जो एसिड है यानी आपके जो स्टमक का एसिड है वो इतना स्ट्रांग होता है, उसके लिए खाना पचाना बहुत छोटी सी बात है। जी हाँ, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो मेटल को भी डैमेज कर सकता है, यानी मेटल को भी गला सकता है, इतना एसिड ज़बरदस्त होता है, सोच लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाने लगें और कुछ भी आप पचाने लगें, ठीक है ना। खाना अपने हिसाब से, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही कम खाइए तो ज़्यादा बेटर है, हाँ, क्योंकि आजकल गर्मी में लू लगना और बीमारियों को बढ़ावा देना बहुत आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखें अपने आपका। फिलहाल एक गाना आप सभी के रेडियो सेट्स पर, ये लीजिए।

करेंगे आपसे, मुस्कुराने की बात ही नहीं करेंगे आप, बस बात छोड़ो यार। 4:45 हो चुके हैं, स्टूडियो के क्लॉक में मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। और गाने यार अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ मज़ेदार, कुछ ऐसे जो आपके दिल को छू जाए। मैं ऐसे ही गाने आप सभी को प्ले करके यहाँ पर सुनाऊंगा जो हर एक इंसान के मूड के लिए फिट बैठे हैं। ऐसा नहीं यार, कुछ लोग थोड़ा सॉफ्ट सुनना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़ा यंग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग डांस करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि यार मैं ना हर टाइम मूड में रहूं। तो हर तरह के गाने आपको सुनाई देंगे। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव, मैं हूं शादाब आप सभी के साथ, बात कर रहा हूं साइंस की। साइंस क्या कहती है आपकी बॉडी को लेकर के? जी हाँ, आपकी बॉडी को लेकर के साइंस एक और फैक्ट बताती है जो सुन के आपको फन हो जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है। यस, हमारी नाक लगभग 1 ट्रिलियन अलग अलग स्मेल्स पहचान सकती है। ऐसा क्या? हम भी शॉक्ड हैं, आप भी शॉक्ड हुए होंगे। मतलब इतनी तरीके की अलग अलग गंध को स्मेल कर सकती है हमारी नाक, मतलब पहचान सकती है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो कई बार ये होता है ना, जब हम फल खरीदने जाते हैं तो देखिए उठा उठा के सूंघते हैं। हम बड़े काबिल लोग हैं, हम लोग सूंघ के पता लगा लेते हैं कि ये फल मीठा है, खट्टा है, क्या है, कैसा है। ये कमाल की जो क्रिएटिविटी है ना, ये हम इंसानों के अंदर, वैसे जानवरों के अंदर हमसे ज़्यादा होती है। तो फिलहाल हमारी नाक बड़े काम की चीज़ है। और क्या है? और एक चीज़ और, आपके शरीर की जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो स्टील से ज़्यादा मजबूत होती हैं वेट के कंपेरिजन में। रुक जाइए, हाँ पूरी बात सुन लीजिए, वेट के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है अब स्टील से मजबूत है तो आपने तोड़ने पे शुरुआत कर दी, देखें तोड़ के देखें, वेट के कंपैरिजन में अगर आप रखेंगे तो उन्हें मजबूत पाएंगे। खैर, ये साइंस कहता है, मैं नहीं कहता, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ, ठीक है ना। तो अभी अगला गाना ये किसका फेवरेट है मेरे को बताना ज़रूर, चलो सुनो। और इनका डांस तो भाई मेरा फेवरेट है, हाँ मैं इनका डांस एंजॉय करता हूँ।

जैन का डांस किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है यार, जब भी गोविंदा डांस करते हैं मुझे लगता है इनके नए नए स्टेप जो हैं वो लोग फॉलो करते हैं। फिलहाल इनके गाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं, आपने हमेशा सुने हैं। 4:52 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, मैं हूँ शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव, और बहुत ढेर सारी बातें कर ली भाई साइंस एंड टेक की। और साइंस में मैंने आपको बताया कि भाई साइंस क्या कहता है आपकी बॉडी को लेकर के, बॉडी में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो साइंस ने खोज की हैं कि भाई आपकी बॉडी इस तरह से वर्क करती है। तो भाई बॉडी में अपने आप को अगर गर्मी में रखना है मजबूत तो साइंस की सुनते रहिए। जी हाँ, अब साइंस ये भी कहती है कि आइसक्रीम जल्दी जल्दी खाने से ब्रेन फ्रीज होता है। हाँ, यानी आप ठंडी कोई भी चीज़ जल्दी अगर खाने की कोशिश करेंगे तो आपका ब्रेन वो स्लो हो जाएगा, फ्रीज करने लगेगा वो जो ठंडक है वो, क्योंकि अचानक जब ठंडक पहुंचती है तो नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है, और नर्वस सिस्टम जब इफ़ेक्ट करती है तो वो आपको आपके ब्रेन को धीरे धीरे करके सुस्त करेगी। तो ये मैं नहीं, साइंस कह रहा है। तो साइंस की सुनते रहिए, और साथ ही साथ भाई सुनिए एफएम रेनबो भी, धड़कन लखनऊ की, जहां पर आप हमेशा हमारे साथ जुड़े होते हैं और हम आपको एक के बाद एक बेहतरीन और बेहद खूबसूरत गाने सुनाते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम से लेते हैं वदा, और अगले प्रोग्राम में आपको मिलते हैं कुछ नए, नहीं नहीं कुछ

90s के उन गानों के साथ जिनके साथ कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, तो सुनना मत भूलिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी तो हम यही हैं और अगले कई घंटे आपके साथ रहने वाले हैं। तो 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 वाला घंटा तो मुझे भी याद रहता है, बहुत ज़रूरी है भाई, आप लोगों से बात होती है मेरी, और जब बातें होती हैं तो बहुत ढेर सारी बातें होती हैं, तो बातें करने के हम भी शौकीन हैं, आप भी शौकीन हैं, आप हमसे मिलते हैं तो हम आपके गाने भी प्ले करते हैं और बातें भी करते हैं। तो अभी से लेकर के अगले कुछ घंटे आप सभी के नाम है, बिना देर के एक और गाना आप सभी के नाम करते हैं और सुनिए।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। सुनिए एफएम समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। पीलीभीत जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में गोमती नदी से जुड़ी विकास योजनाओं एवं नदी के उद्गम स्थल के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की। श्री प्रसाद ने बताया कि जिले में एक जिला एक नदी के तहत गोमती नदी के पुनरुद्धार का कार्य तेज गति से चल रहा है। योजनाओं को गति देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। लखनऊ में जनगणना 2027 की तैयारियों को सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के उद्देश्य से आज लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण एवं आवास गणना कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रांगणकों और एवं सुपरवाइजरों से संवाद स्थापित करते हुए गणना कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का कार्य पूर्ण निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोनल अधिकारी और सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रतिदिन कार्य की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीआईजी सोमेन वर्मा ने बताया कि अयोध्या रेंज के सभी 5 जिलों में पीस कमेटी की बैठकें पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप ईद की नमाज केवल निर्धारित ईदगाह और मस्जिदों में ही अदा की जाएगी, साथ ही कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कहिए ना।
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: जी हाँ बिल्कुल, चल देंगे हम छैया छैया करते हुए आप सभी के साथ इसी सफर पर जो आप सभी के साथ चल रहा है। 5:10 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। ये घंटा है टॉप 10 म्यूजिक का, 10 ऐसी म्यूजिक या यूं कहें 10 ऐसे गाने मैं आपको इस घंटे सुनाऊंगा। उन गानों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा खास होगा, जो स्टोरी होगी मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल छैया छैया जो गाना आपने सुना वो था दिल से 1998 में, ये मूवी आई और इस मूवी के बारे में हर कोई वैसे जानता है। खास बात इस गाने की जो थी वो ये थी कि भाई इस गाने को जो शूट किया था वो शूट किया था कहाँ पर यार, कहाँ पर शूट किया था वो गाना, शूट किया था इन्होंने चलती ट्रेन पर। अब ये चलती ट्रेन पर जब गाना शूट हुआ तो आप सोच रहे होंगे यार कई टेक हुए होंगे, कई बार ये रुकी हुई ट्रेन को चलता हुआ दिखाया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं था, आपको जानकर हैरानी होगी, ये चलती ट्रेन पर ही शूट हुआ है ये गाना बिल्कुल, और विदाउट एनी सेफ्टी हार्नेस। जी हाँ, बिना कोई भी सेफ्टी हार्नेस ना शाहरुख खान ने पहने थे ना ही साथी कलाकारों ने पहने थे, और ट्रेन चल रही थी और ये डांस कर रहे थे। और कमाल की बात ये थी कि गाना वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस हुआ, यार रहमान साहब को भी इंटरनेशनल लेवल पर इस गाने से ही पहचान मिली थी। तो क्या उनका जबरदस्त म्यूजिक था, क्या जबरदस्त अंदाज था। फिलहाल अगले गाने की ओर चलें, उससे पहले एक एडब्रेक, एडब्रेक के बाद मिलेंगे डेफिनेटली उस गाने से और उस गाने की रियलिटी या उसके साथ जुड़ी हुई स्टोरी मैं आपको जरूर बताऊंगा, कहीं मत जाइएगा। गाना कौन सा है बस आपको सामने थोड़ी सी देर में आ जाएगा। फिलहाल एक एडब्रेक आप सभी के लिए।
1: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

बिल्कुल टिप टिप बरसा पानी, इस वक्त हम सभी यही सोच रहे हैं कि यार कैसे भी बरसात हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है बरसात होना। वैसे शामेवाद में मैं बताने वाला हूं कि मौसम कुछ बदलने वाला ज़रूर है। फिलहाल ये गाना आपने सुना मोहरा फिल्म से, अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन के ऊपर ये फिल्माया गया गाना। मैंने बोला इस घंटे दस ऐसे गाने आप सुनेंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ स्टोरी ज़रूर रही है। तो फिलहाल ये जो गाना जब शूट हो रहा था तो इसमें जो बारिश की गई, जो पानी से आर्टिफिशियल बारिश की गई थी और इसमें नहलाया गया था इन दोनों को, इतना ठंडा पानी कर दिया गया था कि बार बार रीटेक लेने पड़ रहे थे, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से जो एक्चुअल इमोशंस चाहिए थे चेहरे पे वो नहीं आ पा रहे थे। तो डायरेक्टर बार बार रीटेक ले रहे थे और इतना इन लोगों ने नहा लिया था इस टेक के दौरान, शूटिंग के दौरान, या यूं कहें कि इस गाने में, कि इन्हें कई दिन बीमार भी रहना पड़ा। उसके बाद शूटिंग आगे बढ़ी। तो फिलहाल ऐसा होता है, कई बार होता है, कई चीज़ें जब आप करने उतरते हैं ना तब आपको एक्चुअल चीज़ें

इस गाने का जुनून उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस गाने को उस वक्त सुना है जब वो लाइव ये गाना रिलीज हुआ था। जी हाँ, 5:24 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। और ये गाना क्या बात है, कमाल का गाना था, हम्मा हम्मा। ए आर रहमान साहब की बेहतरीन कॉम्पोजिशन ये आप सभी के सामने लाई गई थी। और इसमें दो चीज़ों को इस्तेमाल किया गया था, एक तो इंडियन बीट्स और वेस्टर्न म्यूज़िक का सबसे पहला मिक्स किया गया था। और बहुत ए आर रहमान साहब उस वक्त टेंशन में थे कि ये नया एक्सपेरिमेंट काम आएगा या नहीं आएगा। और अब यकीन जानिए जब ये गाना सबके सामने आया और जो नई जनरेशन थी या उस वक्त की जो जनरेशन थी उन्होंने बहुत पसंद किया इस गाने को और हर पार्टी की जान हुआ करता था ये गाना उस वक्त की। तो फिलहाल ये गाने जो नई और यूं हैं वेस्टर्न और इंडियन म्यूज़िक का फ्यूज़न करके आप सभी के सामने लाए गए थे। एक और गाने को आप सभी के सामने लाते हैं, उसके सामने उसके साथ की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये गाना पहले सुनिए फिर हम स्टोरी बताते हैं।

जी हाँ बिल्कुल, ये गाना जब भी आप सुनते हैं तो आपको अपनी इंडियन आर्मी की याद आती है, और ये गाना इंडियन आर्मी के लिए ही डेडिकेटेड था। पूरा का पूरा गाना ये बनाया है ही से लिया गया था कि उनके दिल की जो फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या चलता है जब वो बॉर्डर पर होते हैं, जब वो ड्यूटी पर होते हैं, जब वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं।

0: जी हाँ बिल्कुल, ये गाना जब भी आप सुनते हैं तो आपको अपनी इंडियन आर्मी की याद आती है, और ये गाना इंडियन आर्मी के लिए ही डेडिकेटेड था। पूरा का पूरा गाना ये बनाया है ही से लिया गया था कि उनके दिल की जो फीलिंग्स हैं, उनके मन में क्या चलता है जब वो बॉर्डर पर होते हैं, जब वो ड्यूटी पर होते हैं, जब वो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिल्माने के लिए गाने को बनाया गया था, और वो इमोशंस पूरी तरीके से इस गाने में लाए गए हैं। और आज भी अगर कोई भी इंडियन आर्मी का जवान इस गाने को सुनता है तो वो रो पड़ता है, और इवन हम सबके आंखों में वो नमी आती है। तो आप ये इंडियन आर्मी के हर इवेंट्स में मोस्टली इस गाने को प्ले होते हुए ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ ये जब इमोशंस लाने के लिए इन एक्टर्स को आर्मी की बैकग्राउंड से गुजारा गया था, उन मुश्किलात कह सकते हैं हालातों से गुजारा गया था, जैसे कि इंडियन आर्मी या जिन जिन तरह से वो रहती हैं दूर घरों से, वो सारे हालात उनको उन हालातों से गुजारा गया था इन एक्टर्स को, ताकि उनके चेहरे पर भी वो शिकन वो फील आ सके। तो ये होता है एक्चुअल में, अगर आपको किसी भी की चीज़ को दर्शाना हो या कैरेक्टर को, तो आपको उस चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं और एक गाना आप सभी के सामने लाते हैं, लेकिन उससे पहले एक एड ब्रेक के बाद गाने की बात करेंगे। टॉप 10 में आज 10 वो गाने जो कुछ ना कुछ स्टोरी लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं, ठीक है ना? तो नहीं जाइएगा मत स्टेडियम, ये रहा एड ब्रेक आपके लिए।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

यार शाहरुख खान को ऐसे ही शाहरुख खान नहीं कहते। इन सब फिल्मों को देखने के बाद, इन सब गानों में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, मुझे लगता है यार शाहरुख खान से ना प्यार करने वाला भी प्यार करने लगेगा। जी हाँ, बाजीगर मूवी का ये गाना आपने सुना कि ये काली काली आंखें, और ये गाना यकीन जानिए शाहरुख खान की जो कूल डांसिंग स्टार की जो इमेज है, उसको इसने इमेज को क्रिएट कर दिया था, सबके सामने ला दिया था। उसके बाद से उनको डांसिंग जो स्टार कह सकते हैं या यूँ कहें इस तरह के जो गाने थे वो मिलने लगे थे, और इसका जो हुक स्टेप था वो 90s में बहुत ज़्यादा कॉपी हुआ। तो ये हुआ इस गाने के साथ। फिलहाल अगले गाने को आप सभी ने बहुत सुना है, और ये किसी फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन इस गाने को अगर आपने नहीं सुना है तो आप 90s के किड तो हो ही नहीं सकते। जी हाँ, सुनिए।

मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपने ये गाना नहीं सुना तो वाकई आप 90s के किड नहीं हो सकता, मुझे लगता है 100% आपने ये गाने को सुना होगा। जी हाँ, मेड इन इंडिया, आलिशा चनाई ने ये गाना 1995 में एक एल्बम में लॉन्च किया था। उस एल्बम का नाम भी था मेड इन इंडिया। और ये गाना हम सभी ने सुन रखा ऑब्वियसली, तो इस नॉन फिल्मी सॉन्ग को आप सभी ने इतना पसंद किया था, इतना हिट हुआ था कि भाई ये बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स थे उस वक्त के, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग थे, उनको ये कंपटीशन दे रहा था। और एक कहना था बॉलीवुड के बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये बोला था कि शायद आगे चलकर के जो नॉन फिल्मी सॉन्ग हैं जो सिर्फ एल्बम्स में आते हैं वो भी टक्कर दे सकते हैं ऐसे हमारे सॉन्ग्स को। तो उन्होंने उस वक्त बड़ा एक अहम फैसला लिया कि भाई हमें कॉम्पिटिशन में रहना है तो नॉन फिल्मी सॉन्ग्स को भी हमें ध्यान में रखना होगा। फिलहाल इस नॉन फिल्मी सॉन्ग में एक चीज़ और हुई थी कि आलिशा चनाई पर ही पूरा ये गाना फिल्माया गया था। बहुत कम टाइम पर इसमें दो जो एक्टर्स, एक एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को लाया गया था, उन पर कैमरा आया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सिंगर को ही इस गाने में देखा हुआ है। अगला गाना बहुत ही शानदार गाना, और आप यकीन जानिए मज़ा आ जाएगा आपको सुन करके। इनको नहीं पहचान पाए तो आप कुछ नहीं पहचान पाए, बताइए कौन है ये, पहचान गया ना? हाँ,

है जनाब, नहीं गाना बिल्कुल सैफ अली खान साहब यूथ आइकन बन गए थे इस गाने के बाद यार। गाने में जिन्होंने जिस तरह उन्होंने एनर्जी अपनी दिखाई थी और जिस तरह उन्होंने गाने में परफॉर्म किया था, कमाल था और सबने बड़ा पसंद किया।

0: 90s की पार्टी का ऑलमोस्ट ये सॉन्ग ऐसा था जो मैंडेटरी था, मतलब बजना ही बजना था. जी हाँ, ऐसे ही कुछ गाने हैं जो आप सभी के साथ जरूर बजेंगे. फिलहाल एक एड ब्रेक, और एड ब्रेक के बाद एक और गाना आप तक पहुंचाएंगे और उसके पीछे की स्टोरी जरूर बताएंगे. ये एड ब्रेक आप सभी के लिए.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे.
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर, हमारी जनगणना हमारा विकास.
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.

0: की खूबसूरती पर एक पोइट्री लिखी गई थी, उस पर यह पूरा डिस्क्राइब किया गया था। जी हाँ, ये सोचिए, ये गाने को बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया गया था। फिलहाल एक एड्रिक एड्रिक के बाद एक और प्यारा सा गाना हम सभी के सामने लाते हैं बिना देर के।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

1942 वाला स्टोरी, ये आई थी 1994 में, एक लड़की को देखा ऐसा लगा। इस फिल्म का गाना था और इस गाने को आप सभी के सामने खूबसूरत अंदाज में कुमार सानू ने गाया था। और ये कहते हैं कि कुमार सानू की ये जी खूबसूरत रोमांटिक परफॉर्मेंस थी। और ये एक लड़की

जी हाँ, पहला नशा पहला खुमार, उदित नारायण साधना सरगम की आवाज में, जो जीता भाई सिकंदर मूवी से ये गाना। और इस गाने की स्पेशल जो खास बात थी वो थे इसके स्लो मोशन इफेक्ट। जी हाँ, क्योंकि जब आराम आराम से लहराते हुए ये लोग डांस कर रहे थे, ये यकीन जानिए उस वक्त VFX नहीं था, तो कैसे कैसे पूरी टीम के साथ एक्टर्स को धीरे धीरे करके स्लो मोशन करना पड़ता था। आज तो क्या होता है, काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, VFX

तो सबको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त सारे एक्टर्स भी उसी सीक्वेंस में धीरे धीरे मूव कर रहे थे, स्लो मोशन कर रहे थे, जैसे जैसे मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस कर रहे थे। तो ये कैमरा टेक्निक और मैजिकल फील से बनाया गया था। ये गाना बॉलीवुड का खूबसूरत आइकॉनिक लव सॉन्ग्स में ये गिना जाता है। एक और लव सॉन्ग्स है जो 10वें नंबर का गाना है, वो मैं आप सभी को पहले थोड़ा सा हल्का सा सुनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। जी हाँ, आपने सुना ये गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना है शाहरुख खान का, सरसों की खेतों वाला। वो सीन इतना फेमस हुआ कि आज भी ये लोग पंजाब जाकर ये पोज रिक्रिएट करते हैं। तो जिसके भी दिमाग की उपज होगी वो कमाल के सीन की, वो काबिले तारीफ थी। ये इंडियन गाना, इंडियन रोमांस की पहचान बन गया। यस, अब मुझे दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत। ये गाना आखिरी गाना, 10वां गाना, आप सभी के रेडियो सेट्स पर। मिलते हैं शाम अवध में बिना देर के। मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ। कहीं जाइएगा मत, स्टेडियम विद 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। सुनिए एफएम समाचार। नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ किया जाए। अयोध्या में स्क्रैप और बेकार सामग्री से रामायण की गाथाओं को जीवंत रूप दिया जाएगा। मौशीवाला के पास नगर निगम की ओर से 17,72,00,000 रुपए की लागत से भव्य लवकुश पार्क विकसित किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नए आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये पार्क कचरे से कला थीम पर तैयार होगा, जहां स्क्रैप धातु और बेकार सामग्री से रामायण के ऐतिहासिक प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही पार्क को शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए यहां विशेष वर्कशॉप और एजुकेशनल टूर आयोजित किए जाएंगे। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि ये परियोजना अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने आज गोधना मोड़ स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उपभोक्ताओं को खराब ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज और बिजली कटौती से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों को के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि ईद उल अजहा पर्व का मर्म त्याग सेवा का की भावना है। ये पर्व गरीबों तथा ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि ये पर्व समाज में सद्भाव, एकता और सामाजिक समरसता को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: आप सभी को अवध की पूरी जानकारी देता है। तो अवध में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या नई चीजें होने वाली हैं, मौसम का क्या हाल रहने वाला है, और साथ ही साथ जी हाँ क्या होने वाला है रोड्स पर निकलने के बाद, आप जाम में फंसने वाले या नहीं, इन सारी चीजों की अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। तो कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा। अगले कुछ घंटे हम आपको बेहतरीन गाने भी सुनाएंगे, गाने आपके फेवरेट तो होने वाले हैं पक्का पक्का, मैं ये तो श्योर कहता हूँ कि आपके गाने ये पक्का आपके फेवरेट होने वाले हैं। और जो खबरें रहेंगी या जो जो बातें रहेंगी वो भी आपके काम की ही रहेंगी। तो कहीं जाने की जरूरत है क्या आपको? जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, ऐसे ठंड ऐसी जो ठंडक है ना जो आपको बाहर मिल रही है उसमें आप कहीं ना ही जाएं तो बहुत बेहतर है। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोशिश करिए अगर काम नहीं है बहुत ज़रूरी तो मत निकलिए, वैसे शाम में थोड़ा आराम मिल जाता है ना, होता है ना। तो फिलहाल चलिए एक गाना आप सभी को सुनाते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक है, एड ब्रेक सुन लीजिए फिर हम गाना भी आप तक पहुँचाएंगे। ये लीजिए।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ। 6:40 माफ कीजिएगा, 6:04 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुका हूं शाम अवध। और ये

जन्नत फिल्म का ये गाना सुना आपने अपने रेडियो सेट पर, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। इमरान हाशमी और सोनल चौहान इसमें गाने में एज एन लीड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस थे। के एंड प्रीतम की आवाज में ये गाना था। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। 6:10 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में और शाम अवध प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अब अगर देखिए शाम अवध है तो अवध की शाम कितनी गर्म है आप सभी जानते हैं फिलहाल, तो है ना, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। और आज मैं जो प्रोग्राम की शुरुआत करूँगा वो मैं कुछ ऐसे ही न्यूज़ से करूँगा जिसमें आपको थोड़ा, इवन हम सबको थोड़ा आराम मिले। तो भाई कल से थोड़ा मौसम बदलेगा और 8 डिग्री तक जो पारा है वो लुढ़केगा। जी हाँ, तपती दोपहरी से आपको लू जो चलती है उसकी चपेट में आने से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे मौसम विभाग का कहना है कि भाई 28 से 30 मई तक शहर समेत पूरे प्रदेश में आंधी गरज चमक के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भाई पारा थोड़ा लुढ़केगा तो आराम मिलेगा भाई। देखिए मिलेगा तो है। और यकीन जानिए मैं उस दिन अभी हाल ही में सफ़र कर रहा था, तो मैं जरवल और ये इधर था गोंडा साइड, तो वहाँ पर काफ़ी बारिश और आंधी आई बहुत तेज़, और काफ़ी देर तक बारिश हुई है। तो वहाँ तो बड़ा अच्छा मौसम था उस वक्त, हम तो बड़े मज़े में थे। हमें लगा था कि यार हम लखनऊ पहुँचेंगे तो लखनऊ में भी ऐसा मौसम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था हमारे साथ। फिलहाल अगली क्या न्यूज़ है अच्छी वो लखनऊ वालों को पता चलने वाली है, लखनऊ वालों को फ़ायदा मिलने वाला है। क्या है भाई न्यूज़ आपके लिए वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना आप सभी के साथ रेडियो सेट पर शेयर करेंगे।

जहां आपने ये कबीर सिंह फिल्म से ये गाना सुना। बेख्याली 6:17 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, धड़कन लखनऊ की है। तो भाई आप सभी की, हम सभी की धड़कने हैं और हम सभी लोग मिल करके अच्छी अच्छी खबरें कुछ जान लेते हैं। अब आप कहोगे यार अच्छी खबर कौन सी है भाई, बताओ जल्दी। तो बंद होगा मेट्रो का स्मार्ट कार्ड, ये कौन सी अच्छी खबर है, आप यही सोच रहे होगे ना। जी हाँ, अच्छी खबर इसके बाद में बताऊंगा। जी हाँ, बंद होगा मेट्रो का स्मार्ट कार्ड, लेकिन लागू किया जाएगा मोबिलिटी कार्ड। जी हाँ, एक ऐसा कार्ड जो मेट्रो में भी चलेगा, बस में भी चलेगा, टोल में भी चलेगा, छोटे मोटे पेमेंट्स भी आप आराम से दुकानों पे कर सकोगे। तो ये लॉन्च करने की तैयारी में है हमारी मेट्रो, तो जल्द ही आपको ये मेट्रो का कार्ड जो है, कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है, जिसे NCMC बोला गया है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, सो NCMC, ये कार्ड आपको जल्दी ही मिलने वाला है। ये वाईफाई कार्ड होगा और अगर आप क्रेडिट कार्ड या रुपे कार्ड्स यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा रुपे कार्ड्स होते हैं जो आपकी कहते हैं ना, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं UPI से रिलेटेड वाले, वो आप उसी से करते हैं। तो उसी तर्ज पर यह बनाया जा रहा है कार्ड, और वाईफाई से रिलेटेड वाईफाई होगा इस कार्ड में, यानी आपको कार्ड कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ टैप किया और पेमेंट हो गया। हाँ, तो ये आप टोल पे भी कर सकते हैं, टोल भी इससे कटेगा, आप इससे लिंक कर देंगे अपना टोल तो। और बस में अगर आप जाते हैं, टिकट लेते हैं, तो मेट्रो में तो ऑब्वियसली आप यूज़ ही कर सकते हैं। छोटे मोटे पेमेंट्स भी अगर आपको करने हैं, ख़रीदारी करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये सारी चीज़ें हो सकेंगी आपके कार्ड से। अब ये कार्ड आपको जल्द ही मिलने लगेगा मेट्रो के अलग अलग स्टेशन पर, तो मोबिलिटी कार्ड का यूज़ कीजिएगा। पैसे तो आप नहीं खर्च करने हैं, पैसे नहीं दे रहे हम, वो हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उस कार्ड में पैसे आपके ही चाहिए। फिलहाल लेकर हैड ब्रेक के बाद एक और खूबसूरत गाना आप सभी के सामने लाते हैं। 6:19:20 होने वाले स्टूडियो के क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अभी आप बोलोगे यार इमरान हाशमी के गाने लगातार सुनाए जा रहे हो, एक के बाद कुछ ना कुछ है। इमरान हाशमी के गाने, गाने ऐसे होते थे यार, मुझे गाने बहुत पसंद है। जरूरी ये गाना एक मैंने सुनाया है, पिछले घंटे भी मैंने एक गाना सुनाया था, बहुत मज़ा। मतलब इस घंटे भी एक और गाना सुनाया था, जरा से दिल में दिए जगह। इमरान हाशमी की मूवी उससे ज़्यादा उनके गाने फेमस होते थे, है ना। फिलहाल आप को टाइम बता देता हूँ, 6:26 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध, अवध की शाम में अवध से जुड़ी हुई बातें, कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी। तो पहले बता दें, कल बकरीद है यानी ईद उल अज़हा, और उसकी वजह से कल छुट्टी रहेगी। पहले वो छुट्टी आज थी, जी हाँ, यानी क्योंकि चांद के हिसाब से डिसाइड होता है कि बकरीद कब होगी। तो पहले ये था कि 27 को होगी, तो 27 को तो हुई नहीं, तो 28 को है अब। तो उसके हिसाब से कई ऐसी चीज़ें थी जिन पर जो छुट्टी की वजह से प्रीपोन की गई हैं या तो आगे बढ़ा दी गई हैं। जी हाँ, तारीखों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जैसे कि पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट जो 28 मई को थे यानी कल छुट्टी के दिन, वो अब 27 मई को कर दिए गए हैं, या उन अपॉइंटमेंट वालों को आगे का मौका दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर लें। जी हाँ, जिनकी अपॉइंटमेंट 28 मई को थे यानी कल अचानक छुट्टी हो गई, 27 को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट नहीं दिए गए थे क्योंकि पहले से छुट्टी का अंदेशा था, लेकिन फिर उनको प्रीपोन किया गया। तो ये अगर आपका अपॉइंटमेंट 28 मई को है तो आप उसे शेड्यूल कर सकते हैं, कल फिलहाल छुट्टी रहेगी। पॉलिटेक्निक की जो परीक्षा है वो अब 31 मई को होगी, जिनकी 28 मई को थी, यानी जो 28 मई को थी वो अब 31 मई क्योंकि कल हो गई छुट्टी। आगे बढ़ते हैं, AKTU की भी परीक्षाओं को टाला गया है, आगे बढ़ाया गया है। जो 28 मई को परीक्षाएं थी वो अब आगे बढ़ा दी गई हैं और शेड्यूल जल्द ही विश्वविद्यालय आपके सामने लाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये न्यूज़ आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। फिलहाल एक गाना भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिना देर के मैं गाना बजाता हूँ आप सभी के सामने। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है यार, ये आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, ये आवाज़ आपको भी बहुत पसंद है। बहुत ही सिंपल तरीन आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, एकदम ग्राउंड पे रहते हैं। सुनिए आवाज़, फिर बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है ना।

0: पॉपुलर इंसान जैसे यार कोई मिला जाए वो इतना डाउन टू अर्थ, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। ये तो सच बात है, तो सीखेंगे सीखेंगे, लेकिन सीखते ही कहाँ हैं हम, तो बस अपनी धुन में रहते हैं हम सभी लोग। चलिए ये तो बातें हुई अरिजीत सिंह की, 6:35 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, अगले गाने की ओर चलते हैं। शामे और चल रहा प्रोग्राम, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। एक न्यूज़ ज़रूर बता दूँ हम लखनऊ वालों को और लखनऊ वालों के साथ साथ नकहा वालों को, यानी नकहा एक जगह का नाम है, डालीगंज से नकहा जंगल पैसेंजर शुरू, अच्छा जंगल वाली पैसेंजर ही है, तो एक रेलगाड़ी की शुरुआत की गई है लखनऊ से नकहा जंगल की ओर। ये पिछले 6 साल से बंद थी, अभी फिलहाल उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो भाई गोंडा साइड के लोग या उधर जितने भी लोग रहते हैं जो नकहा जंगल पैसेंजर का यूज़ करते हैं उनके लिए आसान हो गई है। डालीगंज से ये शाम 5:20 से चलेगी और अगले दिन सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। वापसी भी इस ट्रेन की उस दिन होगी, नकहा जंगल से ये अगले दिन मतलब सुबह पहुंचेगी, फिर रात में चलेगी 11:10 पर चलेगी और सुबह 9:30 अगले दिन पहुंचेगी। तो भाई उस रूट के जो भी हमारे ट्रैवलर हों यानी जो लोग ट्रैवल करते हों उनके लिए आसानी हो गई है। फिलहाल एक एड्रेक, एड्रेक के बाद हम आपको एक और गाना सुनाएंगे सुंदर सा, कहीं जाइएगा मत बिना गाना सुने।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

यार ये आवाज ना दिल में उतर जाती है कानों के जरिए, यकीन जानिए बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक है, पहचान गए ना कौन है कौन है। जी हाँ, अरिजीत सिंह साहब की बात कर रहा था। जी हाँ, अरिजीत सिंह यार एक ऐसी आवाज के मालिक है। पहले तो यार ये बिल्कुल आवाज इनकी डिफरेंट थी, फिर उन्होंने अपनी आवाज को बड़ा मॉडर्नाइज किया और बहुत खूबसूरत आवाज अपनी बनाई, और उसके बाद जितने भी गाने गाए, तुम ही हो से शुरू हुए, ये लाइमलाइट में आया, और उसके बाद फिर ये लाइमलाइट में आते गए आज इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि अगर इन्हें किसी एक मंच पर बुलाया जाए कहीं पर गाने के लिए, तो इसके लिए वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना लाखों रुपए चार्ज करने वाला इंसान, अगर आप इनके सोशल मीडिया पर रील्स देखें ना, तो ये कैसे आपको बंगाल की गलियों में और जहाँ इनका पुश्तैनी घर है वहाँ पर ये रहते हुए नजर आएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। सोचिए, आप कहेंगे यार इतना बड़ा आर्टिस्ट मुंबई में बड़े से फ्लैट में रहता होगा, बड़े ऐशो आराम BMW से चलता होगा और डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल से डाउन टू अर्थ बंदे हैं, मतलब इन्हें स्कूटी से झोला लेके चले जाते सब्जी लेने, और ये मतलब इनकी रील देख करके मैं शॉक्ड गया। मैंने कहा यार इतना बड़ा इंसान, इतना

0: फिलहाल आपकी दूरियां बढ़े ना इसलिए मैंने घर से मतलब घर से और आपकी दूरी बढ़े ना इसलिए मैंने जल्दी से रोड के हालचाल लेने के लिए रोड पे कैसा ट्रैफिक है हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास सिंह जी को कॉल मिला लिया और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार सर, बहुत बढ़िया है सर। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: जी हाँ, शाम 6:40 हो चुके हैं, हैवी लोड होगा क्योंकि लोग घर जा रहे होंगे, कल छुट्टी का दिन भी है, तो अभी क्या सिचुएशन है, किन किन चौराहों पे जरा हमारे लिसनर्स को बता दीजिए सर।
1: जी सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को कि वर्तमान में जैसा कि पीक आवर्स का समय चल रहा है, तो ऐसे में हमारा जो ट्रैफिक लोड है वो लखनऊ अयोध्या मार्ग पर कमता से चिनहट की तरफ रहता है। और इस दौरान जो है हम कोशिश करते हैं कि अगर अति आवश्यक ना हो तो इस रोड के प्रयोग करने से बचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अगर रायबरेली रोड की बात करें तो उतरेठिया पीजीआई वाला मार्ग थोड़ा सा ट्रैफिक प्रेशर पॉइंट है तो सर। और दूसरा अगर हम पीजीआई के पास में ही अगर अगर जाएं तो हमारा जो शहीद पथ वाला एरिया है वहां पर भी थोड़ा सा ट्रैफिक लोड है। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप अगर इन रोडों पर जाना चाह रहे हैं तो कृपया वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। अन्य अगर मार्ग की बात करें, लखनऊ कानपुर मार्ग की बात करें, तो वहां पर यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। शहर के अंदर चूंकि अमीनाबाद जो हमारा की बाजार वाला एरिया है यहाँ पर पैदल आवागमन अधिक रहता है, तो इससे वहां पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो अगर आप जो है सवार चार पहिया से हैं तो कृपया अमीनाबाद वाले मार्ग को अवॉइड करें शाम के समय में, और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचने के लिए आप कोशिश करें शहर के मुख्य मार्गों का प्रयोग उस तरह से करें जो हमारे ज्वाइंटिंग मार्ग है, जैसे हमारा ग्रीन कॉरिडोर हो गया, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसान पथ का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य शहीद पथ का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य मार्गों से जुड़ने वाले, तो इन मार्गों का प्रयोग करेंगे तो आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि कहीं आपको मेडिकल इमरजेंसी है, अगर लगता है कि कहीं आप यातायात दबाव में आपको परेशानी हो रही है, अपने गंतव्य तक जाने में सुगमता चाहिए, तो आप तत्काल हमें हेल्पलाइन हमारा नंबर है 9454-5155 पर हमसे संपर्क कर आप सुविधा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी सुगम यातायात हेतु प्रतिबद्ध है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपकी इन बातों से काफ़ी आराम मिलता है लोगों को, काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो इन रास्तों को अवॉइड करें। धन्यवाद हमसे बहुत बहुत बात करने के लिए।
1: धन्यवाद, आभार सर।
0: तो हमारे साथ थे ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास सिंह जी, उनका बहुत धन्यवाद, उन्होंने काम की जानकारी दी। मैं आपको एक और काम की जानकारी देता हूँ, क्या है आजकल क्या हो रहा है, मैं खुद या मेरे जैसे हजारों लोग ये सोचते हैं कि भाई दिन के समय ना निकला जाए, शाम के समय निकला जाए, क्योंकि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद और उसी वक्त हम सब निकलते हैं घर से अपने ज़रूरी कामों के लिए, क्योंकि हमें दिन की गर्मी से बचना भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, मोस्टली अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप टू व्हीलर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, क्योंकि कई बार ये होता है ना, हम फैमिली को लेकर के निकलते हैं मार्केट में शॉपिंग करने, तो एक साथ इतनी फोर व्हीलर पहुँच जाती हैं तो रास्ते जाम होना बट ऑब्वियस है। एक चीज़ और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि अभी हाल आज की खास बात करूँ मैं, तो आज क्या है कि छुट्टी होने वाली है, मतलब आज के बाद कल छुट्टी है, तो मोस्टली लोग जो घर लखनऊ में लोग काम करते हैं वो घर से घर को जाएंगे, वापस जाएंगे अपने अपने सामान के साथ, तो मोस्टली उन चौराहों पर वो पहुँचेंगे जहाँ से लखनऊ के बाहर जाया जाता है, जैसे कमता है, जैसे उतरे

पिया है, कानपुर रोड का चौराहा है, नहर वाला, तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी क्योंकि सभी लोग अपने घर जाने के लिए, क्योंकि कल छुट्टी है बकरीद की और आगे सैटरडे संडे भी आ रहा, तो मोस्टली लोग गैप करेंगे कि लंबी छुट्टी को लेकर के भागेंगे, तो वो भीड़ काफ़ी होगी वहाँ पर, तो आप अगर अवॉइड करें तो बहुत ही बेहतर है। बाकी मर्जी आपकी है, गाड़ी आपकी है, टाइम भी आपका है, मेरे पास तो सिर्फ ये है कि आप गाड़ी में चल रहे हैं, ये जहाँ पर भी है मोबाइल पे अगर आपने गाना लगा लिया है तो मैं आपको गाना सुना सकता हूँ। ये देखिए गाना आपके लिए है, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो इस गाने को एंजॉय कीजिए। आप हैं शादाब के साथ 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई।

जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। मैं हूं शादाब आप सभी के साथ, और प्रोग्राम चल रहा था अभी तक, अभी भी चल रहा है शाम अवध। तो शाम अवध में मैंने आपको ट्रैफिक अपडेट दे दी, मैंने आपको काफ़ी सारी अपडेट दे दी कि भाई आप क्या चीज़ करें क्या चीज़ ना करें, और ख़ास अपडेट कि भाई मौसम बदलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली न्यूज़ मैंने आपको यही बताई थी कि मौसम 28 से 30 मई तक बदलेगा, कुछ डाउन पड़ेगा, ऐसा बोलना है हमारे किसका, मौसम विभाग का, मैं ही क्या करूँगा बोल करके। फिलहाल एक और चीज़ बतानी थी, इतिहास। आज देश का, आज ही के दिन देश का पहला एक्वेरियम खुला था। जी हाँ, आज ही के दिन 1951 में, यानी 27 मई 1951 में ही आज के दिन मुंबई में सबसे पहले पहला देश का एक्वेरियम खुला था, और मछली घर जिसका उद्घाटन किया था, जिसको हिंदी में मछली घर बोलते हैं, वहाँ पर बड़ी दुर्लभ टाइप की मछलियाँ, समुद्री जीव लाकर रखे गए थे ताकि लोग उसे आकर देख सकें। और 1951 में अगर लाया गया हो तो सोचिए कैसा रहा होगा, तब के बच्चे कैसे देख रहे होंगे, क्या कमाल उस वक्त होगा, है ना। फिलहाल कमाल तो आप करते हैं भाई, जब आप फ़ोन मिलाते हैं और हमसे बतियाते हैं, बहुत ढेर सारी बातें करते हैं, और अलग अलग बातें कर करके अलग अलग गाने सुनते हैं, तो हम भी उस पल का इंतज़ार करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई आप हमें फ़ोन करें और हमसे बातें करें, और हम आपको आपके फेवरेट गाने सुनाएं जिसके लिए हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई अगले प्रोग्राम में बिल्कुल हम आपके साथ जुड़े, तो 7 बजने वाला है, 7 से 8 हम आपके बीच रहेंगे। बिना देर के आप फुल ऑन हमारे कॉल नंबर पे, अभी भी कॉल आ रही है, देखिए लगातार मैं देख रहा हूँ कॉल आती जा रही पहले से। मेरी एक रिक्वेस्ट उनसे रहेगी जिनकी कल कॉल मिली है या परसों कॉल मिली है, तो थोड़ा टाइम दें, दूसरों को भी मौका दें, दूसरों को भी ये खुशी आने दें कि उनकी भी कॉल लगी। तो अगर आप आज एक दो दिन नहीं लगाएंगे, दो दिन बाद लगाएंगे, तो कोई हम ना बुरा मानेंगे, ना ही कोई रेडियो सुनने वाले बुरा मानेंगे। तो अगर आप दूसरों को भी मौका दें तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरा ये मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, जो भी कॉल मेरे पास आएगी मैं ज़रूर बात करूंगा। 0522 2238 852, 0522 2238 845, यह है नंबर, इस नंबर पे कॉल करना। मेल भी कर देना, मेल अगर करोगे भाई तो मेरे को बता देना, मैं मेल भी आपको पढ़ दूंगा। FM 100.7 आकाशवाणी, जी हाँ, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, इस पर आप हमें मेल कर देंगे तो हम वो भी पढ़ लेंगे आपका मेल भी। बातें बहुत ढेर सारी करनी थी, लेकिन अब टाइम तो बचा नहीं है। टाइम हो गया है 6:55, और एक गाना आप सभी के रेडियो सेट्स पर आपको सुनाते हैं बिना देर के, कहीं जाइएगा मत। स्टेडियम विद 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर पीलीभीत में गोमती नदी से जुड़ी विकास योजनाओं एवं नदी के उद्गम स्थल के सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण और समाज कल्याण स्थायी समिति की समीक्षा बैठक हुई। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बस्ती में आज कुआनो नदी में पूजा पाठ के बाद सफाई अभियान की शुरुआत गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल ने की। इस अवसर पर वन विभाग द्वारा नदी के तट पर वृक्षारोपण का कार्य भी कराया गया। लखनऊ में जनगणना 2027 के तहत जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा मकान सूचीकरण एवं आवास गणना कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने जोनल अधिकारी एवं सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। झांसी में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर ठगी के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने आज गुदना मोड़ स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अयोध्या में स्क्रैप और बेकार सामग्री से रामायण की गाथाओं को जीवंत रूप दिया जाएगा। मऊ शिवाला के पास नगर निगम की ओर से 17,72,00,000 रुपए की लागत से भव्य लवकुश पार्क विकसित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कल बकरीद पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च के आदेश दिया। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। आज कई जगहों पर तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहा। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: जी बिल्कुल, प्यार हो जाएगा नहीं, हो गया है प्यार हमको आपसे और आप कौन से। 7:04 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ, और शादाब का प्यार भरा आदाब आप सभी के लिए। आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम शुरू हो चुका है, 7:04 हो चुके हैं और पहले कॉलर कौन हमारे साथ जुड़े हैं चलिए जान लेते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है?
1: जी मैं बीरपाल जयपाल ग्राम पोस्ट लगेफर जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ।
0: बीरपाल
1: जी,
0: सही सुना मैंने, बीरपाल जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी लकेफर गांव जिला लखीमपुर खीरी पे।
0: लखीमपुर खीरी से लकेसर गांव से, कैसे हैं बीरपाल जी?
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
0: गर्मी का आनंद ले रहे हैं?
1: जी जी,
0: पहली बार कॉल लगा है आपका?
1: जी पहली बार लगा।
0: अरे वाह, और आज पहली बार लगा और पहले कॉलर हैं आप, पता है आपको?
1: जी, जी।
0: बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस बात
1: जी
0: की।
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ, मैं तुमसे जुदा हूँ।

0: के मर जाएंगे रो रो के।
1: बिल्कुल सुनाएंगे आपको, और किसको आप सुनाना चाहेंगे, उनका नाम लेना चाहेंगे?
0: जी मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, तो मैं चाहूंगा कि आपका फेवरेट गाना ये सब तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद भीमपाल जी।
0: नमस्कार
1: नमस्कार हमें कॉल करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भीमपाल जी, जो पहले कॉलर थे। अगर आपको भी कॉल करनी है तो भाई 2832 852 जल्दी से मिला लीजिए 2832 845 पर। और ये गाना, रुकिए ये गाना पहले सुन लीजिए, कहीं जाइएगा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की। मैं हूं शादाब आप सभी के साथ, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई फोन लाइन पर भी है। कौन है बताइए। हेलो
4: हेलो सर जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
3: नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कौन बात कर रहा है, कहां से बात कर रहा है?
4: जी सर, FM रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शुगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
3: क्या बात है पिंकी रिंकी, आपका स्वागत अभिनंदन है एक बार फिर से। और मुझे
4: बहुत
3: लगता है
4: बहुत थैंक यू और शुक्रिया सर कि आपने मेरी कॉल रिसीव की इसके लिए।
3: अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज बनता है, और कॉल हमें, मैं बता रहा हूँ, मतलब हम क्या कोई भी होगा रिसीव करना उसका बनता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसकी कॉल आ रही है, हम रिसीव हर कॉल करते हैं।
4: हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है आपके चैनल पे।
3: नहीं नहीं बिल्कुल, हम चाहेंगे कि कभी गलत ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा कॉल आ रहा है। फिलहाल पिंकी एंड रिंकी बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद।

0: करेंगे?
1: सर मूवी का नाम है राज और सॉन्ग के बोल हैं आपके प्यार में हम संवरने लगे। और सर सबसे पहले आप बताइए आप कैसे हैं और इतने दिनों से आप थे कहाँ?
0: बिल्कुल, मैं एक लंबे अंतराल के बाद आया हूँ। बहुत दिनों बाद हमें मौका मिला है कि रेडियो पर आने का।
1: इसीलिए तो सर हमने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप इतने दिनों के बाद कार्यक्रम में क्यों?
0: गर्मी का आनंद ले रहे थे, गर्मी बहुत थी।
1: कार्यक्रम भी बहुत अच्छा करते हो और गीत भी बहुत अच्छे बजाते हो।
0: आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया पिंकी रिंकी। लेकिन बस ये है कि गर्मी का आनंद ले रहे थे, गर्मी बहुत है, आराम कर रहे थे। जैसे ही मौका मिलता है हम जरूर आते हैं।
1: आपका कार्यक्रम कंटिन्यू सुनती हूँ, जब भी आते जब भी आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। पर ये होता है कभी मुलाकात हो पाती कभी नहीं हो पाती।
0: नहीं, बहुत शुक्रिया, आप सुने हमारे लिए, ये जरा नवाजी है, आपका एहसान है। और अगर आप इस तरह से सुनते रहेंगे तो हमारी मुलाकात तो होगी होगी ना।
1: बहुत बहुत थैंक यू, आप इतनी मेहनत से कार्यक्रम लाते हो करते हो। और सर हम अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते
0: हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से लीजिए नाम
1: जी। सबसे पहले तो सर आपको गाना डेडिकेट करते हैं और विजय श्रीवास्तव सर को भी डेडिकेट करते
0: बहुत
1: हैं।
0: बढ़िया,
1: उनसे गुजारिश करते हैं कि सर कार्यक्रम में जल्दी आए, काफी उनका अंतराल लंबा हो गया है।
0: जी जी जी जी, तो पहुंच गई उन तक आवाज, जरूर पहुंच गई।
1: और सर मेरी दोस्त है तमा परवीन, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, पूनम दीदी, गुंजन तिवारी, मोहम्मद फैज भाई, जावेद अख्तर सर, वकील अहमद भाई और तिवारी अंकल और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को, और साथ में अपने भाई दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही के साथ सुनना चाहेंगे सर गीत।
0: क्या बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और ये आपका गाना
1: सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू
0: थैंक यू।

0: कई बार है ना आप लोग ऐसे ऐसे गाने रिक्वेस्ट कर देते हो कि चाह के भी मैं गाने आधे नहीं प्ले कर पाता, पूरा गाना प्ले करना ही पड़ता है, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं गाने। फिलहाल लग रहे कॉलर कौन है, लाइन पर जोड़ लेते हैं जरा। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या बात है,
1: बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी आवाज से भी लग रहा है बहुत बढ़िया है।
1: आपने मेरा कॉल रिसीव किया, इसके लिए थैंक यू सर,
0: बहुत शुक्रिया। मैं कौन होता हूँ कॉल कट करने वाला आपका?
1: हेलो सर, कल बकराईद है, हमारे घर पे आना जरूर। अरे
0: आवाज पहुंच
1: रही है, सबको बुला रहे, सब लोग
0: सिवाई खाने, दही फुल्की खाने, सब लोग पहुंचेंगे, बिना खाए पिए हम लोग निकलेंगे नहीं। अगर हम वहां आ गए तो सोचिए मेरे घर वाले मेरे को नहीं छोड़ेंगे ना। तो कल नहीं, परसों, ठीक है ना?
1: सर आना हम आप,
0: बिल्कुल कोशिश मेरी पूरी रहेगी। फिलहाल शमा परवीन जी, ये जल्दी से बताइए कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना सुनेंगे कुर्बान मूवी से, तू जब जब मुझको पुकारे, और गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, गाना आपने तू जब जब पुकारे मुझको पुकारे, ये गाना आप डेडिकेट कर दीजिए जिसको भी करना
1: है। सबसे पहले आपको
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: फिर बाबू अंसारी भाई हैं, मोहम्मद शब्दाम भाई हैं, अकबर अंसारी भाई, मोहम्मद फैज भाई, मोहम्मद अमीन भाई, बबलू यादव भाई, और मोहम्मद आसिफ भाई, जावेद अख्तर भाई, वकील अहमद भाई, और सत्यम कुमार भाई, विनीत कुमार भाई, और गुलाब साहब की साहबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को, और मिंटू तिवारी अंकल को, जी श्री प्रकाश तिवारी अंकल को।
0: आज मिंटू तिवारी जी का कॉल आया नहीं, वरना मैं जब जब आता हूँ उनका कॉल जरूर आता है। फिलहाल इतने सारे नाम आपने ले लिए और सब
1: करके मुझे बहुत अच्छा लगा,
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैं एक चीज ये आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 7:18 हो चुका है, क्योंकि गाना मैं प्रादेशिक समाचारों के बाद, हाँ
1: समाचार के बाद
0: मैं प्ले करूंगा, वरना आपका गाना पूरा प्ले नहीं हो पाएगा। मैं खुद चाहूंगा कि आपका गाना पूरा प्ले हो और आप उस गाने को एंजॉय करो, ठीक है ना? हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
1: बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शमा परवीन, जिन्होंने सीतापुर से हमें कॉल किया था, और इससे पहले प्रादेशिक समाचारों की ओर चले एक एड ब्रेक, और उसके बाद मिलते हैं प्रादेशिक समाचारों के बाद, गानों का सिलसिला और कॉल का सिलसिला वापस शुरू होगा, ठीक है ना? कहीं जाइएगा मत।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।

0: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
3: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पर हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है।
1: वहीं मुस्लिम गुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
4: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें, किसी उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची

0: एफआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: यहाँ 7:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ और प्रोग्राम हेलो FM जो आप सबका हम सबका

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: यहाँ 7:31 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ और प्रोग्राम हेलो एफएम जो आप सबका हम सबका फेवरेट प्रोग्राम जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करने के साथ साथ हम आपके गाने भी प्ले करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी शमा परवीन जी से, उनका गाना लाइन अप है, मैं ज़रूर प्ले करूँगा। फिलहाल एक दो मेल भी मुझे आ गए तो मैंने कहा क्यों ना पढ़ दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगेगा यार। उन्होंने रिक्वेस्ट तो नहीं किए गाने की, लेकिन मेल ज़रूर किया है, क्योंकि कई बार लोगों के कॉल नहीं मिलते हैं तो उनका मेल ज़रूर आता है। तो बहुत शुक्रिया अहमद नवाब फ्रॉम संडीला जिन्होंने हमें मेल किया। हेलो डियर शदाब सर, थैंक यू। क्या वज़न है आपकी आवाज़ में, एकदम बाहुबली जी। बहुत शुक्रिया, ये बहुत मेहनत से आवाज़ बनाई है, मतलब लग पाई है, रौबदार आवाज़, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया अहमद नवाब। 7 अप्रैल 2026 को आप आए थे, तब आपसे बात हुई थी, मैंने कॉल लगाया था, अरे आपको दिन भी याद है। अरे बहुत शुक्रिया, लास्ट कॉल 24 अप्रैल को मोना दी से बात हुई थी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, मैं मुझे खुद याद नहीं मैं कब आया था। अमन थैंक यू सो मच हमें याद दिलाने के लिए। साथ ही साथ हमें दूसरा मेल जो किया है वो किया है राधेश्याम जी ने, राधेश्याम शाक के कासगंज। उन्होंने गुड आफ्टरनून बोला, शदाब सर आपका प्रोग्राम बहुत प्रस्तुत करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू, इन्होंने लिखा हुआ है। फिर रामराज जी का आया है, शदाब भाई को प्यार बरादार, नमस्कार, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, कोई गाना सुनवा दीजिए। तो जो भी गाना अगला आने वाला है वो आप सबके लिए है। बाबू अंसारी जी अस्सलाम वालेकुम, शदाब सर बहुत शुक्रिया, इन्होंने भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपका। ये गाना सुनिए, उसके बाद हम हमारे कॉलर को लाइन पर लेंगे, ठीक है ना, बिना देर के। ये गाना आप सभी के लिए रेडियो

0: ओह क्या बात है, ये गाना आप सभी के लिए है, आप सभी को डेडिकेट किया था। अब चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? तालिब अंसारी, जिला बाराबंकी से। तालिब, क्या करते हैं आप दोस्त?
1: जी हमारी तो पटेल आगे के साथ है सर जी, आपसे बात भी हो चुकी है।
0: अच्छा हाँ हाँ, याद आ गया।
1: सर जी आप थे कहाँ सर जी, पूरी गर्मी जाने वाली है, हम लोग तो खूब परेशान हो गए गर्मी में। आपको याद करते हैं लेकिन आपको सर जी याद नहीं आया हम लोगों की।
0: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आया भाई, बीच बीच में आने की मेरी पूरी कोशिश रही, फिर कुछ ऐसे हालात हो गए कि आने की जहमत नहीं उठा पाए। खैर आज बात भी हो गई, मुलाकात भी हो गई आप लोगों से, बहुत ढेर सारी। बताइए तालिब, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: हम बागमान मूवी का गीत सुनेंगे, कुछ तो होने लगा, ये वाला गीत।
0: कुछ तो होने लगा
1: जी, पहले कभी मेरा हाल ना ऐसा हुआ, कुछ इसी तरीके का गीत है सर जी, ये वाला गीत।
0: अच्छा
1: गीत बहुत बढ़िया है सर जी।
0: हाँ पहले कभी में, ये बताइए।
1: सब सर जी सब ठीक ठाक हैं?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं सब? अच्छा घर में सब लोग अच्छे
1: हैं? और जी घर में सब लोग अच्छे हैं।
0: बहुत बढ़िया,
1: सुनने वालों को भी और आपको भी सर जी ईद उल अज़हा की दिल मुबारक।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी आपके फैमिली को भी। ये गाना किसी को सुनवाना चाहेंगे?
1: जी हमारे भाई हैं मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद साबिर और अकबर भाई सर जी, बस, और सभी सुनने वालों को।
0: हाँ ये अच्छी चीज़ है, सभी सुनने वाले को। ठीक है तो तालिब, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए भाई, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ भाई। तो हमारे साथ थे तालिब, जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की। इससे पहले एक कॉल आया था, उन्होंने ऑन एयर आके बात नहीं की, गया निशाद जी औरैया से, उन्होंने एक गाने की फरमाइश की थी, वो गाना भी मैं प्ले करूँगा। उन्होंने बड़ा बढ़िया गाने की फरमाइश की है, तो मैं ये दो गाने लगातार प्ले करूँगा, उसके बाद हम हमारे अगले कॉलर को लेंगे। तो सबसे पहले गया प्रसाद जी, ये आपका गाना ये रहा, लाते हैं और उसके बाद फिर तालिब का गाना

0: जी बिल्कुल, कुछ तो होने लगा और मैं जब तक फोन नहीं उठाता हूँ मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत कुछ होने लगता है। 7:45 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम। कर लेते हैं हेलो हेलो हेलो किसी से। हेलो भैया कौन है?
1: संजय कुमार यादव सर।
0: संजय कुमार यादव जी कैसे हैं आप? कैसे हैं संजय जी, कैसे कहाँ गए?
1: मैं

0: हम सरैया से बोल रहे हैं।
1: बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, सरैया से बोल रहे हैं। सरैया ये कौन से शहर के पास पड़ता है, कुछ शहर का नाम बताइए।
0: जिला लखीमपुर में पड़ता है।
1: जिला लखीमपुर, बहुत बढ़िया, जिला लखीमपुर से बोल रहे हैं। और ये पहली बार कॉल मिला है संजय जी आपका?
0: जी सर, पहली बार, बहुत दिन से मिला ही रहा।
1: कोई बात नहीं, आप मिल गुआ, इतने दिन से मिलाए तो रहो लेकिन मिलत नहीं रहे, आज मिल गुआ।
0: जी सर।
1: तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको?
0: हाँ बहुत बढ़िया लग रहा
1: है। मजा आ रहा
0: जी।
1: गाना जो बताया हो वही सुनियो।
0: गाना बताना, सूरज को इस दिन से चंदा को रात से अपना कैसे है खुदा की खुदाई हमें आज दी गई।
1: अरे गजब, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हम आपका गाना सुनाए। किसे सुनाना चाहते हो आप?
0: जी जितने टीम वाले सबको सुनाना चाहते हैं।
1: जितने टीम वाले सबको? चलिए आपकी पसंद का गाना रेडियो पर लाते हैं, आप भी सुनो, सब लोग सुने, ठीक है? धन्यवाद हम तो हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ संजय जी थे, इनका गाना ये रहा, ये रहा, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, ये लीजिए।

0: बिल्कुल नहीं आएगी जुदाई भाई, कैसे आएगी, हम आने नहीं देंगे। हमारे साथ देखते हैं अगले कौन कॉलर आए हैं, वो जरूरी है जानना। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से।
0: विनीत कुमार जी, आप ऐसे आराम से बोल रहे हो जैसे लग रहा है आराम से चेयर डाले बैठे हो कमरे में, एकदम आराम से बात करेंगे जो करनी है ना।
1: बैठे तो थे
0: एकदम आराम से, बहुत आराम से बात करते हैं विनीत जी आप हैं
1: जी। हाँ सर,
0: बहुत बढ़िया। विनीत जी क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं सर।
0: बहुत बढ़िया। विनीत जी घर में पीछे बच्चे बच्चे हैं तो शोर भी मच रहा है ना?
1: बच्चे तो हैं, दो हैं बच्चे,
0: क्या बात है, क्या नाम है उनका?
1: एक आदर्श एक सिद्धार्थ गौतम।
0: आदर्श और सिद्धार्थ गौतम, क्या बात है। पढ़ाई करते हैं, छोटे हैं?
1: छोटे हैं अभी सर।
0: अभी छोटे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए गाना कौन सा सुनेंगे विनीत जी?
1: तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, नगीना फिल्म का है।
0: हमने किया ही नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं, हमने कहाँ बेचैन किया।
1: दोस्तों को शामिल कर सकते हैं।
0: जल्दी जल्दी जल्दी से करिए, मैं आपका गाना प्ले करता हूँ।
1: राजा सिमरी से हैं, ओमकार सीतापुर से हैं, समा परमे अंसारी सीतापुर से हैं,
0: क्या बात है।
1: संजय सरिया से हैं, सुनील गोकुलपुर से हैं,
0: बहुत बढ़िया।
1: कुमार मोर्य हरदोई से हैं, ममता हरदोई से हैं, सुरभि सीतापुर से, समा परमे अंसारी सीतापुर से, गुलक्षा सुंदीला से हैं, नवनीत हरकेश लखनऊ से हैं, और रिंकी टिंकी राय बरेली से हैं। आपको सर
0: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: मित्र एक गोवा महाराज हैं दहलरा के, उनको हैं।
0: बहुत बढ़िया, सबको डेडिकेट कर लिया। चलिए अब गाना सुनिए, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।

0: जी हाँ बिल्कुल, मेरा भी जी भरता नहीं है कि मैं आपको गाने सुनाऊं, और इतना सुनाऊं कि सुनाता जाऊं, मेरा ये प्रोग्राम को वाइंड अप करने का मन ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, क्या करे, प्रोग्राम को वाइंड अप करना ही पड़ेगा। 7:53 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, और आखिरी कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो,
1: दूर है आपसे मगर कोई गम नहीं, दूर रहकर भी आपको भुलाने वाले हम नहीं।
0: अरे वाह,
1: रोज मुलाकात हो चाहे ना हो तो क्या हुआ, आप दोस्तों की यादें मुलाकात से कम नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या ये बेहतरीन लाइनें बोलने वाले का नाम भी बता दीजिए भाई।
1: साधा भाई नमस्कार।
0: नमस्कार, सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मिंटू चंदेल जी डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका स्वागत अभिनंदन। क्या बात है, जलंधर पंजाब चले गए हम लोग।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: बहुत धन्यवाद, आपने हमें पंजाब दी धरती से कॉल किया, गुरुदेव धरती।
1: और आपको शायद ना हो, मेरी आज एफएम लखनऊ पर, एफएम रेनबो पर पहली बार कॉल लगी है।
0: अरे वाह, हमें दिल से बड़ी खुशी हुई, अगर पहली बार लगी है तो ये शुरुआत है, और इस शुरुआत को आगे बढ़ा के रखिएगा, कंटिन्यू करके रखिएगा।
1: कोशिश यही रहेगी, क्योंकि दूर बहुत है ना आपसे इसलिए।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, दूर नहीं, कॉल कहीं से दूर नहीं है, ठीक है ना।
1: सादा भाई, आपकी आवाज और आपका जो प्रोग्राम पेश करने का अंदाज है ना, जी जी, बहुत ही अच्छा है,
0: बहुत धन्यवाद।
1: ऑन एयर यही कहना चाहूंगा,
0: जी जी,
1: जो आपका प्रोग्राम आता है रजनीगंधा,
0: जी जी जी जी,
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि ओल्ड मेलोडी सुन दिया उसमें गाने होते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी, हम उस प्रोग्राम को आज से नहीं, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, और हम सभी उस प्रोग्राम के फैन हैं, वो प्रोग्राम वैसे ही आज भी है, क्योंकि आप सभी का प्यार है उसके लिए।
1: क्योंकि मैं आपको भी सुनता रहता, जो भी अपनी और बहनें आती है ना,
0: हाँ उनको भी सुनते हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हो आप,
0: धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आज आखिरी कॉलर हैं आप, और आपका गाना भी प्ले करना है, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए किसी को डेडिकेट करना है अगर आपको।
1: डेडिकेट नहीं, मैं सिर्फ आपकी दोस्ती के लिए एक और शेर सुनाना चाहूंगा, गाना तो वेरी छोटा हो जाए कोई बात नहीं।
0: जी जी जी,
1: आपकी दोस्ती खास रहेगी, यादों की

0: झलक दिल के पास रहेगी।
1: क्या बात है।
0: नहीं भूलेंगे आपको और आपकी दोस्ती को। मकसम जब तक इस दिल में आखिरी सांस रहेगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। मिंटू चंदेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहली बार कॉल करने के लिए। बड़ा शानदार रहा आपका और बात करने का अंदाज बड़ा निराला है।
2: शुक्रिया। और आप गाना सुना दीजिए, फिल्म है गोरा और काला, रफी साहब की आवाज में।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कहानी बनेगी
1: ये आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। सत श्रीकाल जी। सो हमारे साथ मिंटू चंदेल जी। बिना देर के मैं अब टाटा बाय बाय बोलता हूँ, क्योंकि अगली खूबसूरत आवाज आप सभी के साथ पहुंचने वाली है। ये गाना आप सभी तक, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। शादाब कहता है आप सभी को बाय बाय।

नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के

माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एआई और आधुनिक तकनीकों से युक्त ये व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनाएगी। यूपी एटीएस ने आज पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि टीम ने महकाब गगनदीप उर्फ गुरी सिंह, शाहरुख और मुशर्रफ को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्तों के सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने और संवेदनशील स्थानों की रेकी, युवाओं को जोड़ने और आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के तथ्य सामने आए हैं। अयोध्या में रामलला के भोग प्रसाद को अब जल्द ही खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र मिलने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम अपने ऑडिट एजेंसियों ऑडिट एडिटोरियल क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड और एसडी ग्लोबल के साथ राम मंदिर परिसर पहुंची, जहां रसोई और प्रसाद गोदाम का निरीक्षण किया गया। खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त मानिक चंद सिंह ने बताया कि आज प्री ऑडिट किया गया है, जबकि 28 मई को पोस्ट ऑडिट होगा। इसके बाद पूरी रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तान
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

ये ढलती हुई खूबसूरत सी शाम और आपका और हमारा साथ। और वो कहते हैं ना कि पसंदीदा शख्स आसपास हो या ना हो, सिर्फ उनकी यादों की खुशबू भर से ही जहनो दिल महक उठता है। तो उनकी यादों की को और भी तरोताजा करते हैं आपके अपने पसंदीदा गजलों के साथ कार्यक्रम आबशार में, जहां आज आपकी रात की हम सफर हूं मैं अनामिका, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

रात के इस गहरे खामोश सन्नाटे के बीच, बहुत खामोशी में, बहुत तन्हाई में, बेहजाद का ये एक शेर अक्सर याद आता है कि कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है।

न जाने किस कदर टूटा होगा कोई दिल मोहब्बत में, जाने किस कदर तन्हा होगा जो फरियाद कर उठा है आज किसी के वापस आने की। उदास राहों को ताक रही निगाहों में आंसू हैं और दिल में एक आस कि शायद उसके टूटे हुए दिल की आ सुन ले कोई।

हमारे सारे सपने, चाहते, ख्वाहिशें और हमारे सारे खुशियां एक वक्त के बाद ये सारे अपने से जज्बात अचानक से बदल जाते हैं। वक्त के साथ मायने बदल लेते हैं ये सारे जज्बात, बेमाने हो जाते हैं और फिर बिखर गए इन लफ्जों के दायरे में बंधे हुए सारे रिश्ते, रह गई तो सिर्फ और सिर्फ एक लंबी तन्हाई, कुछ पुराने लम्हों की यादें और बहुत सारी बेचैनी।

8:42 हो चुके हैं और घड़ी की सुइयां फिलहाल हमें इशारा कर चुकी हैं कि बस कुछ मिनटों के बाद आपकी रात की हम सफर अनामिका का इस कार्यक्रम आप शहर से जाने का वक्त हो जाएगा। लेकिन आपको भी कहीं नहीं जाना है। एक न्यूज ब्रेक के बाद हम जल्दी यानी 9 बजे फिर मिलेंगे आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ। सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए

0: का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के

एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: Let's go.
1: हाँ जी चुनरी चुनरी यहाँ और इस ट्रेंडिंग गाने के साथ शुरू हो चुका है आपका ट्रेंडिंग यानी फेवरेट वाला प्रोग्राम पॉप टाइम और आप आज हैं अनामिका के साथ तो आइए डांस फ्लोर मतलब अगर आप घर पे हैं तो बस उसी को बना लीजिए डांस फ्लोर और कीजिए डांस मेरे साथ पूरे एक घंटा प्रोग्राम पॉप टाइम में सुनते रहिए।

9:05 और प्रोग्राम का जो आगाज था उसने आपको बता दिया कि आगे प्रोग्राम का अंदाज कैसा होगा, क्या कहते हैं? हाँ जी, और फिलहाल आज आपके साथ हूँ मैं अनामिका, आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम यानी पॉप टाइम में। तो भाई, अब जब हम अपने घर को भी डांस फ्लोर बना सकते हैं तो कहीं जाने की क्या जरूरत है, किसी डांस फ्लोर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम है बहुत खास और प्रोग्राम में गानों के साथ, डांस के साथ बहुत सारी बातें भी होंगी। ये आप कैसे भूल सकते हैं हमारी आपकी बहुत सारी गुफ्तगू। और इसके पहले कि आप हमसे गुफ्तगू करने की सोचें, जिन्हें मेल आईडी पता है उनकी बात तो वही अलग है, हमारे बहुत सारे रेगुलर लिसनर्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे बहुत सारी मोहब्बत भेजते हैं अपने मेल्स के थ्रू। लेकिन वो लोग जिन्हें अभी हमारी मेल आईडी नहीं पता है, तो अगर आप हमसे करना चाहते हैं कोई भी बात तो आप हमें अपने दिल की बात भेज सकते हैं कहाँ, fmakashwanilakhnow@gmail.com के थ्रू। जी हाँ, तो फिलहाल थिरकाते हैं आपके कदमों को एक बार फिर से और सोच लीजिए अपने दिल की बात। हम आपको एक घंटे बैठने नहीं देंगे, थिरकाते रहेंगे। तो एंजॉय द सॉन्ग।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki. मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
2: नौ बज के 13 मिनट. और भाई, जैसा कि वादा था कि हम आपको नचाने से, नाचने से, डांस करने से, थिरकने से रुकने नहीं.

देंगे। उसी तरीके से आप भी अब रोज की तरह, हर बार की तरह अपना वादा पूरा कर रहे हैं, और ये जो मोहब्बत आप भेज रहे हैं ना हमें अपने मेल्स के थ्रू, मैसेजेस ढेर सारे, इतने आपकी खुशबू भरे खत मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये जो मोहब्बत की खुशबू है ना, ये आपके मेल से मुझे बिल्कुल साफ साफ आ रही है। क्या कहते हैं? और भाई चलिए एक बार और अपने उन लिसनर्स को हम बताते हैं अपनी मेल आईडी, कि अगर दिल में है कोई बात और कहना चाहते हैं आप, तो आप हमें अपने दिल की बात भेज सकते हैं मेल आईडी यानी fmakashwani@gmail.com के थ्रू। तो भाई अब जैसा कि वादा था कि प्रोग्राम में ना बातों की कमी होगी ना, अब मुलाकात तो हमारी हो ही चुकी है, तो अब मिलके मचाएंगे बिल्कुल धमाका हंगामा, और अपने ही घर के फ्लोर को डांस फ्लोर में कर लीजिए तब्दील, अपनों के साथ थिरक लीजिए, क्योंकि भाई ये एक घंटे तो थिरकने से नहीं रुकना है। तो चलिए बातें होती रहेंगी, लेकिन हम लेते चलते हैं एक दो मेल्स, क्योंकि मेल्स बहुत सारे आ चुके हैं। और भाई जो सबसे पहला मेल आया है प्रोग्राम के लिए, तो ये मेल आया है हमें सुल्तान रजा साहब का, और आप हमें लिखते हैं बरेली से बहुत सारी शिकायतों के साथ। सुल्तान साहब कहते हैं, नमस्ते सुल्तान साहब, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, और कहते हैं कहाँ थी आप? अब भाई हम, हमारे पास बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती हैं कभी कभी, तो चलिए इस बारे में कभी आराम से बात होगी। और थैंक यू आपकी मेल के लिए कि आप हमें इतना याद करते हैं और प्रोग्राम को इतनी सारी मोहब्बत देते हैं, और क्या बात है, बहुत सारी तारीफ लिखी है सुल्तान साहब ने, तो थैंक यू सो मच सुल्तान साहब। और ऐसे सुनते रहिए एफएम रेनबो, जो है आप सबके दिल की धड़कन। और इसी के साथ ही साथ सुल्तान साहब के साथ ही साथ रामराज जी ने हमें मैसेज किया है गणेश भगवान के नाम के साथ, और कहते हैं हमें जिला राय बरेली से, और कहते हैं हमें रामराज जी, राजभानु शंकर भैया, इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, पप्पू जी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, हमारी तरफ से अनामिका बिटिया, क्या बात है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपकी इज्जत अफजाई के लिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और भाई इन्होंने गाने की फरमाइश की है, तो रामराज जी ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आपने हमें मेल किया, प्रोग्राम को इतनी सारी मोहब्बत देते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन टाइम बीतता जा रहा है और फिलहाल बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में होंगे कि हम वापस से कब थिरकेंगे, तो थिरकना बिल्कुल भी नहीं बंद होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस अगले गाने की तरफ, आप गेस करते रहिए, हम आपको थिरका के ही मानेंगे।

हाँ जी, अब आपके पे अगर आए हो या ना हो, अगर नहीं आए हो तो भाई आप अकेले थिरक लीजिए, क्योंकि जो अगला गाना आने वाला है उसने तो बिल्कुल आग लगा के रखी है डांस फ्लोर पे. क्या कहते हैं, सुनाया जाए, थिरकाया जाए.

हाँ जी, 9:22 और होपफुली आपने बहुत एंजॉय किया होगा सॉन्ग. क्या कहते हैं हमारी प्यारी जनता जनार्दन. तो भाई अब आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत से मेल के साथ. और अगला जो मेल है वो हम लेने वाले हैं सीमा पार. नहीं, सीमा पार बिल्कुल नहीं, भारत की सीमा पार से. जी हाँ, इतनी दूर से यानी नेपाल से हमें एक बड़ा खूबसूरत सा मेल आया है और मेल किया है रामकृष्ण ढकाल साहब ने. और हर बार की तरह बहुत सारा प्यार उन्होंने नेपाल से भेजा है और एक बड़े से मैसेज के साथ. तो रामकृष्ण साहब, अब यहाँ टाइम की थोड़ी सी कमी के कारण अगर हम मेल को थोड़ा सा छोटा करके पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे. तो रामकृष्ण जी लिखते हैं, भाई गुड इवनिंग आपको भी, और कहते हैं सभी धड़कनों को जोड़कर बना एक धड़कन लखनऊ रेनबो यानी FM रेनबो, जोरदार महफिल पॉप टाइम की लोकप्रियता, हमारी बड़ी तारीफ करता है. अच्छा, कुल मिला जुला के आपके हम मेल का जस्ट बताते हैं कि इन्हें ये प्रोग्राम इतना पसंद है कि ये सुनते हैं और इनके पूरे दिन की थकान उतर जाती है. और हमारी तो खैर ये तारीफ

0: सारी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम इतना पसंद है कि आप हमसे नेपाल से जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सो मच हमें इतनी दूर से इतना सुंदर सा मैसेज करने के लिए। इसी के साथ ही साथ चलिए, जो अगला मेल हम लेने वाले हैं वो है विजयपाल यादव जी का। जी हाँ, विजयपाल यादव जी हमारे बहुत ही पुराने और रेगुलर लिसनर, जो हमारे हर प्रोग्राम को बहुत सारी मोहब्बत देते हैं। तो विजयपाल जी हमें कहते हैं अनामिका दीदी के साथ आज पॉप टाइम। जी हाँ, हमारे साथ। तो विजयपाल जी, मैं बिल्कुल बढ़िया, नमस्ते, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? और एक चार लाइन इन्होंने लिखी है, चलिए पढ़ देते हैं फटाफट। सुलगती धूप हो या सर्द रातों का समा, रेडियो ऑन होते ही बदल जाता है जहां, वो फरमाइशे, वो गाने, वो हवाओं का सफर, एक छोटे से डिब्बे में सिमटा है सारा आसमां। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही ना, ऐसा लगता नहीं है कि जैसे इस पार और उस पार, रेडियो के इस पार मैं और रेडियो के उस पार आप, आमने सामने बैठ के बात करें। बताइए सही कहती हूँ या नहीं? तो भाई कहते हैं FM रेनबो जिंदाबाद, बिल्कुल आपके दिल की धड़कन जिंदाबाद। और कहते हैं कि आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, और थैंक यू सो मच, आपको आबशार बहुत अच्छा लगा और गजलें आपको बहुत पसंद आई, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप हमें लिखते हैं जिला खीरी से बहुत सारी मोहब्बत के साथ, थैंक यू सो मच हमें इतना सुंदर से मैसेज करने के लिए। और इसी के साथ ही साथ मेहर अरोड़ा जी हमें लिखते हैं ममता अरोड़ा जी के साथ, कीर्ति जी के साथ, भूमिका अरोड़ा जी के साथ, श्री गंगानगर राजस्थान से। क्या बात है, इतनी दूर से आप हमें इतनी मोहब्बत भरे मेल करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और लेकिन ये जो आपने फरमाइशी गाना लिखा है मेहर साहब, सॉरी टू से, ये प्रोग्राम फरमाइशी नहीं है, हम बहुत सारी बातें करते हैं इसमें, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके एंटरटेनमेंट में कोई कोर कसर होती है? नहीं ना, तो नहीं होती है, तो फिर भाई इंजॉय करिए प्रोग्राम और अपनों के साथ अपने घर के फ्लोर को बना लीजिए डांस फ्लोर। इसी के साथ ही साथ अंसारी शहनूर जी हमें मेल करते हैं और कहते हैं अंसारी साहब, ये पॉप टाइम है, रेनबो कैफे आज नहीं है, और कहते हैं आदाब, आपको भी आदाब, गुड इवनिंग, और कहते हैं कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगता है और आप डेली सुनते हैं, थैंक यू सो मच। और आप हमें लिखते हैं बरेली से, आपने बहुत सारे नाम लिखे हैं साथ में, शाहरून, नूर अंसारी, फरियाद अंसारी, शकील अंसारी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और DJ प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई चलिए, ये मेल्स का सिलसिला तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि इतनी मोहब्बत से भाई आपने मेल लिखा है, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक बार फिर से आपके थिरकने का। और आपको थिरकाने से पहले चलिए बताते चलते हैं कि हमारी मेल ID है fmakashwadilakhnow@gmail.com। तो दिल में छुपी हो कोई बात तो कह डालिए आप, फिलहाल गाना एंजॉय करिए आप।
1: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है,
0: हम भी यही बात कह रहे हैं, आ जाइए।

हाँ जी नमस्ते, 33 मिनट और मन का मंत्र सीखे या ना सीखे, डांस जरूर सीख जाएंगे इस प्रोग्राम में आप। परिवार बताते चलते हैं, फिलहाल आप हैं अपनी रात की हमसफर अनामिका के साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम यानी पॉप टाइम में। और हमारी मेल आईडी है कुछ कहने कुछ सुनने के लिए fmakashwani@gmail.com। और इसी के साथ ही साथ अब चलिए ले लेते हैं अगला मेल, वरना आपने हमें इतनी मोहब्बत से मेल किया कहेंगे ये मेल नहीं पढ़ती बाकी सारी बात करती है। तो चलिए भाई, किसी ने बड़ी शिकायत के साथ एक मेल किया है। इंद्रपाल मिश्रा जी कहते हैं कि फोन कभी नहीं लगता, शामिल कर लो मेल। और अरे बिल्कुल, आपने इतनी मोहब्बत से मेल किया है, हम शामिल कैसे नहीं करेंगे। आप हमें लिखते हैं सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा जी, तो आपकी शिकायत जायज है, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो फोन करते हैं तो अब वो इंगेज टे करता होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, शिकायत को दूर करिए, ये एक घंटे फुल चल करने आए हैं हम, एंजॉय करिए इंद्रपाल जी। और इसी के साथ ही जावेद अख्तर साहब हमें कहते हैं, नाम भूल गए हैं जावेद साहब आप हमारा, और आप हमें सीधा जेंडर भी आपने चेंज कर दिया, कैसे जावेद साहब। और जावेद साहब को प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और कहते हैं कि हम डेली सुनते हैं प्रोग्राम को भर भर के इन्होंने प्यार दिया है, और बस थैंक यू सो मच, इसी तरीके से अपना अपनी मोहब्बत अपना प्यार हमें देते रहिए। और इसी के साथ ही साथ अभी जो अगला मेल है वो है अशोक कुमार जी का। तो अशोक कुमार जी हमें कहते हैं गुड इवनिंग मैडम जी, आपको भी गुड इवनिंग सर जी। और कहते हैं हमें रायपुर उड़रा मितौली लखीमपुर खीरी से, और कहते हैं वही प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। और कहते हैं सॉन्ग्स कमाल लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो बस आपके लिए ही तो ये बहुत बढ़िया सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो आप सुनिए एंजॉय करिए और बस इसी तरीके से मन का मंत्र सीख के डांस फ्लोर को हिला दीजिए। और इसी के साथ ही बेनेट कुमार हमें मैसेज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने नाम की स्पेलिंग जैसी लिखी है, इनका हिंदी में नाम दूसरा है, विनीत जी नाम की स्पेलिंग सही करिए मेल आईडी पे। विनीत जी हमें लिखते हैं अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, और कहते हैं बहुत सारी तारीफ के साथ हमारी कि आपको भी गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच, अगर आपको प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा थैंक यू सो मच, और गाने आपको अच्छे लगे इसके लिए भी थैंक यू सो मच। अब देखिए शुक्रिया ही निकलेगा हमारे मुंह से। और कहते हैं कि मेरे दोस्त ओमकार सीतापुर से, आजाद सिमरी शमा परवीन अंसारी सीतापुर, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से, सुरभी सीतापुर से, गुलफशा सिद्दीकी संदीला ममता हरदोई संजू संजय संतोष मौर्य हरदोई से, अच्छा आप सबको प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं, तो थैंक यू सो मच इंद्रपाल जी, इंद्रपाल जी थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमें मगर अब की बार आपने शिकायत नहीं की है, तो क्या बात है, आप इतना खूबसूरत मेल कहते हैं, आपके आने से लिसनर्स खुशी की लहर लिसनर्स में खुशी की लहर आ गई, थैंक यू सो मच। सीतापुर से इंद्रपाल जी हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही कहते हैं स्मार्ट आइडिया विद सुनील यादव, कहते हैं हेलो मैडम जी, मैं सुनील यादव सुल्तानपुरी आपका प्रोग्राम सुनने के लिए नया रेडियो लाया हूँ। क्या बात है सुनील जी, थैंक यू, मुझे

आकाशवाणी से मोहब्बत तो थी ही. अच्छा, इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे लिखी हैं, हम ऐसे खुले हम नहीं बोल सकते. तो थैंक यू सुनील जी. कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया आपका, तो बिल्कुल अभी हम आपका दिल लॉन गार्डन करने वाले हैं. तो बस एक बार फिर से थिरकने के लिए तैयार सुनील जी? तो वादे के मुताबिक आइए, चलिए ले चलते हैं आपको एक बार फिर से डांस फ्लोर पे, क्योंकि अब गाना आ रहा है कुछ खास.

हाँ जी, तो क्या बोलती पब्लिक? तो हमें पता है हमारी प्यारी सी जो ये जनता है, हमारे प्यारे सो ये जो लिसनर्स हैं जो हमें डेली सुनते हैं और हमारे हर एक प्रोग्राम को भर भर के मोहब्बत पहुंचाते हैं अपने मेल्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने फोन कॉल्स के थ्रू. वो अभी भी लगातार मेल्स कर रहे हैं, हमें मैसेजेस कर रहे हैं और मेल्स की बिल्कुल झड़ी लग गई है सामने हमारे हमारी स्क्रीन पे. और आपको ये इतनी सारी मोहब्बत देख के हम कभी भावुक भी होते हैं भाई. हम क्या बताएं, हम भाई टेंडेंसी है इंसानों वाली, तो हम भावुक भी हो जाते हैं. इतनी सारी मोहब्बत और इतने सारे मेल्स, आपको प्रोग्राम इतना पसंद आ रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच हमारी प्यारी जनता. तो भाई 9:45 हो चुके हैं और जल्दी जल्दी बाकी बचे सारे मेल्स ले लेते हैं. और मेल्स मैं अब शॉर्ट में अगर लूंगी ना तो प्लीज आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम दोस्त हैं, दोस्ती का तकाजा है, एक दूसरे की बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि मेल्स करने में आप लोगों ने भी देरी की है थोड़ी थोड़ी. तो बाबू अंसारी साहब का मेल लेते हैं हम. बाराबंकी से हैं आप और आप हमें कहते हैं गुड इवनिंग मैडम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आपको भी गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच. आदित्य कुमार दुबे जी हमें कहते हैं मिर्जापुर से और कहते हैं कि नमस्कार अनामिका जी, आप शार्प पॉप टाइम प्रोग्राम में आपके एंकरिंग अंदाज को बदलते हुए सुनना बहुत दिलचस्प लगा. रूहानियत से चुलबुली आवाज में बदलाव काबिले तारीफ. अरे थैंक यू, आपकी हंसी बड़ी अच्छी लगता है. अरे थैंक यू सो मच, आपका मेल भी बहुत अच्छा है और पॉप टाइम की शुरुआत शानदार है. थैंक यू सो मच. बिल्कुल हम शामिल क्यों नहीं करेंगे मेल, आपने इतने प्यार से हमें मेल किया है और आप हमें लिखते हैं जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से. थैंक यू सो मच अरविंद जी, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ ही रणधीर गुप्ता जी हमें कहते हैं रेडियो सखी जी नमस्कार, शुभ संध्या आपको भी, गुड इवनिंग, और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं. आप हमें लिखते हैं दिल्ली से रणधीर गुप्ता जी, बबीता जी, सत्यम गुप्ता जी, सुंदरम गुप्ता जी के साथ. और इसी के साथ ही साथ निर्मल गुप्ता जी कहते हैं कि आपकी आवाज ने जीवन को छुआ. अरे क्या बात है, क्या मतलब, इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट. प्रिय आरजे अनामिका जी नमस्कार, शायद आप

0: नहीं जानती, लेकिन आपकी आवाज मेरे जीवन का एक ऐसा। अच्छा, आपने बहुत सारा लंबा सा मैसेज किया है सर, प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि दोस्त हैं हम, दोस्ती का तकाजा है बुरा नहीं मानने का, और आप हमें लिखते हैं। शॉर्ट में बताती हूँ कि आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया, तो आप हमें लिखते हैं लखीमपुर से, थैंक यू सो मच निर्मल जी। आकाश लोधी जी मलिहाबाद से हमें लिखते हैं, प्रोग्राम एक नंबर, आपको भी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच इतना सारा, इतनी सारी मोहब्बत के लिए। आप हमें लिखते हैं अजीत लोधी जी के साथ, अर्जुन, करण जी और शिवम जी के साथ, थैंक यू आकाश जी। सिद्धार्थ गोंडानी जी हमें लिखते हैं कहाँ से, अमरावती से, महाराष्ट्र से, इतनी दूर से आप हमें इतना खूबसूरत सा मेल कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। इन्होंने प्रणय जी, प्रतिभा जी, हीरामन, अर्चना ताई, सिद्धार्थ जी के साथ लिखा है हमें, प्रोग्राम इन्हें बहुत पसंद आ रहा है। और इसी के साथ ही साथ जितेंद्र नामदेव जी भी हमें लिखते हैं कहाँ से, शहडोल MP से, और कहते हैं कार्यक्रम क्या बात, मजा आ गया बिल्कुल, दिन भर की सारी थकान वकान गायब, नंदन जी महानगरी मुंबई से, नंदन जी हमें लिखते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कहाँ चली जाती है, बहुत दिन के बाद आती है, नंदन जी कभी फुर्सत में जरूर बताएंगे। और कहते हैं हमें कि प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और फिलहाल आप हमें लिख रहे हैं मुंबई से, थैंक यू सो मच नंदन जी। इसी के साथ ही रेणु देवी जी हमें कहती है प्रोग्राम टॉप टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ एंजॉय करिए, बिल्कुल इसीलिए तो मैंने कहा था अपने घर के फ्लोर को बना लीजिए डांस फ्लोर। और आप हमें लिखती है उन्नाव से, तो अभी हमारे पास बहुत सारे मेल्स हैं, बहुत सारी मोहब्बत है आपकी, तो बात करेंगे अभी आगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपको एक बार फिर से थिरकाने का, तो तैयार।
1: What's up, dog? Shit, bro, this tune in the wind. What's good with it? Watch out, man. Watch out, DLG coming, man.
2: Oh, word. They say he the GOAT. He all the way tapped in.
1: Yeah, dog. He killing the game.
2: Yo, DLG, watch out.

जी अब वो गाना जो कर रहा है ट्रेंड आपके दिलों पे, तो चलिए एक बार फिर से आपको थिरकाते हैं डांस फ्लोर पे वाव के साथ।

हाँ जी, हमारी प्यारी जनता, जनता जनार्दन खुश हो गई है। जनता जनार्दन, ये तो मुझे पता चल गया है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को इतना पसंद करने के लिए। और आज फिलहाल प्रोग्राम का बस आखिरी एक दो गाना और होगा, क्योंकि लेने हैं आपके बहुत सारे मेल्स, इतनी सारी जो मोहब्बत आई है। तो चलिए अगला मेल लेते हैं। अगला मेल हम ले रहे हैं अंशुमान ठाकुर साहब का, और लिखते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंशुमान जी, FM रेनबो, आई होप यू have a beautiful evening ahead. Yes, I just wanted to take a moment to share something from my heart. Achha, thank you for being the wonderful radio station you are, as you are. And I shared this poem with you. I just want to express my gratitude for your presence. And achha, kya baat hai, bahut sundar sa message inhone kiya hai. Thank you so much, Anshuman. Aur kehte hain ek kisi ko unhone dedicate kiya ek pura poem, aur kehte hain dekho kitna bechara pagal dar badar bhatakta hai, besahara pagal. Ek baar ko aaya taras meri halat, fir unhone fir kaha dobara pagal, abhi na tak पैर पानी की सतह पे। और अच्छा, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी ना इसको, क्योंकि टाइम कम है और भी बहुत सारे मेल्स लेने हैं, तो दोस्ती का तकाजा है पूरा नहीं मानने का। और कहते हैं थैंक यू सो मच, और जिसे आपने डेडिकेट किया है, जिसके लिए आपने कहा है, हमने उस तक आपका ये मैसेज बिल्कुल पहुँचा दिया होगा। तो अंशुमन जी, आपने एड्रेस अपना नहीं लिखा, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतना खूबसूरत सा मेल हमें किया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही साथ ये जो अगला मेल है राज स्टूडियो, स्टूडियो क्यों डाला है आपने राज यदुवंशी जी, हमें लिखते हैं अमेठी से, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही हमारी प्यारी अमन संडीला से आज लेट हो गई करने में मेल, और कहती हैं कि भाई बहुत दिन के बाद मिले, बिल्कुल इतनी मुद्दत बाद मिले हैं, तो थोड़ी बहुत शिकवा शिकायत होती है हमें पता है।

लेकिन ठीक है, आप हम इतन आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, और इतनी मोहब्बत के लिए थैंक यू सो मच जयमन, थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट। एंड इसी के साथ ही हरदयाल जी, डॉक्टर सुमित कुमार, आकाश लोधी मलिहाबाद से, शिवम शुक्ला जी श्रावस्ती से, और इसी के साथ ही साथ विनीता जी हमें लिखती हैं, बड़ा सा मैसेज है विनीता जी, आज के लिए माफ़ी और अगली बार आपका मेल हम पूरा पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। आप हमें गोसाईगंज लखनऊ से लिखती हैं। तेज बहादुर यादव जी, रोशनी, हमारी प्यारी रोशनी भी हमें मेल कर रही हैं। रोशनी ने थोड़ा लेट कर दिया मेल करने में, कोई बात नहीं रोशनी जी, आपकी शिकायत जायज़ है, लेकिन हम आपसे बात करेंगे बहुत जल्दी बहुत सारी। और इसी के साथ ही साथ तेज बहादुर यादव जी, सतीश कुमार जी, हरदयाल सिंह जी, मोनू जी थैंक यू सो मच मेल करने के लिए, और आप सभी को एक बार थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम बहुत पसंद आया आपको, आया होगा आपको। तो चलिए एक बार फिर से चम्मा चम्मा पे एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बार फिर से डांस, और बना देते हैं अपने घर के फ्लोर को डांस फ्लोर, और मिलते हैं इस गाने के बाद कहाँ, अपने रात की हम सफर यानी अनामिका के साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में। तो जाइए जाइएगा ना, स्टे ट्यून्ड।

0: 100.7 FM रेनबो, धड़कन
1: कोई ऐड नहीं आएगा।
2: नमस्कार, रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते और विशेष कार्यबल ATS की संयुक्त जांच में यूपी ATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस के ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि चारों आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसमें महकब निवासी सहारनपुर, गगनदीर उर्फ गोरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर और मुशर्रफ निवासी हरिद्वार शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और संवेदनशील स्थलों की निगरानी, युवाओं की भर्ती और आतंकवादी एवं विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। बकरीद की पूर्व संध्या पर रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में शहर के मिश्रित इलाकों में रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च में पैरा मिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने लोगों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से पैदल मार्च किया और आम जन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे बकरीद का त्यौहार आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं।

कन्नौज जिले में आज जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कार्यों में जनपद ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश स्तर पर 8वीं रैंक प्राप्त की है। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए शेष कार्यों की भी पूर्ण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के संबंधी महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है। परिषद के अनुसार प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा यूपी जेईई पी 2026 का आयोजन 2 जून 2026 से 9 जून 2026 तक किया जाएगा। परिषद द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा प्रतिदिन 3 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 4 बजे से 6:30 बजे तक संचालित की जाएगी। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई,
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आदाब। एफएम रेनबो 100.7 पर अब वक्त हो चला है जज्बातों के पन्नों को पलटने का। और आज की रात मैं हूं आपके हम सफर, आपकी रात की हम सफर, और आप हैं अपनी सुनहरी यादों के खूबसूरत से सफर पर, यानी कार्यक्रम रजनीगंधा सुन रहे हैं आप। दिन भर हम दुनिया से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन रात वो वक्त है जब हम अपने आप से बातें करते हैं, खुद से गुफ्तगू करते हैं, जब सड़कों का शोर थम जाया करता है तो इस दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई देने लगती हैं। आज की रात भी कुछ ऐसी ही कहानियों और पुराने नगमों के नाम हैं, जो रूह को सुकून भी देते हैं और आंखों को नम भी कर जाते हैं।

मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। जी हाँ, ऐसा अमूमन सबके साथ होता है। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत में होते हैं तो उनकी यादों में ना तो दिन का पता होता है ना रात की खबर। और इसी मोहब्बत में न जाने कितने साधारण लोग, इसी प्यार में न जाने कितने ऑर्डिनरी लोग, कितने साधारण लोग शायर हो गए, कवि हो गए। तो अगर आपको अपने महबूब से कुछ कहना हो, उन पे कुछ लिखना हो, तो क्या लिखेंगे? शायद ये कि तुम्हें कभी पूरा लिखूं फिर कभी अधूरा, मैं रातों में बैठकर तुम्हें सवेरा लिखूं, मैं जब भी लिखूं बस इतना लिखूं, खुद को तेरा और तुझको मेरा लिखूं।

सकते हैं। लेकिन उस खास इंसान से बिना किसी प्लानिंग के आप लाइफ में कहीं ना कहीं जाके टकरा ही जाते हैं। ना उससे मिलने की कोई प्लानिंग थी, ना प्यार करने का कोई इरादा, लेकिन उसकी आदत ऐसी लगती है कि हमारी खुद की जिंदगी, हमारी खुद की जिंदगी की हर खुशी उनसे जुड़ जाती है। हालत ये होती है कि दिन अच्छा हो या बुरा, सबसे पहले उनका ही ख्याल आता है, उनकी आवाज, उनकी हंसी, और उनका सिर्फ इतना कहना कि अपना ख्याल रखना दिल को सुकून देता है। और फिर धीरे धीरे आपको ये एहसास होता है कि मोहब्बत सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, आकर्षण नहीं, बल्कि मोहब्बत तो वो है जब आप किसी के साथ सिर्फ आज नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी इमेजिन करने लगते हैं, जहां दिल ये नहीं सोचता कि कब तक साथ रहेगा बल्कि ये सोचता है कि काश हर जन्म में यही इंसान मिले। क्योंकि कुछ लोगों से सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, उनके बिना हमारी पूरी की पूरी जिंदगी ही अधूरी लगने लगती है।

आपको पता है, कभी कभी एक अजनबी आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। हम लाइफ में सब कुछ प्लान करके चलते

गुस्सा दिखाना, लेकिन अंदर से बस उसी का इंतजार होता है। हम बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच पूछिए तो सबसे ज्यादा फर्क उनसे रूठ जाने पर ही पड़ता है, क्योंकि ये लड़ाई नफरत नहीं होती बल्कि डर होता है कि कहीं वो सच में दूर ना हो जाए। और ये सच है कि दिन के आखिर में ये दिल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ढूंढता है जिनसे हम लड़ भले ही लें, झगड़ा भले ही कर लें, लेकिन हमारी मोहब्बत से लेके दुआओं तक में सिर्फ और सिर्फ वही एक शख्स शामिल होता है।

ये अजीब सी बात है ना कि हम लड़ते भी उसी से हैं जिसे खोने का सबसे ज्यादा डर होता है। छोटी छोटी बातों पर चुप हो जाना,

हर इंसान की लाइफ में शायद प्यार की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्यार ऐसा होना चाहिए जो शब्दों से कम और एहसासों से ज्यादा समझा जा सके, जो आपकी खामोशी में भी आपको सुन सके, आपकी सारी बातें पढ़ सके, आपका मन पढ़ सके और आपके हर दर्द हर तकलीफ में आपका सहारा बने, जो आपको बदलने की कोशिश ना करे बल्कि आप जो हो जैसे हो बिल्कुल वैसे ही अपना ले, वैसे ही एक्सेप्ट करे। प्यार वो नहीं जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ हो, बल्कि प्यार तो वो है जो मुश्किलों में भी आपका साथ कभी ना छोड़े, जहां भरोसा हो, सम्मान हो और एक दूसरे में सुकून मिले। क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही है जो दिल को शांति दे और जिंदगी को खूबसूरत बना दे।

नमस्कार, रात्रि के 11 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। ज्ञातत्व है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ ही यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को लेकर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में तीसरे स्थान से प्रथम स्थान तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि लखनऊ ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अब लक्ष्य देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर में कहीं भी कूड़े के ढेर दिखाई नहीं देने चाहिए। जौनपुर में ईद उल अजहा बकरीद पर्व को सौहार्द के साथ मनाए जाने के दृष्टिगत तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के नेतृत्व में कोतवाली से लेकर चहारस चौराहे तक पैदल मार्च किया गया। गोरखपुर जनपद में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और राजस्व संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु सीएम डैशबोर्ड प्रगति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य राजस्व अधिकारी सीआरओ हिमांशु वर्मा ने की, जिसमें विभिन्न तहसीलों के एसडीएम, अपर एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सीआरओ ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कार्य निष्पादन के सख्त निर्देश दिए। सुल्तानपुर में ईद उल अजहा बकरीद पर्व की पूर्व संध्या पर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक चारू निगम सड़कों पर उतरी। उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजनारायण सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ सामंत ने शहर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कल होने वाली नमाज को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

रात के 11:05 और आप सौदर्शन 7 FM यानी FM रेनबो पे आप हैं अपनी सुनहरी यादों के सफर पर, अपनी रात की हम सफर अनामिका के साथ, यानी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा सिर्फ और सिर्फ सौदर्शन 7 FM रेनबो पर।

नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। दोस्त बन के दुश्मनों सा सताता है वो मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझे और मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस, इतनी हसरत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है।

आपको पता है, बहुत सारे रिश्ते दिल से शुरू किए जाते हैं, लेकिन कभी किस्मत उन्हें मुकम्मल नहीं होने देती। फिर भी इंसान अपनी आखिरी सांस तक उसी को चाहता है, उसी को चाहा करता है जिसे वो कभी अपना नहीं कह सकता है। लेकिन कई बार गलत ना होते हुए भी हम शायद बेवफा कहलाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिससे बेपनाह मोहब्बत होती है, जिनका साथ ताउम्र चाहिए होता है, ऊपर वाला उन्हें और उनके साथ को हमारी तकदीर में नहीं लिखता। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना दिल के करीब

पाके भी अपना बन के भी अपना नहीं हो पाता। जब हर बात में वही शख्स होता है, वही इंसान होता है, लेकिन जिंदगी में उसका कोई हक नहीं होता। ये अधूरे रिश्ते अक्सर रुलाते हैं, या यूं कहें कि पूरी जिंदगी रुलाते हैं, क्योंकि उनमें प्यार तो सच्चा होता है लेकिन इस प्यार की कोई मंजिल नहीं होती।

आपको पता है किसी भी इंसान की अहमियत कब समझ में आती है? जब हम उनसे बिछड़ जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। जब तक वो इंसान हमारे पास होता है, हम पर बहुत सारा बेशुमार प्यार लुटा रहा होता है, तब तक हम उनकी कदर कभी नहीं करते। हमें लगता है कि यार ये इंसान कहां ही जाएगा, ये इंसान हमें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, इसका प्यार तो हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। एक उस इंसान को छोड़ के बाकी हर चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं, वक्त देते हैं, लेकिन सिर्फ उस इंसान को छोड़ के। फिर अचानक किसी दिन वो इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है, तब हमें ये एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया, कितना कीमती था वो इंसान। इसीलिए वक्त रहते कदर कर लेना चाहिए उनकी, जो आप पर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लुटा देते हैं।

पता है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते हैं, वो बस आते हैं हमारी कहानी में अपना एक छोटा सा किरदार निभाने के लिए, थोड़े से वक्त के लिए। लेकिन उस थोड़े से वक्त में वो हमें ऐसी खुशियां दे जाते हैं जो शायद वो लोग भी नहीं दे पाते जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमें हमेशा के लिए ये सिखा जाते हैं कि जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे मुस्कुराना है। और सबसे खास बात, वो हमें जिंदगी को देखने का सबसे नया नजरिया दे जाते हैं। और फिर एक दिन वो हमारी जिंदगी से यूं ही चले जाते हैं और हम रह जाते हैं उनकी दी हुई खूबसूरत सी यादों के साथ।

कहते हैं कि रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, उसका सवेरा होना बिल्कुल तय है। हर अंधेरे के बाद रोशनी इंतजार कर रही होती है। अपने दिल में उम्मीद का सूरज हमेशा जगाए रखिएगा, क्योंकि ये जिंदगी बहुत हसीन है। सिर्फ और सिर्फ जीने का सलीका आना चाहिए। जिंदगी हर पल जी लेने का नाम है, क्योंकि जो है वो आज है, अभी है, कल किसने देखा है। बातों और यादों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा हमेशा, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुइयां अब आपसे इजाजत मांग रही हैं। आज की रात जिन गीतों को हमने सुना, जिन जज्बातों को हमने महसूस किया, उन्हें अपने दिल के किसी कोने में महफूज रखिएगा। रजनीगंधा की ये महक आपके सपनों को मीठा बनाए, बस यही दुआ है। जल्द ही फिर मिलेंगे, उसी वक्त, बिल्कुल इसी अंदाज के साथ, यादों के इसी खजाने के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने अपनों का भी। FM रेनबो 100.7 FM पर सुनते रहिए जिंदगी की धड़कनें। और हाँ, कोशिश करिएगा कि किसी की जिंदगी का उजाला जरूर बनिएगा। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्य क्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस लाइन, थाना, बैरक, अग्निशमन केंद्र और अन्य निर्माण कार्य गुणवत्ता तथा समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा जरूरी है और निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों से कोई समझौता ना हो। अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने निर्देश दिए कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले राजस्व की शत प्रतिशत वसूली की जाए। डीएम ने भू राजस्व, परिवहन, स्टाम्प, आबकारी, खनिज, नगर निकाय, गन्ना, वाणिज्य कर, मंडी, सिंचाई, वाहन कर, बाट माप, बैंक, विद्युत एवं अन्य विभिन्न विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि जो शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसी के सापेक्ष सभी विभाग प्रगति करें। फरुखाबाद जनपद में बकरीद को लेकर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा मस्जिदों का निरीक्षण किया गया और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक कर शांति से नमाज पढ़ने की अपील की। कल जिले की 171 मस्जिदों समेत 58 ईदगाहों में नमाज अता होगी। जनपद उन्नाव में बकरीद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। आईजी किरण एस उन्नाव पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख बाजारों तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्यौहार को लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:14 और सूर्यास्त 6:53 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। आप सुनते रहिए एफएम रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: 100.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:53 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।